100.7 MHz पर ये आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन रविवार, ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 7 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

में राम क्षण क्षण में श्याम हो, मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि सुबह 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आप सबके समक्ष उपस्थित हूं भक्ति और आध्यात्मिकता से सुगंधित आपका प्रिय कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। और सदैव की तरह आध्यात्मिक यात्रा इसकी शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना के साथ।

जो प्रत्यक्ष हैं, जो साक्षात हैं, जिनकी एक रश्मि मात्र से चराचर जगत जागृत हो उठता है, उन भगवान भास्कर को हमारा पहला अर्घ। हे भुवन भास्कर, आप केवल अंधकार का नाश नहीं करते, आप हमारी बुद्धि, हमारे विचारों और हमारी आत्मा को प्रदीप करते हैं। आज की इस नई सुबह को अपनी दिव्य आभा से अलौकित करें और हमें कर्म पथ पर बढ़ने की शक्ति दें। आइए श्रोताओं, इसी प्रार्थना के साथ भगवान सूर्य को नमन करें।

श्रोताओं, जैसे एक छोटा सा फूल पूरे उपवन को महका देता है, वैसे ही सुबह की एक छोटी सी प्रार्थना आपके पूरे दिन को महका देती है। भक्ति की इसी सुगंध को अपने भीतर महसूस कीजिए और आइए प्रभु भजन में एक बार और रम जाते हैं।

श्रोताओं, 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। शांत रूप में जो कैलाशपति हैं, महाविनाश के समय वही तंत्र मंत्र के अधिपति महाकाल हैं, जिनकी जटाओं से गंगा की धारा बहती है और जब तीसरी नेत्र खुलती है तो ब्रह्मांड की हर बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। कंठ में हलाहल विष, हाथ में त्रिशूल और डमरू का वो प्रचंड नाद जिससे काल भी थर थर कांपता है। जो आदि हैं, अनंत हैं और उस पूरी सृष्टि के एकमात्र नियंत्रण हैं, उन कालों के काल महाकाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए उनके भजन करें।

श्रोताओं, भक्ति वो डोर है जो स्वयं को शून्य कर उस अनंत एक से जोड़ देती है। आइए उस अनंत से जुड़ने का एक और प्रयास करें और खो जाएं इस मधुर भजन में।

शब्द जब संगीत बन जाते हैं तो वो सीधे ईश्वर के चरणों में पहुंच जाते हैं। आज हमारे पास चंदन और अक्षत भले ही ना हो, पर हमारे पास श्रद्धा के ये पुष्प और सुरों की ये अंजलि जरूर थी, और इसी इस यात्रा को अंतिम विदाई इस खूबसूरत से भजन के साथ करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु भजन में लिप्त हों और इस यात्रा को अब समाप्त करते हैं।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना किसी भेदभाव घर घर तक विकास परियोजनाएं और योजनाएं पहुंचा रही है। इसमें पहले सीएम ने कल सुबह तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल दो के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जिले के प्राचार्य और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगार परक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM Rainbow।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
3: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम में। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुषि के साथ। और 7 बजे से ये जो बहार आती है ना, ये सब ये बहार हमें गुलजार करके जाती है। सच में इस खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, है ना।

दोस्तों, वक्त की सुइयां चलती रहती हैं और उनके साथ बदल जाते हैं जिंदगी के मौसम। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही लोग हैं, ना उनके वादे और ना ही ये हसीन लम्हे। लेकिन जो चीज इस आने जाने के सिलसिले को खूबसूरत बनाती है वो है हमारा आज। तो क्यों ना हम हमेशा शिद्दत से इस आज को जिए। और इन्हीं जज्बातों को बयां करता एक और सदाबहार नगमा है, ये आपके लिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। और इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ सदाबहार गीत आपको सुनाते हैं बल्कि आपके जो बातें हैं, आपकी जो दिल की बातें हैं और आपके जो विचार हैं इस प्रोग्राम को लेकर और इन खूबसूरत गानों को लेकर, उसको भी मुझे सुनना है। जी हाँ, आप हमें मेल भेज सकते हैं एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तो इस पर आप मेल भेजिए और मुझसे जुड़िए, बताइए मुझे कि क्या अच्छा लगता है आपको, इन सदाबहार गीत को सुन के क्या याद आता है आपको, मुझे जानना है। तो आप मुझे मेल करिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और तब तक ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए

दोस्तों कहते हैं कि सांसें तो खुदा की देन है, पर उन सांसों में किसी का नाम बस जाना ये किस्मत की बात है, है ना। जब जिंदगी का सफर किसी खास के साथ शुरू होता है तो हर दुआ बस उनके ही इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आइए अपनी सांसें उस खास इंसान के नाम करते हैं और इसे याद करते हैं बेहद खूबसूरत और जज्बाती धुनों के साथ।

दोस्तों जानते हैं कि सुबह सुबह मूड सबसे अच्छा किस बात से हो जाता है? वो इस बात से हो जाता है कि जब अच्छे अच्छे गीत चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मगर जब आपके मेल्स मुझ तक पहुंचते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझ तक पहुंचती है तो

मेरी जो स्माइल है ना वो इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लगता है आपके मेल्स पढ़कर और आपकी बातें जानकर जो आप हमसे शेयर करते हैं। तो ये जो मेल्स का सिलसिला है, चलिए शुरुआत करते हैं। वारिस अली जी ने मेल भेजा था मुझे और लिखते हैं कि ये 6:30 बजे से मुझसे जुड़े हैं और इन्होंने पुष्पांजलि सुनी, अच्छा लगा। और उसके अलावा उन्होंने सदाबहार गीत के लिए भी बोला कि जो शुरुआत करी वो इनका फेवरेट सॉन्ग था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग आपको सुनने को मिला। और कहते हैं कि जब सवेरे सवेरे ना आपकी कोई मनचाही चीज़ आपको मिल जाती है तो पूरा दिन बन जाता है। तो संडे तो आपका बन गया है ना। थैंक यू सो मच वारिस अली जी। और ये हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल कर रहे हैं। अगला मेल शामिल करती हूँ। ओम प्रकाश सैनी जी मेल कर रहे हैं हमें उत्तराखंड, बाजपुर उत्तराखंड से। और इन्हें गाने तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। और भी कोई बात भेजिए ना ओम प्रकाश जी मुझे, जो आप कहना चाहते हैं, जो इन गीतों को सुनकर आपको याद आता है वो बताइए। महेंद्र दीपन जी, आपका मेल का इंतज़ार कर रही थी मैं, आ गई मेरे पास वो आपकी मेल। लिखते हैं, नई सुबह नई उम्मीदें और नया सवेरा है, खुशियों से भरा आज का दिन, यही पैगाम मेरा है। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर और साथ ही साथ हमारी मेरा तो दिन बन गया, आपका भी दिन बने और आज का संडे आपका बड़ा ही खुशगवार गुजरे। ये हमें राजस्थान नागौर से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि सदाबहार गीत सुनकर आज मन एकदम खिल उठा है। सच कहूँ तो पुराने गानों की बात ही अलग है। ये तो बिल्कुल सच बात है। आगे लिखते हैं कि आज जब मैं आपका शो सुन रहा था तो अचानक बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा रोज़ ऐसे सदाबहार गाने सुना करते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे उन गीतों को सुनने का जो सुकून मिलता था उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज उन गानों को दोबारा सुनकर ऐसा लगता है कि मानो समय पीछे लौट गया हो। बिल्कुल सही, ये पुरानी जिस चीज़ें हैं ना, ये पुरानी हैं ज़रूर, मगर वो हमारे जहन को छोड़कर, हमारे दिल को छोड़कर कहीं नहीं जाती।

दोस्तों समय हो रहा है 7:41, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत और आपके साथ है आपकी दोस्त तरुश्री। मेल्स का सिलसिला तो जारी है, कई सारी मेल्स आ चुकी हैं हमारे पास। गुलफ्सा सिद्दीकी जी की भी मेल पहुंच चुकी है, लिखती हैं कि प्रोग्राम इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है और गाने भी अच्छे बज रहे हैं और मेरे ख्याल से हमारा रेनबो है ही ऐसा, हर गाना कुछ ना कुछ कहता है, आपके दिल तक पहुंचता है, यही खुशी की बात है। थोड़ी सी खफा भी है, शायद बात नहीं हो पा रही है आपकी फ़ोन से, लेकिन आप ट्राई करिए, जो नंबर आपको बताया जा रहा है उसी पर हम अवेलेबल हैं। इसको थोड़ा सा ट्राई करिए और अपनी नाराज़गी थोड़ा दूर करिए, क्योंकि आपकी मेल्स ना प्यार भरे होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन नाराज़गी भरे होते हैं तो थोड़ा सा दिल को ऐसा बुरा सा लगता है ना। आपको भी लगता होगा जब आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा दिन हो, कुछ बढ़िया सुनने को मिले, तो आपको अगर डांट पड़ जाए तो आपको क्या लगेगा, है ना, वैसा ही है ना। तो इस नाराज़गी को ज़रा दूर करिए और एक बार फिर से ट्राई करिएगा, जो नंबर आप सुने वो कृपया एक बारी ट्राई करिए तो हमसे मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। संजय वर्मा जी का मेल आया है लखनऊ से और लिखते हैं कि कैसी हैं राधे राधे राधे राधे, और ये जानकीपुरम विस्तार से हमें मेल कर रहे हैं। लिखते हैं कि जो आपने गीत सुनाए वो बहुत अच्छे लगे और एक गाना वो सुनना चाहते हैं, तो चलिए कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़रूर सुना दूँ। लिखते हैं कि हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ एक नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। बहुत खूबसूरत लाइन है, बड़ा ही खूबसूरत मेल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नगमा आपके लिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत और आपके साथ आपकी दोस्त है तरुश्री। और साथ ही आज है संडे और संडे को बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस जो आप इंतज़ार करते हैं हर एक हफ्ता हर संडे 12 बजे से सुनते हैं, और एक और प्रोग्राम आता है 10 बजे से, कार्यक्रम है आज के मेहमान। और आज के मेहमान जो हैं उसमें बड़े ही सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी हमारे साथ होंगे और उनका उनके साथ बातचीत करेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी जी। तो सुनना मत भूलिएगा आज प्रातः 10 बजे से, तो इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा। और साथ ही साथ हेल्थ एंड फिटनेस की बात हम कर रहे थे, तो आज का जो विषय है वो ये कि दौरा पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, ये आप जानेंगे। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ होंगी वो होंगी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो कि MD बाल रोग PGI चंडीगढ़ से हैं और DM बाल तंत्रिका रोग पीजियाट्रिक न्यूरोलॉजी एम्स से हैं। तो जो मेन आज के मुख्य बिंदु हैं वो यही कि दौरा यानी फिट क्या होता है, दौरे के समय सही प्राथमिक जो उपचार हैं वो क्या होने चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो जानलेवा हो सकती हैं, और कौन से लक्षण हैं जो तुरंत जिनके होने पर आप अस्पताल लेकर जाएं। तो इस बारे में आज आपको हेल्थ एंड फिटनेस में सुनने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, साथ ही साथ जुड़ सकते हैं हमसे फ़ोन के माध्यम से, और नंबर है 0522-2238-845 और 0522-2238-852। तो ये जो दो नंबर हैं इसमें ज़रूर कॉल करिएगा, 12 बजे से जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।

0: दोस्तों 7:54 हो गए हैं और काफ़ी कम समय बचा है, बट बहुत सारे मेल्स अभी बाकी हैं शामिल करना. तो मैं सोच रही हूँ कि चलते चलते आखिरी गाना आपको सुनाऊँ, तो उससे पहले कुछ नाम मैं शामिल कर लूँ. रामराज जी ने मेल भेजा है हमें और लिखते हैं, ये हमें ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं. रामराज राजभानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, इतने सारे लोग हैं या फिर ये आई डोंट नो, मेरे ख्याल से परिवार है. तो अच्छा लगा आप सब ने मेल भेजा हमें. और लिखते हैं, सबसे पहले हमारी तरफ से बिटिया को प्यार भरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगा आपका ये शब्द सुन के, क्योंकि ऐसा लगा कोई अपना जुड़ गया मुझसे. और आशीर्वाद आपने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और लिखते हैं कि हमारे यहाँ सुखराज भैया का नाम ज़रूर पढ़िएगा. अब देखिए मैंने तो पढ़ दिया, आप सभी का नाम पढ़ दिया. इससे पहले भी आपने मेल भेजा था और लिख रहे थे कि गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुपरहिट लग रहे हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए. आगे संतोष जी मेल कर रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. ये हमें पूजा भारद्वाज जी लिख रही हैं मेल. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: सेज उल्फत की.
0: सुनील पंकज जी ने मेल भेजा है कि मुझे ऐसा मिला, मेरे ख्याल से पता, अच्छा मिला मोती सॉन्ग. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. और घनश्याम सिंह जी का भी मेल है और लिखते हैं कि FM रेनबो धड़कन लखनऊ की सुनकर बड़ी खुशी होती है और एहसास कराता है कि हम सब श्रोता वाकई में लखनऊ हम वासी हैं. इसके पहले इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मेल का बहुत बहुत धन्यवाद. राम मोहन गुप्ता जी ने बड़ी खूबसूरत सी लाइन्स भेजी हैं, मैं ज़रूर शामिल करूँगी, लेकिन मैं ना ये गुड मॉर्निंग लखनऊ में शामिल करूँगी क्योंकि अब समय बहुत कम है. लेकिन चलते चलते एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनाती हूँ. लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि 8 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और फिर जुड़ूंगी मैं एक और दोस्त के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर. तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से

0: एक खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
5: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही

0: भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट

0: टक्कर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक

स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत, सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान,
3: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
2: जो बढ़ाए आपका ज्ञान, जन्मदिन जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
3: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
2: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
3: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जो खो गया उसे भूल जाओ, जो खो गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसमें खो जाओ, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, हर पल मुस्कुरा कर बिताओ।
5: क्या बात है, और ऐसा कहा भी गया है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, और जब जिंदगी की शुरुआत, सफर की शुरुआत मुस्कुराते हुए करते हैं तो पूरा दिन बन जाता है।
4: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारी सी सुबह हो चुकी है, 8:17 या देखिए अभी बात करते हैं 18 मिनट हो गए हैं, और दो दोस्त आपके साथ जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ, मैं हूँ तरुश्री आपके साथ, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं
5: जी, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विनय।
4: जी हाँ दोस्तों, और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से सलाम नमस्ते दुआ करके चलते हैं और आगे बहुत सारी बातें करते हैं, और वैसे भी आज है वीकेंड, वीकेंड एंजॉय करिए।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ दोस्तों, चलिए अब दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है विनय?
3: दोस्तों आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा, बस यही है खुश रहने का सीधा सा वादा।
2: क्या बात है, एक सटीक लाइन और सारी बातें कह दी है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हर एक चीज में नेगेटिव ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो भी मिलता है उसमें खुश रहिए, उसी में खो जाइए। और जो नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं है कल होगा।
3: तो बहुत शिकायतें करना बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कई बार शिकायतें आपकी आदत बन जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा विनय। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 8:28 का वक्त, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आज गुड मॉर्निंग लखनऊ पर कुछ विशेष चर्चा होने वाली है, और विशेष चर्चा में अगर मैं जब शामिल होती हूँ तो अक्सर खाने पीने की बात होती है। तो आज भी हम खाने पीने की बातें करने जा रहे हैं, और विनय तुरंत मुस्कुरा दी कि हाँ तनुश्री है तो पक्का खाने की बात होगी।
1: और खाना तो हम सभी को पसंद, लेकिन आज जो डे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और आप जानते हैं कि हर साल 7 जून को ये मनाया जाता है, और इस दिन का जो मेन मोटिव है वो लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के इम्पोर्टेंस के प्रति जागरूक करना है।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि बात ये है कि मकसद इतना है कि जो भी हमारा खाना जो है हमारी थाली में आ रहा है वो सुरक्षित हो और सेहतमंद हो, है ना?
1: बिल्कुल, और आप सभी जानते हैं कि जो खाना है ना वो हमारा सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली का आधार बिंदु भी है।
0: बिल्कुल, और हम जब बात करते हैं फूड सेफ्टी की तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम जो भी खाना पका रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको सही तरीके से बनाएं तभी वो खाना सुरक्षित है खाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती में या कभी अनजाने में ही कुछ खानों को, अलग अलग पदार्थों को मिलाकर ऐसा बना देते हैं कि वो हमारे लिए खाना नहीं, वो हमारे लिए एक तरह से विष बन जाता है।
1: बिल्कुल, और इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए संयुक्त

0: राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई और सन 2026 यानी इस साल का जो थीम रखा गया है वो है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन।
1: जी, तो आज खाने पीने की जो बातें होने वाली है वो हमारी सेफ्टी से रिलेटेड बातें होने वाली है। डिलीशियसनेस अपनी जगह है ना, सेफ्टी अपनी जगह है। और सेफ्टी से याद आया कि हम जब मार्केट में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, खाने पीने वाला सामान खरीदते हैं, वेदर इट इज़ पैक्ड प्रिजर्व फूड या फिर हम कोई भी चीज़ ताज़ा खरीदते हैं, तो हम कभी कभी देखते हैं, कभी कभी उठाते हैं मार्केट में जो भी मिल रहा है, तुरंत जाते हैं दुकानदार से सब्जी खरीदते हैं, देखते पड़तालते हैं नहीं और तुरंत लेकर चले आते हैं घर में। लेकिन एक जो कॉन्शियस माइंड है आपका, एट बैक ऑफ द माइंड आपको ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि एक बार चेक कर लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट की यूज्ड डेट क्या है, यूज्ड बिफोर डेट क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप बताऊंगी कि जो खाने पीने की या जो पैक्ड फूड होता है उसमें जो डेट लिखी होती है ना, उसके बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि यूज्ड बिफोर जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, एक्सपायरी डेट जो लिखा होता है उसको क्या, उसमें क्या अंतर होता है, यूज्ड बाय जो लिखा होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो ये सब बातें आज हम करने वाले हैं।
0: बिल्कुल। और आप जानते हैं दोस्तों, जब हम आजकल मॉल कल्चर बढ़ गया है और मॉल कल्चर में ना बड़े सारे डिस्काउंट आ जाते हैं और हम जैसे ही देखते हैं डिस्काउंटेड आइटम तुरंत खरीद लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत पास आ रही होती है और हम घर जाकर उसे रख देते हैं कहीं और फिर हमें लगता है अरे अभी तो खरीदा था।
1: यस, करेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको, इनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड हम मुद्दा भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना, फिर उसके बाद आते हैं।

0: हाँ जी दोस्तों, तो अब आते हैं मुद्दे पर. तो आज का मुद्दा हम बता रहे थे कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड ही है आज का मुद्दा. तो आज का मुद्दा क्या है
1: दोस्तों? आज का मुद्दा ये कहता है कि जो हम खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जब भी हम कोई आइटम खरीद रहे होते हैं खाने वाला, तो क्या आप उनकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हाँ करते हैं, अगर आप चेक करते हैं तब भी बताइए, अगर नहीं कभी चेक किया है तब भी बताइए, और क्या परेशानियाँ होती हैं ये भी हमसे शेयर करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर. बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है कि जो भी आप खाने के आइटम खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी को चेक करते हैं या नहीं करते हैं, और उसकी क्वालिटी को कैसे आप चेक करते हैं.
0: जी हाँ दोस्तों, और खासकर ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि अगर हम कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, कोई भी प्रिजर्व फूड खरीद रहे हैं, तो आप उसको, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं जो तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाती है, ब्रेड हो गए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, वो तो हम लोग तुरंत कंज्यूम कर लेते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है. बट ऐसी चीज़ें जैसे हमने केचप खरीदा, हमने जैम खरीदा, या ऐसी कोई चीज़ जो लंबे समय तक हम चलाते हैं, तो उसको क्या आप जानते हैं उसके पीछे जो कंडीशंस दी होती हैं कि आप एक बारी वो खोलते हैं उस प्रोडक्ट को, तो आपको कितने दिनों में वो चीज़ ख़त्म करनी है? ये चीज़ें क्या, छोटी छोटी चीज़ें जो लिखी होती है एट बैक ऑफ द पैकेज, क्या आप देखते हैं, उसे समझते हैं, या फिर सिर्फ चेक किया? अगर आप डेट चेक करते तो सिर्फ चेक किया, हाँ हाँ इतना इतना दिन है, ओके, देन खरीद लिया तुरंत.
1: जी, बहुत सारे लोग तो तेल को मक्खन समझ के खा रहे हैं. कभी आपने चेक किया है कि जो आप मक्खन खा रहे हैं एक्चुअली वो मक्खन है ही नहीं?
0: तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी हम लोग जब भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट हो गए, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, प्रिजर्व फूड स्पेशली, अचार ले लिया आपने, ठीक है, तो इनमें क्या आप चेक करते हैं कि इसमें किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपको आगे चल के हानि पहुंचा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल.
0: तो ये जो फूड सेफ्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आज का दिन बस एक तरह से हमारे दिमाग में एक बार टन टन करने के लिए ही बना है कि आप ध्यान दो उस चीज़ों को कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए.
1: बिल्कुल, पता है एक खराब खाना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आप कई सारी बीमारियों को दावत दे सकते हैं. लिए जब भी खाइए जरूर देखिए कि आप क्या खा रहे हैं और किस क्वांटिटी में उसमें प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं.
0: जी हाँ, तो अपने विचार फटाफट उठाइए, फोन, मेल भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, बताइए कि फूड सेफ्टी का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, अपने खाद्य की कैसे सुरक्षा करते हैं, आप जो खा रहे हैं उसको कैसे, कितना सेफ रखते हैं, और जैसा कि बताया विनय ने, क्या एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, नहीं करते हैं तो बताइए, और करते हैं तो भी बताइए.

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
3: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
4: जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लखनऊ। आप सुन रहे हैं आज विनय और तरुषि के साथ, और संडे स्पेशल है। संडे में आप जानते हैं कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो बागवानी वाला स्पेशल प्रोग्राम जाता है, वो करीब 9 बजे के आसपास हम एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल है, आपको घर में बाहर कोई भी दिक्कत आ रही है पेड़ पौधे लगाने में, फल फूल लगाने में, तो आप हमसे पूछते हैं। मेल आईडी बहुत ही सिंपल है, fmrainbowhelpline@gmail.com।
5: जी हाँ दोस्तों, और इसके द्वारा आप जो भी प्रश्न पूछेंगे तो एक्सपर्ट आपका जवाब देंगे। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा काम है, सच बता रही हूँ। गार्डनिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेस फ्री जॉब, मतलब अगर आप बहुत स्ट्रेस में है ना, तो आप बागवानी करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा राहत मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि इस टाइम पे बड़ी गर्मी है तो लोग सोचते हैं, इससे थोड़ा कतराते हैं कि गर्मी में यार कहाँ पर, लेकिन सच बताऊँ सुबह सवेरे आप थोड़ा सा समय निकालिए। अब तो आजकल सवेरे 5 बजे कितनी ज़्यादा धूप हो, मतलब धूप नहीं कहूँगी, लेकिन इतना उजाला रहता है कि आप अच्छा खासा ये सब काम कर सकते हैं। और अभी मैं जब आ रही थी आज, तो मैं देख रही थी कि स्पेशली हमारे जो सोसाइटी की कुछ लेडीज़ हैं, वो जाती हैं पार्क में, और पार्क में वो जाके जैसे लगता है जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रही हैं। आई डोंट नो वाई, बट वो उनका मतलब थोड़ा सा होता होगा, सोचती होंगी कि हाँ यहाँ से लगा के अपने घर में लगाएंगे जाके। तो कहीं कहीं से कुछ लेडीज, कुछ मैंने देखा है, आदत होती है, टहल रही है किसी के बाग में पहुंची, और उन्होंने कहा ओ यहाँ पर तुलसी का पौधा तो बड़ा हरियाला।

0: दिख रहा है, हमारे घर में तो नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, क्वेश्चन होते हैं, वो आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और उसका जवाब आपको मिलेगा। तो बिना किसी हिचक के आप मेल भेजिए fmrainbowhelpline@gmail.com पर।
1: और तरुषि जी कह रही थी कि बागवानी करने से आपको बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं और आपके आसपास कोई नहीं है तो आप पौधों से बात भी कर सकते हैं। देखिए, अकेलापन तो आपका वो आराम से दूर कर देंगे, उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक पौधा लगाइए, देखिए वो हर दिन कितना बढ़ रहा है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप अगर उससे जुड़े रहेंगे ना अपने घर में बालकनी में, क्योंकि देखिए आजकल जो ये सिस्टम अपार्टमेंट सिस्टम शुरू हो गया है ना, उसमें वर्टिकल गार्डनिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप देखिएगा, आप अकेले रहकर भी आपके पास पूरा परिवार रहेगा।
0: और सच में जैसे एक अगर आप एक सिस्टम एक रूटीन स्टैब्लिश कर लेते हैं ना इन पेड़ों के साथ, तो आप खुद देखेंगे कि जैसे अगर आप सवेरे आप इनको पानी डालते हैं ना, तो जैसे आप उनको पानी डालने जाते हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आपसे मुलाकात होगी, कब आप उनसे प्यार से बात करेंगे और कब आप उन्हें पानी डालेंगे। तो वो उनके लिए भी रूटीन बन जाता है। तो ये एक इमोशन स्टैब्लिश करके देखिए, बड़ा ही मज़ा आता है।
1: फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक और बेहतरीन ट्रैक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: जी दोस्तों, 8:51 का वक्त हो गया है और आज है संडे, तो मुझे यही लग रहा है कि इसलिए संडे सवेरे आज सब लोग जागे नहीं है, इसीलिए जो कतार लगती थी मेल्स की वो अभी तक नहीं लग पाई है। हाँ, आ चुकी है हम तक मेल, लेकिन अभी भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के मुद्दे पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। फूड सेफ्टी से रिलेटेड है आज का मुद्दा कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो एक्सपायरी डेट कितना चेक करते हैं, या जो पैकेज में और वार्निंग्स लिखी होती हैं या डिटेल लिखी होती हैं उसमें आप ध्यान देते हैं कभी, या फिर सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि मैगी कैसे बनानी है?
1: नहीं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, और अगर आप रख रहे हैं या फिर कोई भी आप हमें अपनी बात रिलेटेड टू फूड सेफ्टी बताना चाह रहे हैं तो हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर।
0: जी हाँ दोस्तों, और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि जो मैंने जैसे बताया था कि एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर ये सब जो लिखा होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी किसी भी पैकेज में लिखा होता है यूज़ बिफोर या फिर यूज़ बाय, तो एक सख्त डेडलाइन होती है कि इसे आप रेड सिग्नल मान के चल सकते हैं कि इस तारीख के बाद ये फूड आइटम आपको नहीं खाना है। दिस इज अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन। लेकिन अगर कहीं पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर या बेस्ट बाय, तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटी गाइडलाइन है। इसका मतलब ये कि इस तारीख के बाद ये जो सामान है, ये जो फूड आइटम है, वो बेस्ट क्वालिटी में नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद भी खाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये कि वो सामान खराब ना हो गया हो। तो इसलिए आप इसको अंतर इसका जानना सीखिए कि अगर कहीं पे यूज्ड बिफोर या बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है और यूज बाय लिखा है, तो प्लीज़ उसको समझिए कि उसकी अहमियत क्या है। और आप कभी ये इसका अंतर आप जानते थे?
1: नहीं, बहुत तो इतना डिटेल में नहीं जानते थे, लेकिन मेरी एक आदत है कि जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं, और अगर मुझे दिखती नहीं तो मैं दुकानदार से पूछता हूँ कि इसमें कहाँ है, दिख नहीं रही है। हाँ। कई बार कंपनीज ऐसा चालाकी करती है कि वो इतना हल्का लिखा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता,
0: ढूंढते रह जाओगे।
1: लेकिन मैं ढूंढ के ही मानता हूँ, जब तक मैं देखता नहीं हूँ कि डेट एक्सपायरी क्या है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक चॉकलेट खरीद रहा था और चॉकलेट मैंने 4 चॉकलेट खरीदी थी और मैंने जब देखा पलट के मैंने बहुत ध्यान से तो वो एक्सपायर हो चुका था। फिर मैंने दुकानदार से कहा कि आप तब भी रखे हुए हैं इसे, और वो पूरा पैकेट था उसके पास।
0: तो यानी कि वो फूड आइटम एक्सपायर हो चुका होता है। अब जैसे कन्फेक्शनरी जो आइटम्स होते हैं ना, उनमें हमेशा लिखा होता है बेस्ट बिफोर। आप अभी कभी ध्यान से देखें तो उसमें बेस्ट बिफोर लिखा होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर डेट जो दी हुई होती है, इनफैक्ट डेट नहीं, उसमें मंथ दिया होता है। ठीक है, तो जब भी मंथ आप चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मंथ में उसमें लिखा हुआ है June 2026, ठीक है, तो उसका मतलब ये, अगर उसमें बेस्ट बिफोर लिखा है आगे, तो उसका मतलब ये कि जून के बाद वो खाई जा सकती है, बशर्ते कि ऐसा नहीं कि वो खुली हो या वो उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। अगर वो ये इसका बताता है जताता है कि ये जो चॉकलेट है अपने बेस्ट टेस्ट में June 2026 तक ही रहेगी, उसके बाद हो सकता है उसकी टेस्ट में कुछ डिफरेंस आ जाए, मगर वो हार्मफुल नहीं है।
1: आपने सही कहा, टेस्ट का भी कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि कई बार जब आप ऐसी जो एक्सपायरी डेट

0: या जो डेट निकलने के बाद आसपास भी खाते हैं तो टेस्ट खराब हो जाता है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो खराब होने की शुरुआत में आ जाता है
1: जी।
0: और उसे आप कंज्यूम अगर करते हैं तो मे भी शायद आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाए
1: जी। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने खाने की पदार्थों में ध्यान रखने की जरूरत है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सब मिलके मनाएंगे और एक बार फिर से एहतियात करेंगे। जितने भी हम लोग हमें सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो आगे भी इस बात को पहुंचाएं, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक पहुंचाएं कि ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक है।

0: नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। बैठक में पश्चिम एशिया संकट के कारण देश पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता को इसके प्रभावों से हर संभव बचाने और उनके जीवन को सुगम बनाने पर जोर दिया। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, पीएम ने की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक, पश्चिम एशिया संकट के प्रभावों से बचाने पर जोर। अमर उजाला ने लिखा है, पीएम ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ किया विमर्श, कारोबारी सुगमता विकास पर मिले सुझाव। वहीं वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने की मंत्रणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए व करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। ये खबर सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, मुख्यमंत्री ने गोंडा में 516 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। उपद्रवियों को चिताया, कहा रंग में भंग डाला तो सख्ती से निपटेंगे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, योगी बोले उत्सव के रंग में भंग डाला तो मिट जाएगा वर्तमान और भविष्य। वहीं स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, योगी बोले 2017 से के पहले प्रदेश में असुरक्षा का माहौल था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने खासकर भर्ती परीक्षाओं व बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखे जाने का कड़ा निर्देश दिया। प्रदेश में 8, 9 व 10 जून को सिपाही भर्ती की बड़ी परीक्षा होनी है। सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस खबर को भी विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, योगी बोले रेल यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, जीआरपी की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश, ट्रेनों पर पत्थरबाजी रोकने के लिए चलाया जाए विशेष अभियान। वहीं अमृत विचार ने लिखा, सीएम ने कहा रेलवे नेटवर्क में अपराध की जगह नहीं, लागू हो जीरो टॉलरेंस नीति। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक संकट के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 29 रुपये महंगा हो गया घरेलू गैस सिलेंडर और भारत नेपाल के बीच यूपीआई भुगतान सेवा शुरू जैसी खबरों को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक सुनते रहिए एफएम रेनबो।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: जगह
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
0: वेलकम बैक दोस्तों, 9:04 हो चुके हैं और जैसा कि वादा हुआ था कि हम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर संडे लेकर आते हैं एक एक्सपर्ट और वो एक्सपर्ट आपके

0: जो बागवानी से रिलेटेड प्रश्न है उसका सबका वो समाधान करते हैं। तो हमसे जुड़ चुके हैं आज
1: जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। सर गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका स्वागत है।
2: सभी को सुप्रभात।
1: तो सर सबसे पहला सवाल हमें लखनऊ से ऐशबाग से आया है और ये वारिस अली साहब है और लिखते हैं कि क्या इस मौसम में गमले में रस भरी लगाई जा सकती है, इसका आपके यहाँ इसका पौधा मिल सकता है क्या?
2: देखिए रसभरी का बीज मिल जाता है और रसभरी का बीज अक्सर क्योंकि अभी काफी बग्गा मंडी में भी आती है, मझियावा क्षेत्र में होते हैं तो कहीं भी सब्जी में बात करेंगे सब्जी की दुकानों पर जहाँ बीज मिलता है, जैसे टमाटर का बीज होता है वैसे उसका बीज होता है। अगर आपके पास पुराने फल भी कोई सुखा ले तो भी काम चल जाता है। तो रसभरी को लगाने का समय जुलाई अगस्त में बिल्कुल अच्छा सीजन होता है
0: जी। सर एक और प्रश्न है, निधि चौरसिया जी हैं, उन्होंने एक मेल भेजा है, वो कहना उनका प्रश्न ये है कि घर में नींबू का प्लांट है, उसमें नींबू भी लग रहे हैं, उसमें रस नहीं आता बिल्कुल, तो ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या समाधान है?
2: हाँ, नींबू में रस नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पानी खाद चीज की थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसका असर पड़ता है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, आप थोड़ा थोड़ा पानी देते होंगे, उससे उतने पानी से पर्याप्त नहीं होता है, उसका सीधा संबंध सिंचाई से है, इसलिए जो थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि प्रॉपर उसको पानी मिले और बाकी न्यूट्रिएंट मिले। गमले में थोड़ा मुश्किल होता है, गमले में होट हो जाता है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, पौधा बड़ा हो जाता है, जड़ें बहुत ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत आती है, इसलिए अगर बड़ा पौधा हो गया हो तो थोड़ा सा कहीं जमीन में या बड़े गमले में ड्रम में आधा काट के शिफ्ट करेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा। कम फल रखें तो अच्छे आएंगे, पोषक तत्व का आपूर्ति जरूरी है
0: जी। एक और प्रश्न है कि पूछ रही है कि इन्होंने 2023 में मनोकामनी का पेड़ लगाया था, उसमें फूल नहीं आते हैं, तो फूल आए उसके लिए क्या करें?
2: सबसे अच्छी बात है कि मनोकामनी के जो भी ये झाड़ीनुमा पौधा होता है थोड़ा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसको 5-7 घंटे की धूप जरूर मिल जाए। दूसरी बात, थोड़ा DAP डालेंगे तो फर्क पड़ेगा, इन दो चीजों को देखेंगे तो आपको जो है कहना फूल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धूप उसको खूब चाहिए, अगर थोड़ा छाया में रहेगा तो नहीं फूल आएंगे पास से
1: जी। और सर रमेश दत्त त्रिवेदी जी का मेल है और वो लिखते हैं कि आई एम वेरी अनॉयड बाय स्नेक्स, आर देयर एनी प्लांट विच रेपल स्नेक्स एंड विच प्लांट्स अट्रैक्ट देम सो दैट आई डोंट प्लांट देम।
2: ऐसा है, सांपों के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखिए, प्याज लहसुन गंध वाले जो ऐसे पौधे हैं उनसे सांप दूर रहते हैं
0: जी।
2: ठीक
0: जी,
2: प्याज लहसुन टाइप के जो पौधे हैं, और इसके अलावा जो है क्या नाम, जब कहीं आपको लगे कि चूहे अगर हैं वहां पर किसी भी, आप जो आप डालते हैं घर की किचन वेस्ट कुछ भी डालते हैं तो चूहे खाने के लिए आ जाते हैं, चूहों के पीछे पीछे सांप भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि चूहों को कंट्रोल रखें और प्याज लहसुन इस तरह के पौधे लगाएं, और कहीं भी जरा सा भी आपको लिखे बिल के पास तो एक दवा आती है, जैसे हम लोग तो कई बार जो है उसका स्नेक कैचर भी रखते हैं, थोड़ा सा जो इसमें यूज करते हैं मिथाइल मिथाइल यूजिनाल आता है, ये केमिकल ऐसा होता है कि उसको थोड़ा सा आप डाल दें अगर उसमें तो उससे दूर भागता है, उसकी स्मेल से बहुत दूर भागता है, तो बिल के पास कहीं भी ऐसा लगे तो ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वैसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप के लिए उसको यूज करते हैं, इसमें भी काम आता है, कुछ ऐसे रिपेलेंट हैं केमिकल, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी और भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल ये मिथाइल यूजिनाल है। ठीक
0: जी
1: जी। और सर हमारे पास एक और मेल है, ये सोनू परवाना जी ने मेल किया है और लिख रहे हैं कि 1.5 बीघा खेत के लिए धान की बैरक कितनी करें और कौन सा धान अधिक पैदावार होगा कम, और पानी कुछ पानी से रिलेटेड भी लिखा है,
0: उसमें पानी कम लगे,
1: कम लगे पानी। हाँ
2: देखिए सबसे बड़ी बात यह होता है कि जैसे आपको मतलब 1 बीघा है तो 1/20 भाग में नर्सरी उगाई जाती है, ठीक है 1/20 भाग में, तो उसके हिसाब से आप उसकी नर्सरी उगाए, 1.5 बीघा है तो उस हिसाब से 1/20 होता है, जितने एरिया में लगाना है उसका 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, धान की किस्म जो ब्लॉक में अवेलेबल हो वहां से ले, उपलब्धता के अनुसार वो इस समय अच्छी अच्छी किस्में काफी ब्लॉक लेवल पर धान का बीज उपलब्ध है वहां से ले लेने, तो प्राइवेट दुकान पर तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज हैं, उसको आप ले, और पानी का स्रोत चाहिए, नहीं तो आदमी थोड़ा सा फिर वेट करता है, लेट हो जाती है, लेकिन अगर 1 महीने पहले, इस समय बिल्कुल सही समय है, आपके पास सिंचाई का साधन हो भेड़ बना के उसको करें, लेकिन अगर सीड का ट्रीटमेंट कर देंगे ट्राइकोडर्मा या उससे तो और अच्छा फायदा रहेगा
0: जी। सर एक और प्रश्न है, जैसे बेलपत्र का पेड़ है या तुलसी और तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे बहुत जल्दी सूख जा रहा है, जैसे गर्मी में पानी भी दे रहे हैं फिर भी वो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं तुलसी के पौधे?
2: सबसे अच्छा तो ये है, देखिए हमारे पास तुलसी के पौधे हैं, जो खुले में थे वो सूख जाते हैं,

0: जो थोड़ा छाया में थे वो सब गर्मी में भी सर्वाइव करके आ गए। तो जैसे नॉर्मली गर्मी में जब आता है, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, थोड़ा सा नेट डाल दे या थोड़ा सा छाया में पौधा रख दे, अगर गमले में हो या छत पर भी है तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा ऐसा रख दे कि सुबह की धूप लगे शाम की ना लगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी आप पानी देते रहें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स के सवालों का जवाब देने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पाद ICAR, केंद्रीय उपोषण
1: बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से। तो अगर आपका सवाल रह गया है तो आप हमें मेल कर दीजिए fmrainbowhelpline@gmail.com पर। अगले सप्ताह हम विशेषज्ञ से आपके सवालों को जरूर पूछेंगे।
2: जी दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ, फिर मिलते हैं और भी बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ।

0: विशेषज्ञ से आपके सवालों को जरूर पूछेंगे।
1: जी दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ, फिर मिलते हैं और भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: एक देता शांति मन को, दूजा मस्तिष्क को झुमाता है, हर सुबह को खुशगवार बनाना इनको खूब आता है। बहारे जब फूल बरसाती, लोग दिलों जा लुटाते हैं, तन मन हो जाता मस्त मगन, रहकर मुस्कुराते हैं।
1: क्या बात है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि राममोहन गुप्ता जी हर एक तरह से अपनी शब्दों में हम लोग को बांध लेते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। मोनू सेठ जी हमें मेल कर रहे हैं, लिखे हैं, लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। ये तो बात सही कही है, पूजा पाठ एक तरफ है, तीर्थ यात्रा एक तरफ है, और जीवों पर अगर हम अपना जो कहते हैं ना, आपकी जो ह्यूमैनिटी है, आपकी जो मानवता है, वो इसी से पता चलती है आप दूसरे या अन्य जीवों को किस तरह से देखते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं।
0: बिल्कुल। और सुधांशु जी ने हमें मेल किया, राधे राधे कह रहे हैं, ये हमें इटौंजा बख्शी का तालाब से मेल करते हैं, लखनऊ से। कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है और आज का सुविचार अच्छा लगा। टॉपिक पर ये कह रहे हैं, यानी आज के मुद्दे पर कह रहे हैं कि जब भी कोई सामान खरीदता हूँ तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक कर के लेता हूँ, और चेक करना भी चाहिए हम सभी को।
1: जी बिल्कुल। और इसी पर वकील अहमद जी ने मेल भेजा है कि गुड मॉर्निंग का मुद्दा इन्हें अच्छा लगा, और आइटम खरीदते वक्त वो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं और वो तब खरीदते हैं। तो हम सब में से कोई भी आइटम खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर देखना चाहिए, और ये हमें कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से मेल कर रहे हैं।
0: और जावेद अख्तर जी ने हमें गुड मॉर्निंग कहा है, और ये लिखते हैं कि हम खाने का जो भी आइटम खरीदते हैं तो उसके एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि एक बार बगैर चेक किए हुए हमने ब्रेड मक्खन लिया था, जब उसे खाने के लिए खोला तो अजीब सी खुशबू आ रही थी, हमको उसे फेंकना पड़ा। तभी से हम कोई भी खाने की चीज़ खरीदते हैं तो उसे चेक ज़रूर करते हैं। ये रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल करते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल का। और अरुण कुशवाहा जी हमें घुमोइया हरदोई से मेल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रोग्राम की आज की शुरुआत उन्हें बड़ी अच्छी लगी, प्रेरक मंत्र उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फूड सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला है कि आज के दिन की ढेर सारी बधाई, यूज़फुल, यूज़ बाय और टेस्ट बिफोर आदि के बारे में जानकारी बहुत ही बेस्ट रही, उनको अच्छा लगा, और पहली बार मुझे पता चला उनको इसके बारे में कि बेस्ट बिफोर और यूज़ बाय का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए उन्होंने हमको धन्यवाद किया, और हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं इस मेल को भेजने के लिए।
0: और साथ ही साथ वारिस अली जी ने भी हमें मेल किया है, और ये सुबह 6 बजे से बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुन रहे हैं, और 8:30 बजे अच्छा लाइट चली गई, तो अब 9 बजे लाइट आई है, तो इन्होंने मुद्दा नहीं सुन पाए हैं। तो वारिस जी, बहुत ही आसान सा मुद्दा है, आज फूड सेफ्टी डे है, तो उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके एक्सपायरी चेक करते हैं या नहीं, और फूड की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं या नहीं खरीदते वक्त।
1: जी, और ये फूड सेफ्टी इसीलिए मैंने आपको बार बार मैंने बता रही हूँ कि आज का दिन ही ये इसलिए है कि आप ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो इसके नियंत्रण आपके ही पास है, और अगर आप इस पर ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो आप खाना बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है। जैसा भी मेल में कहा गया था कि बंद मक्खन वो खरीद कर लाया, रो खराब तो उन्हें फेंकना पड़ गया, तो ऐसी नौबत ना आए कि आप कोई भी चीज लें और जब आप उसे पैकेट को खोलें तो वो दिखने में, महक में, या फिर आपकी सेहत के लिए खराब हो।
1: जी, और एक खास टिप मैं देना चाह रही थी अपने श्रोताओं को कि जैसे खाना वेस्ट करना हो, इसके लिए कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पहले तो जो टेम्परेचर है उसको ध्यान रखिए, जब भी आप खाना पका रहे हो तो पका हुआ खाना कमरे के यानी रूम टेम्परेचर पर आप 2 घंटे से ज़्यादा बाहर ना छोड़ें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी पनपने लगते हैं, गर्मी की बात है तो। इसलिए अभी जैसे मैंने कल का ही मैंने ध्यान दिया था कि जो भी गर्मी, अब मैंने जो भी हमारे यहाँ खाना था वो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे बाहर रहा और वो इतनी जल्दी ख़राब हो गया। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी रूम टेम्परेचर है उसमें आप 2 घंटे से ज़्यादा बाहर खाना ना रखें। दूसरा कि सफाइयों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप फल खाते हैं या फिर कोई कच्ची सब्जी खाते हैं उनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं या कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सफाई का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरे सबसे अहम बात कि जब भी बेस्ट बिफोर वाले जो आइटम हैं उनको, अगर उनकी जो डेट है वो निकल गई है तो उसको फेंकने से पहले एक बार उसे देखें, आप उसको सूंघ सकते हैं, स्मेल करें, और अगर सब कुछ ठीक है तो वो फूड आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर वो ठीक है तो

0: हाँ जी दोस्तों, 9:14 हो गए हैं और आज का जो संडे है ना बड़ा स्पेशल होता है और हम लोग बहुत ढेर सारी अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं और अभी इतनी सारी बातें करने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं फूड सेफ्टी पर, है ना, और जो आज का मुद्दा है और साथ ही साथ मेल्स की बात करें तो ढेर सारी मेल्स आ गई हैं तो अब हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो एक मेल मेरे पास आई है शहनाज खान जी की और इन्होंने मेल लिखी है कि इनको सदाबहार गीत काफ़ी पसंद आया था और राजा जी पुरम लखनऊ से इन्होंने मेल भेजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहनाज जी।
1: और हमारे एक रेगुलर लिस्टनर है राम मोहन गुप्ता जी ने कुछ पंक्तियाँ भेजी हैं, उन्हें पढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी से ये हमें मेल करते हैं, लिखते हैं, स्वरांजलि से सदाबहार गीतों तक का सफ़र भाता है, प्रभु स्मरण संग मनो मस्तिष्क से जुड़ा इसका नाता है।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: 9:25 है, अब चलिए जान लेते हैं कि क्या रहेगा आज का मौसम का हाल, तो आप कर सकते हैं आगे का विचार, तो इसलिए हमसे जुड़ चुके हैं।
1: तो हमारे साथ में है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। सर गुड मॉर्निंग।
2: जी गुड मॉर्निंग
0: सर। बताइए सर हमारे श्रोताओं को कि आज लखनऊ और आसपास के एरिया में कैसा माहौल रहने वाला है और मौसम क्या मेहरबान रहेगा या फिर वैसे ही प्रताड़ित होना पड़ेगा आज गर्मी से।
2: जी मौसम की बात करें तो आपने सही बोला, गर्मी से थोड़ा प्रताड़ित रहना ही पड़ेगा जी। और ये सिलसिला आने वाले अगले 3-4 दिन तक थोड़ा गर्मी का सबब बना रहेगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव का मौसम आ रहा है, मतलब 3-4 दिन गर्मी, उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से थोड़ा सा तापमान में गिरावट होगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी का आसार अगले 4-5 दिनों के बाद बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 4-5 दिनों थोड़ा सा गर्मी का एहसास जारी रहेगा और तापमान स्लोली स्लोली यहाँ से 2-3 डिग्री बढ़ने की संभावना है।
0: अभी बढ़ेगा?
2: अभी बढ़ेगा, अभी थोड़ा गर्मी है, थोड़ा और गर्मी बढ़ेगा।
0: तो वैसे तो चलिए अभी देख रहे हैं, गर्मी का तो प्रकोप है ही जारी, और भी थोड़े दिन और झेल लेते हैं सर। तो फिर बाकी आप बताइएगा हमारे श्रोताओं को कब मेहरबान होगी बारिश तो
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
2: ओके धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं जैसे कि आप सुन रहे थे, ये हमारे साथ थे मोहम्मद दानिश जी जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बताया कि अभी और प्रताड़ित होना है गर्मी से थोड़ा बहुत।
1: तो रेडी हो जाइए
0: जी, रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए आज का जो प्रोग्राम है तो आज आपका जो वीकेंड है घर में बिताइए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बाहर घूमने का प्लान है तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा क्योंकि
1: या फिर शाम को निकले।
0: हाँ शाम को निकलिए, लेकिन वैसे कहते हैं ना कि थोड़ा आप घर में, वैसे तो बच्चे बैठने नहीं देते घर में, गर्मी की छुट्टी चल रही है भाई, वो भी खत्म होने के कगार पे है, तो कैसे आप बैठ सकते हैं? एक्टिविटी प्लान कीजिए घर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में एक्टिविटी प्लान कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए कि घर में ही पिकनिक स्पॉट बन जाए, कुछ अच्छी चीजें डिस्कवर कीजिए, क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी, और इसमें उनको इंडल्ज कीजिए, तो ये एक बड़ी ही अच्छी फैमिली एक्टिविटी बन जाएगी।
1: और फिलहाल के लिए संडे है, अभी और बहुत सारी बातें बाकी हैं हमारे पास, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: टू यू. जी हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी आज बर्थडे है, आज उनका स्पेशल दिन है, संडे भी है, सोने पे सुहागा है. बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से आज आपके जन्मदिन पर. आपका दिन बहुत ही खूबसूरत हो, आपका पूरा साल बहुत खूबसूरत हो.
1: बिल्कुल. और जब भी बर्थडे के दिन कोई ऐसे ही हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोलता है तो अलग सा दिन बन जाता है. और जिन दोस्तों की आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बहुत बधाई. और किसी भी काम के आप एनिवर्सरी मना रहे हैं तो हमेशा ऐसे ही खुश रहिए.
0: जी हाँ दोस्तों, आज आपका किसी भी ओकेजन की वजह से स्पेशल डे है, हमारा भी स्पेशल डे हो गया आपकी. आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसी मशहूर हस्तियां हैं जिनके साथ आज अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि हिंदी सिनेमा और उर्दू साहित्य की दुनिया की बहुत बड़ा नाम है. वे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, पत्रकार और उपन्यासकार थे. इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित बहुत सारी फिल्मों की कहानियों को लिखा है.
0: जी हाँ दोस्तों, और वे राज कपूर के कई जो बहुत ही मशहूर फिल्में रही हैं, जैसे कि आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर, इनकी पटकथा के लेखक रहे हैं. उनकी लेखनी जो थी वो सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों को जो थी उसको परखती थी. और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो हमारी तरफ से इन्हें, मतलब हम इन्हें नमन करते हैं.
1: बिल्कुल. और आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं महेश भूपति. इनका जन्म 1974 को आज ही के दिन हुआ था. हम जानते हैं कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ग्रैंड स्लैम के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने.
0: जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं. एकता कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. 1975 में ये जन्मी हैं. और आप जानते हैं एकता कपूर का जब नाम आता है तो तुरंत आपके चेहरे पर, मतलब ऐसा एक वो आता ना, शाय शाय शाय,
1: कोमोलिका कोमोलिका वाला भी आता है.
0: ऐसा ना, आप कमर्शियल टीवी की बात करें तो काफ़ी मशहूर निर्माता निर्देशक रही हैं एकता कपूर. और उन्होंने कई सारी टेलीविजन सीरीज बनाई हैं जो कि बड़ी पॉपुलर हुई हैं. और साथ ही साथ उन्होंने फिल्मों का भी निर्माण किया है. और बालाजी टेलीफिल्म्स की के माध्यम से उन्होंने काफी सारे लोकप्रिय फिल्में बनाई हैं.
1: बिल्कुल. के सीरीज उन्होंने लॉन्च की और बड़े सारे ऐसे सुपर डुपर हिट सीरियल्स फिल्में उन्होंने दी हैं. साथ ही साथ 1981 में जन्मी अमृता राव आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, इश्क विश्क, मैं हूं ना, विवाह. और विवाह तो मेरी फेवरेट है.
0: ओ, मुझे पता था आपकी विवाह फेवरेट होगी.

0: जल लेंगे आप? जल
1: नहीं जल
0: तो अमृता राव जी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. काफी पॉपुलर रही हैं अपने जिस तरह की, उनके जो चेहरे का जो इनोसेंस था और उनकी जो अदाकारी थी. उन्होंने ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने एक पारंपरिक भूमिका ही निभाई है, उनके हम लोग तड़कते भड़कते अंदाज भी देखे हैं फिल्म मैहूना में. तो कह रहे हैं ना कि ये वर्सटाइलिटी जो है ना वो उस एक्ट्रेस की पहचान होती है, अच्छी अदाकारा की पहचान होती है. तो उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: और साथ ही साथ सुनील अंटिल, 1998 में इनका जन्म, सुमित अंटिल इनका जन्म 1998 में हुआ था. सुमित अंटिल भारत के विश्व विख्यात पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं. इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.
0: जी, तो इस महान हस्तियों के साथ आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. कुछ आप भी आज एक प्रण कीजिए कि आपको क्या करना है और उसको, उस प्रण को, उस ध्येय को आगे बढ़ाइए. अपनी सफलता को ज़रूर आप पा लेंगे.
1: बिल्कुल. और सफल होने के लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है और हेल्दी रहने के लिए अच्छी फूड हैबिट होना ज़रूरी है.
0: जी, और फूड हैबिट से याद है मुझे, आपको पता है विनय जी ने चाय छोड़ दी. तो चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अब ये जो हम एकता कपूर की बात कर रहे थे, तो फिर ये स्पेशल फरमाइश विनय जी की,
1: हम आपकी ओर से डांस कर रहे हैं.
0: यहाँ पर विनय जी डांस करेंगे स्टूडियो में.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। हमारी
1: जनगणना हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
5: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग

0: कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
7: अच्छा दोस्तों, 9:46 का वक्त है। अब चलिए जान लेते हैं कि आज के कुछ आयोजन हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगी, योग महोत्सव का आयोजन हो रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर में जानकीपुरम, और ये सुबह 5:30 से होता है। तो अभी आप इसका एक भाग बन सकते हैं अगले दिन,
8: यानी ये 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तब तक चलने वाली सीरीज है। तो अगर आप चाहें तो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, और लखनऊ में जगह जगह पर योग के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो 21 जून तक होने वाले हैं। साथ ही साथ बांधवी फाउंडेशन की ओर से चारा साज लाइव म्यूजिक शो राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसर बाग में 5:00 से होगा।
7: और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी व भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर अनिल रस्तोगी अभिनीत नाटक का एक आयोजन है, आखिरी बसंत इसका आयोजन है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो कैसरबाग, इसका मंचन जो है वो कला मंडपम कैसरबाग में आयोजन है इसका 7:00 से।
8: तो अगर आप लाइव थिएटर देखने के शौकीन हैं और अनिल रस्तोगी जी के फैन हैं तो आप ज़रूर जाइए 7:30
7: 7:30
8: जी।
7: और दोस्तों आपको बता दें कि आज हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मना रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं, हमसे जुड़ चुके हैं लोग। तो कुछ मेल्स हम शामिल कर लेते हैं। मोनू सेठ जी ने बोला है कि बस जागरूकता अपने हाथ है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ
8: जी। और साथ ही साथ कोमल तिवारी ने हमें मेल किया है कि आपको नमस्कार, मैं कोमल तिवारी इंदिरा नगर लखनऊ से। फूड सेफ्टी के लिए मेरा यही सजेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से जब खरीदें तो एक्सपायरी डेट के साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें
7: जी। और आगे हम मेल शामिल करते हैं राम मोहन गुप्ता जी का, और वो लिख रहे हैं सामान्यता देख लेते हैं पैक्ड खाद्य सामग्री की डेट, पर कई बार हो जाती है चूक, ले लेते हैं बिना डेट देख। बेस्ट बिफोर का मतलब अब यूज़ नहीं कर सकते के बजाय होता है तब तक ज़्यादा भला जाना सुन के। फूड सेफ्टी पर देना चाहिए सभी को पूरा ध्यान, वरना फूड पॉइजनिंग की समस्या कर सकती परेशान। विशेषकर ऑनलाइन खरीदी सामग्री देखें ध्यान से, रखनी और करनी चाहिए उपयोग ज़रूरी है ध्यान से। अनेकों बार पढ़कर लुभावनी स्कीमों के चक्कर में ले लेते हैं अनवांछित खाद्य सामग्री, फेंकनी पड़ती बाद में। घर के पके खाने को मौसमी ताप के अनुसार बचा खाना चाहिए, तभी लगे जब कर सकते उपयोग। हाँ
8: क्या बात है, बड़ी सारी पंक्तियों में इन्होंने एक टॉपिक को समेट दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
7: जी। हाँ दोस्तों, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और गीत आपको सुनाते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: दोस्तों 9:54 हो गए हैं और देखिए बात करते करते समय का पता नहीं चलता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आपको ये देनी थी कि एक अभी आयोजन की बात करी थी विनय ने, चारा साज। तो चारा साज एक लाइव म्यूजिक शो है और खास बात क्या है कि ये जो है ना बांधवी और साहस स्पोर्ट्स भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह है और चिकित्सकों और दिव्यांगजनों का ये एक संगीत कार्यक्रम है। तो ये इसका आयोजन आज जो हो रहा है राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में कैसरबाग लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें थोड़ा अनूठा कार्यक्रम है ये।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताते चले शाम 5 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो हम तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम का पार्ट बने और जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करें
4: जी। और आपको बता दें कुछ मेल मैं और शामिल कर लेती हूँ। वारिस अली जी ने मुद्दे पर कुछ बोला है, मेल करी है, वो यही लिख रहे हैं कि एक बात पर वो ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि

0: कभी गर्म भोजन का अखबार में लेकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अखबार में इस्तेमाल होने वाली जो स्याही है उसमें जो रसायन केमिकल होता है वो लेड होता है, जो गर्म खाने के संपर्क में आकर स्लो पॉइजन बन जाता है और हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डालता है। तो जैसे गर्म समोसे है, भटूरे हैं, अखबार में लेकर जो खा लेते हैं उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसको नहीं खाना है।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ जन्मेश जी ने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, और जो भी आपने लिखा है वो लेट्स सी कब होता है।
0: हाँ, तो कार्यक्रम की प्रस्तुति उन्हें अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मेल का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अब हम जो है ना कार्यक्रम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 9:56 है और आपको जैसा कि बताया कि 10 जो है आप कार्यक्रम सुनेंगे आज के मेहमान, और इसमें खास मेहमान आज माननीय पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी होने वाले हैं। तो ये खास प्रोग्राम आप बिल्कुल सुनना ना भूलिएगा, ज़रूर सुनिए। और साथ ही साथ 12 जो हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम आता है उसमें भी आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। तो हमारे साथ आज पूरे दिन आप बने रहिए, संडे बिताइए, अच्छे से बिताइए, और वैसे भी हमारे साथ तो दिन ही आपका रोज बनता है ना।
1: बिल्कुल, तो बस एंजॉय करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत से 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार

बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मासिक सुख स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मापन पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझ कर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पुनराभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे के स्पेशल ट्रेनें चलाने के का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
6: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार स्वीकार कीजिए सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। हर किरदार कुछ सिखा जाता है, जिंदगी हर रोज नया मंच दिखाती है, अंदाजे बया ही पहचान बन जाता है, वरना नाम तो हर किसी का होता है। किसी खास शख्सियत ने, मुझे लगता है कि ये शेर लिखे होंगे, और हमारा सौभाग्य है ऐसी ही एक सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय अनिल रस्तोगी जी आज हमारे मेहमान हैं। अनिल जी, आकाशवाणी लखनऊ के तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार।
6: बड़ा सौभाग्य है आज का दिन, क्योंकि आर्ट, संस्कृति, विज्ञान, सब कुछ अगर किसी एक व्यक्तित्व में समाते हैं तो नाम बनता है अनिल रस्तोगी। हमारे सुनने वालों को बताएं कि रस्तोगी जी, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई?
7: देखिए, मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मेरा जन्म

0: लखनऊ में हुआ, मेरी सारी शिक्षा लखनऊ में हुई, मैंने जॉब भी लखनऊ में किया, और जॉब के साथ जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो मैंने थिएटर शुरू किया वो भी लखनऊ में शुरू किया। और लखनऊ से ही मैंने आकाशवाणी में कैजुअल आर्टिस्ट के तरह से ज्वाइन किया। 1975 में लखनऊ में ही जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो मैंने यहीं से दूरदर्शन शुरू किया, और 1986 में जब पहली फिल्म मैंने जो काम किया ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा की, उनको एज डिबिटेंट इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, वो भी मैंने लखनऊ में की। तो मैं तो कहूंगा कि लखनऊ सब कुछ मेरे लिए रहा। मेरा परिवार एक बहुत ही एक आप कहिए एवरेज मिडिल क्लास परिवार था। मेरे परिवार में कपड़े का बिजनेस होता था, और मेरे पिताजी 6 भाइयों में 20-25 बच्चे थे, जिसमें इत्तेफाक से शिक्षा ज्यादा नहीं थी उस जमाने में, चलन बहुत होता था शिक्षा का। लेकिन मेरे बड़े भाई जो थे चंद किशोर रस्तोगी, उनकी इच्छा थी कि मेरा भाई पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो मैं अपने परिवार से पहला आप समझिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट था। तो उसके बाद फिर मैंने सरकारी जॉब CDRA मैंने जॉब किया, और यही चीज मेरी वाइफ के साथ भी है कि मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, मैं 18-19 साल का था, वाइफ 16 साल की थी, वो भी हाई स्कूल पास थी। लेकिन आप ये समझिए उस जमाने में तो बहुओं का पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बेटियों का पढ़ाना तक मुश्किल होता था,
1: मुश्किल होता
0: लोग नहीं पढ़ाते थे। लेकिन मेरे ब्रदर ने, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने हाई स्कूल से इंटरमीडिएट किया, फिर आईटी कॉलेज से BSc किया, फिर MA एंथ्रोपोलॉजी में किया, फिर PhD किया, और फिर ओनारिशा निकेतन में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इस्टेब्लिश किया, और 38 साल उन्होंने वहां पर पढ़ाया। तो इस तरीके से मेरा पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, और एक्टिंग का मुझे शौक हुआ 1961-62 में। तो मैंने तब पहला नाटक किया था, मुझे याद है उसका नाम था नूरजहां।
1: वाह।
0: और सुधांशु बोस जी उसके डायरेक्टर थे, सुराज बोस उनके भाई मेकअप करते थे, हालांकि बेसिकली वो बंगाली टीचर थे, लेकिन उन्होंने मेकअप किया था। फिर उसमें जो तारीफ मिली, वाहवाही मिली, तो मुझे लगा कि एक तो ये स्वांता सुखाए चीज होती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप कोई नया रोल करते हैं, और दूसरे एक पहचान मिलती है। तो ये शौक मेरा बढ़ता गया, और ये शौक फिर मेरा एक तरीके से नशा हो गया।
1: अनिल जी, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे, और CDRA में उच्च पदों से आपने अवकाश प्राप्त किया।
0: जी, मैंने 41 साल मैंने CDRA में जॉब किया।
1: वाह वाह।
0: मैं वहाँ जूनियर सर्च फेलो होकर के गया था।
1: जी जी।
0: और मैं डायरेक्टर्स ग्रेड साइंटिस्ट और बायोकेमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष होकर के रिटायर हुआ 2003 में।
1: ये फिल्मी दुनिया, थिएटर, रेडियो, ये अचानक परिवर्तन हुआ या आपका पारिवारिक माहौल कुछ ऐसा था?
0: नहीं, माहौल हमारे यहाँ कोई नहीं था, लेकिन हमारे एरिया में उस समय एक मदन मोहन हिंदू एसोसिएशन हुआ करती थी, उससे नाटक होते थे।
1: अच्छा।
0: तो वो नाटक मैं अक्सर देखता था, और एक बाग मक्का में भी, क्योंकि उस समय रविंद्रालय वगैरह तो थे नहीं या कोई रेगुलर थिएटर स्टेज रविंद्रालय 62 में बना है, लेकिन वहाँ अप्रोच कर पाना हम लोग के लिए मुश्किल था, महंगा भी था। तो हम लोग बाहरी नाटक करते थे, जैसे मैंने गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में नाटक किया, मैंने जो महानगर महापालिका का जो ऊपर त्रिलोकनाथ हॉल है, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पर मैंने नाटक किए, मैंने DAV कॉलेज के मंच पे मैंने नाटक किए, यहाँ नाटक होते थे जो आपका कैथीड्रल स्कूल है इसका ऑडिटोरियम है। पहला नाटक मैंने जो रविंद्रालय में किया था 1964 में था। तो मेरी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन जब मैंने किया तो मेरे घर वालों ने भी इसको प्रमोट किया। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैं CDRA गया, जैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते थे आपने डबल कैरियर आपका जो है, पैरेलल कैरियर आपका कैसे चला, साइंस में भी और थिएटर में भी, तो उसकी वजह ये थी कि मुझे CDRI के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा मैं नाटक करता हूँ, तो मुझे लोग एक अलग ही नज़र से देखते थे कि भाई इस बच्चे में कुछ और भी टैलेंट है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने कभी साइंस के साथ, मैंने उसे कोई कमी नहीं आने दी। जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ जो उनका शौक होता है, तो शौक के साथ वो जॉब को अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहा। मैंने साइंस भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही तन्मयता के साथ लग करके की जितना मैंने थिएटर किया।
1: अनिल जी, आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्मी दुनिया, सिने जगत तक आपने अपनी सेवाएं अभी भी आप दे रहे हैं। जब पहला ऑडिशन आपका आकाशवाणी में हुआ होगा उसका थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, कौन सा ईयर था?
0: जरूर जरूर। देखिए, मैं तो सोच नहीं सकता था, आकाशवाणी को ऐसा मैं मानता था कि जैसे एक बड़ी, मतलब फिल्म से भी बड़ी ग्लैमर की चीज मैं मानता था। और जब पहली मेरी मुलाकात जयदेव शर्मा कमल जी से हुई, मुझे याद है मैं शायद MSc का विद्यार्थी था या BSc का विद्यार्थी था, तो मैं अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाया कि मैं

0: कमल जी को देख रहा हूँ, ये ग्लैमर हुआ कहता था। अच्छा, फिल्म में तो जाने की कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। तो जब मेरे एक दोस्त थे एमएल बाला साहब, उनके साथ मैंने नाटक किया था जय सोमनाथ, बोले यार तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी, तुम रेडियो पे क्यों नहीं जाते हो? अरे मैंने कहा रेडियो में मैं? अरे नहीं भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बोले नहीं। तो वो मुझे लाए यहाँ, मुझे ऑडिशन दिलाया, इत्तेफाक से मैं पास हो गया। तो जो मैंने पहला नाटक किया था उसमें केल दुआ साहब यहाँ थे, एक दुआ कंपनी, एक स्पोर्ट्स की शॉप है
1: जी जी,
0: उसके मालिक थे, लेकिन वो वहाँ नैनीताल चले गए थे। तो जब भी वो नैनीताल से आते थे तो आकाशवाणी

0: मैंने पहला नाटक किया था उसमें केल दुआ साहब यहाँ थे, एक
1: अच्छा।
0: दुआ कंपनी एक स्पोर्ट्स की शॉप है
1: जी, जी, जी।
0: उसके मालिक थे, लेकिन वो वहाँ नैनीताल चले गए थे।
1: अच्छा।
0: तो जब भी वो नैनीताल से आते थे तो आकाशवाणी का सौभाग्य होता था उनकी रिकॉर्डिंग का। तो पहला नाटक मेरा केल दुआ साहब के साथ हुआ। और लल्लन भाई थे पीएन श्रीवास्तव साहब यहाँ आकाशवाणी के कलाकार, जिनके मैं बड़े नाटक सुनता था, बहुत मशहूर कलाकार थे। तो मैंने उनको अपना एक गुरु मन ही मन मान लिया था। तो मैंने जब पहला नाटक हुआ मैंने कहा गुरुजी मेरी आज पहली रिकॉर्डिंग है, आप भी सुनिएगा। बोले हाँ जरूर सुनूंगा। जब मैं रिकॉर्ड करके आया बाहर तो मैंने कहा गुरुजी गलती तो नहीं हुई? बोले अच्छा थिएटर बोले, अच्छा थिएटर बोले। क्योंकि बेसिकली मैं थिएटर उस समय मैं काफी कर चुका था, तो मुझे तो वही थिएटर की आदत थी। और रेडियो विधा ही बिल्कुल अलग है, जिसमें आप अपनी आवाज से ही पूरा सीन क्रिएट करते हैं।
1: जी, जी,
0: लेकिन
1: जी, जी।
0: उन लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला, और आज भी जब मैं रेडियो नाटक करता हूँ तो मैं बता नहीं सकता मुझे क्या आनंद मिलता है।
1: अच्छा, जब किसी नाटक में या सिनेमा में फिल्मों में रेडियो में जब आप अपना किरदार निभाते हैं, आपको जो एक रोल दिया जाता है कि आपको ये करना है, उसको अपने अंदर समाहित करना कितना कठिन काम, आप कैसे करते
0: थे? होता है
1: जी
0: कि जो कैरेक्टर आपको दिया जाता है, पहले आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जो आपका कैरेक्टर है विस-अविस जिनके साथ आप और रोल कर रहे हैं उनसे आपकी क्या रिलेशनशिप,
1: जी जी जी,
0: आपका जो किरदार है वो किस स्तर का किरदार है, उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसका सोशल स्टेटस है, क्या उसका एकेडमिक स्टेटस है, यू नो, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आप कोशिश करते हैं। और बेसिकली मैं अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ, मैं अपने ढंग से करता हूँ, फिर डायरेक्टर से मैं पूछता हूँ भाई आप बताइए मुझे कैसे करना है। और अगर कहीं पे मैं डायरेक्टर से एग्री नहीं करता हूँ तो मैं अपना व्यू पॉइंट भी रखता हूँ, बट फाइनली जो प्रिवेल करता है वो डायरेक्टर ही प्रिवेल करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्टर का जो नजरिया होता है वो पूरे प्ले की टोटेलिटी में होता है।
1: जी जी जी।
0: चाहे वो फिल्म हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, तो अल्टीमेटली मैं करता वो हूँ जो डायरेक्टर है। लेकिन डायरेक्टर के बताने के बाद फिर मैं उसको ग्रो करने की कोशिश करता हूँ कैरेक्टर। जैसे अभी मैंने एक प्ले डैडी किया,
1: अच्छा,
0: सूर्यमोहन कुलशेष जी के साथ,
1: जी, जी,
0: मेरा 99th प्ले था इस मंच
1: जी,
0: का
1: जी, जी।
0: शो तो मैंने लगभग 1000 से ज्यादा किए पूरे हिंदुस्तान भर में।
1: जी, जी।
0: तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक बेसिक कैरेक्टर बता दिया कि डिमेंशिया का पेशेंट है। अब उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं और उसमें फूल पत्तियां और जोड़ सकता हूँ। जैसे अभी मैंने एक प्ले किया आखिरी वसंत, उसमें मैं एक वो किरदार करता हूँ जिन पेरेंट्स के बच्चे बाहर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहला शो किया और अभी मैं करूं तो 28वां शो होगा, मुझे लगता है मैं हर प्ले में मैं ग्रो करता हूँ, मैं और गहराई में उसमें जाता हूँ। तो इस तरीके से सीखने को भी मिलता है और अच्छा करने को भी मिलता है।
1: अनिल जी, आज आप हिंदुस्तान के बड़े नामवर अभिनेता हैं, अपने अदाई के लिए आप जाना जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में चूंकि संघर्ष तो जरूर रहा होगा, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को।
0: देखिए, इस मामले मेरा मानना है, मैं चूंकि बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ी है, एक फॉर्मूला है, हार्ड वर्क HW प्लस टैलेंट। देखिए, इनहेरेंट टैलेंट आप में जरूर होनी चाहिए, अगर टैलेंट नहीं है आप किसी नॉन टैलेंटेड पर्सन को टैलेंटेड नहीं बना सकते, टैलेंट की ग्रूमिंग की जा सकती है। तो वो टैलेंट होना चाहिए प्लस परसीवरेंस, लगे रहना। जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी फिल्मों के लिए अक्सर या टीवी कॉमर्शियल्स करता हूं, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ता है। बहुत से ऑडिशन देता हूं, हर एक में नहीं सेलेक्ट होता हूं, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हें करने को नहीं मिलेगा,
1: फिर छूट ही
0: जाएगा। तो परसीवरेंस, लगे रहना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई लक। लक भी मैं आपको बताऊँ बहुत काम करती है, और शायद इस मामले में ईश्वर ने मुझे बहुत सहयोग दिया, माँ सरस्वती का मेरे साथ रहा कि मैंने जिस फील्ड में काम किया उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष लगभग पूरी कर चुकी है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी को इतना प्यार करने वाला, आकाशवाणी के लिए जीने वाला, आकाशवाणी के कार्यक्रम में शामिल होना और आकाशवाणी के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना, ये आप में आपने बहुत कुछ समझा है।
0: इसकी मैं वजह बताऊं, इसकी वजह ये है कि जो भी मैं थिएटर में करता हूं, चाहे मैं टेलीविजन पे करूं या फिल्म में करूं, एक्टिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है कि आप कौन सा किरदार कर रहे हैं,
1: जी जी,
0: उसमें वॉइस का बहुत बड़ा खेल होता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है, कि आकाशवाणी में, जैसे मैंने बताया अभी, कहा कि आकाशवाणी में आपको अपनी आवाज से ही पूरा सीन क्रिएट करना होता है। आदमी कैसा है, बीमार है, डकैत है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, क्या हो रहा है,

0: वो सब कुछ आपको अपनी आवाज से क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि मेरे साथ ही बहुत एडेड एडवांटेज रहा, बहुत कम मेरा ख्याल हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो कि चारों विधाओं में काम कर रहे हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीविजन और स्टेज। मैं शायद उन चंद लोगों में से एक हूँ, तो मुझे इसका बहुत फायदा मिलता है कि मैं आकाशवाणी का कलाकार हूँ।
1: आपने आकाशवाणी में इतने प्लेस किए हैं सर, कोई ऐसी घटना का जिक्र करें, कभी आप लेट हो गए हों या कभी कोई डायलॉग सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टर आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आकाशवाणी के रेफरेंस
0: से। एक बार मैं आपको बताऊं, बहुत मजेदार बात हुई। यूजुअली जब से मैं आया हूँ रिकॉर्डेड ही प्रोग्राम होते हैं,
1: जी जी,
0: लाइव प्रोग्राम नहीं होते थे। मेरी इच्छा थी हम, बल्कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे यहाँ, कमल जी या जोशी जी या सुशील बनर्जी साहब या चंद्र प्रभा भटनागर
1: जी,
0: ये लोग सब हमारे डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर यहाँ थे, कि कभी मुझे लाइव भी कराइए। बोले नहीं नहीं, लाइव आजकल नहीं होते। एक कमल वर्मा जी थी, बच्चों का प्रोग्राम प्रोड्यूस करती थी, तो उसमें उन्होंने मुझे एक बार चैलेंज दिया। अच्छा, मैं एक साल मैंने बच्चों का ही प्रोग्राम किया था, उस समय इत्तेफाक से शायद रजनलाल जी और शकुंतला दीदी यहाँ नहीं थे, तो एक साल मैंने बच्चों का भी प्रोग्राम किया है बाल संघ। तो उसमें 14 नवंबर एक पड़ा, उसमें मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट करने को पड़ा। अब मैं प्रोग्राम तैयार करके ले गया था, अब प्रोग्राम जो था वो 1 घंटे का प्रोग्राम होना था, अब प्रोग्राम छोटा होने लगा। अब दीदी हमें इशारा कर रही है वहां से पीछे बैठ कर, और बताओ और बनाओ, नहीं और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो वो इतना चैलेंजिंग हो गया था कि उसको कैसे कोप अप किया जाए, कैसे पूरा टाइम किया जाए, बड़ा भारी चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं बच्चों को साइंस की तरफ ले गया, किस्से सुनाने लगा, नेहरू जी के बारे में बताने लगा, और वो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, आकाशवाणी के लिए। तब मैंने महसूस किया कि लाइव ब्रॉडकास्ट कितना मुश्किल होता होगा।
1: आकाशवाणी से इतने लंबे अरसे से आप जुड़े हैं, और अपनी बात को कहने का तरीका, संवाद भी है, नाटक है और सीरियल्स हैं या वार्ताएं हैं, अपनी मनोभाव को साबित करने के लिए हम तमाम चीजों का सहारा हम लोग लेते हैं।
0: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी था तो मैं साइंस की टॉक्स भी देता था, चूंकि मैंने उर्दू नाटक भी किए थे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर थे शफात अली साहब। शफात साहब मुझे उर्दू के प्रोग्राम से ही बुलाते थे। अब मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं क्या करता था कि मैं अपना साइंस का टॉक लिख लेता था, और यहाँ बहुत सीनियर एक्ट्रेस थे, डॉक्टर आसफा जमानी, प्रोफेसर आसफा जमानी जो कि यहाँ पर पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड भी थी, तो मैं उनके यहाँ जाता था पहले और उनसे उसका उर्दू का तर्जुमा लिखवाता था।
1: क्या बात,
0: ताकि जो उर्दू के लिसनर्स हैं मेरे, उनको ये लगे कि कोई उर्दू स्पीकिंग ही आदमी बोल रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर उसमें हिंदी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हिंदी में साइंटिफिक टॉक दे रहे हैं, तो फिर उर्दू सेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता। तो हम लोग बड़ी मेहनत करते थे। मुझे याद है, मुझे एक बार कमल जी ने बड़ा चैलेंजिंग रोल दिया था, भगवती चरण वर्मा जी का नाटक था चित्रलेखा, और मेरे गुरु जी कर चुके थे ललन भाई। अब मैं साहब कहां, ललन भाई कहां, मैं तो उसकी कोचिंग लेने में कमल जी के घर जाता था, घर में जाकर के मैं उनके प्रैक्टिस करता था, मुझे वो रिहर्सल कराते थे। वो जमाने में कम से कम 3-3, 4-4 दिन तो हम लोगों की रिहर्सल होती थी, और रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होती थी। आज की तरह नहीं होता था कि उसी दिन रिहर्सल हुई उसी दिन रिकॉर्डिंग होगी। बहुत मेहनत करते थे हम लोग, और उसका नतीजा भी था कि आकाशवाणी लखनऊ के बहुत सारे प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्यक्रम में भेजे जाते थे। मैं भी उन कुछ चंद लकी लोगों में हूँ जिनके नाटक आकाशवाणी दिल्ली से भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारित किए।
1: बहुत बड़ी बात है अनिल जी, संवाद के जरिए, नाटकों के जरिए, वार्ता के जरिए हम अपने दिल की बात अपने सुनने वालों तक पहुंचाते ही हैं। आकाशवाणी का एक और भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो गीत संगीत के जरिए भी अपने सुनने वालों को अपने पास रखती है।
0: आपने
1: जाहिर सी बात है, क्योंकि आप संगीत प्रेमी भी हैं, भले ही भी विज्ञान के छात्र हैं।
0: मुझे याद है आकाशवाणी में कार्यक्रम आता था बिना का गीत माला, तो वो तो इतनी मशहूर थी कि मैं, अमीन सयानी जी,
1: क्या बात,
0: उसको एंकर करते थे, क्या बेहतरीन चीज आती है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा संगीत प्रेमी तो नहीं रहा, लेकिन मुझे मुकेश जी, लता जी, आशा जी और रफी साहब, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और आपको मैं बताऊं, मुकेश जी के साथ तो मुझे मंच शेयर करने का मौका
1: मिला। अरे वाह, क्या बात।
0: मैं 1967 में नाटक करने गया था मुंबई, तो उसके बाद मैंने देखा एक नौजवान आदमी हमारी ग्रीन रूम के बाहर स्क्रिप्ट लिए कुछ गुनगुना रहा है। मैंने उनको पूछा कौन है, उन्होंने कहा अरे ये तो मुकेश है। अरे मैंने कहा अच्छा, मेरे नाटक के बाद फिर मुकेश जी का गाना वहां पर हुआ मंच, बड़ा मेरा सौभाग्य था। ऐसे ही प्रवीण जैन जी के साथ मैंने मंच शेयर किया।
1: अच्छा।
0: आकाशवाणी की विविध भारती का, आपका जो बॉम्बे सेंटर विविध भारती के 25 साल हुए थे, तो उसके लिए मुझे मंच पे उस समय एक्चुअली

0: ये अब नहीं होते हैं, पहले आकाशवाणी की तरफ से मंच पे बहुत प्रोग्राम होते थे, लहरें कार्यक्रम होता था, आकाशवाणी अवार्ड फंक्शन होता था, उसे मंच पे कार्यक्रम होते थे। और तो वहां पर मंच कार्यक्रम के लिए मैं गया था, मेरा एक प्ले था, थपलियाल जी ने लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, चूचू का मुरब्बा, बहुत फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके में हमने बहुत सारे सेंटर्स में किया। उसके बाद साहब वहाँ हमारे कार्यक्रम के बाद रविंद्र जैन जी का प्रोग्राम था, तो मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। आप मुकेश जी का कोई गाना सुनवाइए, जो पुरानी फिल्में हैं, श्री 420 है, या भाई राज कपूर जी को तो वैसे ही वही देते थे,
1: जी जी, जी, जी।
0: उनके सारे गाने मुझे अच्छे लगे।
1: चलिए मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत हम भी सुनते हैं, सुनने वालों तक पहुँचाते हैं।

0: अरे जी, आकाशवाणी के नाटकों में आपने इतना सुंदर अभिनय किया, फिर ऑल ऑफ सडन या अचानक ही ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ कि आप सिने जगत की तरफ जाने लगे?
1: नहीं देखिए, सिने जगत की बात तो यह है कि जब मैंने आकाशवाणी में शुरू किया था उस समय तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप सिनेमा में जा सकते हैं, क्योंकि मैं मंच ऑलरेडी कर ही रहा था। तो उसमें हुआ ये कि दूरदर्शन आया पहले यहाँ 1975 में, और दूरदर्शन में मैंने काम शुरू किया। इत्तेफाक से जाते ही वहां भी जो ऑडिशन हुए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं उसमें नाटक करने लगा तो क्या है कि जब आप विजुअल मीडिया में आते तो आपको एक पहचान मिलती है, और जाहिर है हर आदमी पहचान का भूखा होता है कि भाई मुझे लोग जाने। तो जब यहाँ पर फिल्म बन रही थी ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा जी की, चूंकि उनकी पहली फिल्म थी तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, उसमें मेरे दोस्त थे

0: एक थिएटर के उन्होंने कहा कि भाई आप चूंकि आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें रोल करें। तो मुझे जब रोल करने को मिला तो जाहिर है बड़े स्क्रीन पे करने का और चार्म होता था। मैं दूरदर्शन के कार्यक्रम करता था तो जो फिल्म मिली तो उससे मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। तो इस तरीके से जो लखनऊ में भाई जाहिर है मेरे लिए बम्बई जाना तो संभव नहीं था, मैं ऑलरेडी जॉब में था तो और मुझे लोग जानते भी नहीं थे और बम्बई मुझे कौन बुलाएगा। लेकिन लखनऊ में जो फिर फिल्में यहाँ दूरदर्शन में आरडी सिंह थे उन्होंने एक फिल्म बनाई मरीचिका, यहाँ लखनऊ में एक फिल्म और शूट हो रही थी खून बहा गंगा में, एक बड़ी हीरोइन थी उसमें, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसको लेकर के उससे मुझे काम करने का मौका मिला। तो इस तरीके से छोटे मोटे रोल मुझे फिल्मों में मिलने लगे, मैं करने लगा। लेकिन मैं बड़े पर्दे पे लग करके करूंगा वो मुझे मिला इशकजादे फिल्म से। जब इशकजादे यहाँ पर शूट हुई उसे मुझे इत्तेफाक से एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मिला अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का। वो अगर आप देखें तो सेंट्रल कैरेक्टर था फिल्म का जिसके अराउंड स्टोरी घूमती है, उससे मुझे बहुत पहचान मिली।
1: उस फिल्म का कोई डायलॉग अगर याद हो तो?
0: अब डायलॉग तो उसका याद नहीं है लेकिन एक सुना देता हूँ, कोशिश करता हूँ सुनाने की। उसमें था कि देखो कमिश्नर साहब ये इलेक्शन पास आ गया है, हमारे बंदे ने अगर कोई गड़बड़ की तो मैं उसे गुद्दी पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा, आप उसको जेल फांसी काला पानी जो समझ में आए आपको देना। लेकिन कुरेशियों को समझा लो, उनने अगर गड़बड़ की तो ये चुप नहीं बैठेंगे, गांधी बाबा का खानदान है हमारा, हाँ हम उन्हीं की परिपाटी पे चलते, समझा लो उनको, वो कुछ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा पवार नहीं होगा, वो आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी का बाप देते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब।
0: उस फिल्म से मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली और लोग बंबई जाते हैं स्ट्रगल करते हैं, मुझे बंबई खास बुलाया गया।
1: वाह वाह क्या बात।
0: ऑलरेडी उस समय 70 मेरी उम्र होने वाली थी तो बल्कि मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि बेटा तुमको जो शूट करना हो यहाँ आके लखनऊ में करो, मैं बंबई इस उम्र में कहूंगा नहीं नहीं सर ये तो डेली सोप है और चैनल ने आपका सिलेक्शन किया, प्लीज आ जाइए। फिर मैं गया, मेरी परिवार ने मेरे बेटे ने मेरी बहू ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे वहाँ फ्लैट खरीद के दे दिया। फिर मैं 5 साल बंबई में रहा, फिर मैंने खूब जम के काम किया और मुझे लगता है कि इशकजादे ने मेरा एक कैरियर ही बदल दिया कि आज मैं करीब 75 फिल्में कर चुका हूँ।
1: कौन कौन सी फिल्में हैं वो हमारे सवाल कुछ बताएं।
0: देखिए जो मेरी अच्छी फिल्में हैं उसमें जैसे इशकजादे है, मुक्ति भवन है एक मेरी फिल्म जो बनारस में शूट हुई थी, सुभाषीष भूटिया ने एक यंग लड़का 25 साल का था उस समय उसने डायरेक्ट की थी, उसको 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड मिले। मैंने अनुभव सिन्हा जी के साथ मुल की उनकी, उनके साथ मैंने थप्पड़ की, मैंने बहुत सारी फिल्में नाम नहीं याद आ रहे हैं, जैसे फिल्म आई थी मेरी एक चतुर नार, मैंने एक फिल्म वहाँ देहरादून से ऊपर राउतू का राज, और काफी फिल्में मेरी बहुत पॉपुलर जैसे बाटला हाउस मैंने की, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने की, रेड 1 मैंने की, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। तो चूंकि मैं बम्बई 5 साल रहा, मैं बम्बई गया था तो वहाँ जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके डेटाबेस में मेरा नाम आ गया। मैंने एक शॉर्ट फिल्म अल्जाइमर पे की जिसको भी नेशनल अवार्ड मिला, रेणुका शाहने के साथ अल्जाइमर के ऊपर 10 मिनट की फिल्म मैंने की। तो इस तरीके से छोटी बड़ी फिल्में मिला करके जैसे मैंने बताया अब तक 75 फिल्में हो चुकी है एंड आई रियली एंजॉय स्टिल डूइंग फिल्म्स। अभी मैंने वेब सीरीज की जिसमें करीब 14 मेरी वेब सीरीज हो चुकी हैं। पहली मेरी वेब सीरीज थी मीरा नायर जी के साथ द सूटेबल बॉय, एक मेरा ख्याल विक्रम सेठ का नॉवेल है, शायद बहुत ही मशहूर नॉवेल है, उस पर उन्होंने बनाई थी। फिर मैंने सुष्मिता सेन जी के साथ एक वेब सीरीज है ताली, उसे मैंने जज का रोल। अभी आजकल मेरी एक वेब सीरीज आ रही है बिंदिया के बाहुबली, उसे मैंने जज का रोल किया है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो मेरी वेब सीरीज हुई वो थी आश्रम।
1: अच्छा।
0: जिसके 3 सीजन आ चुके हैं, तीनों मैंने रोल किया है, उसका 4th सीजन की अब शूटिंग शुरू होने वाली है अगस्त से फिर से, मुझे प्रकाश झा जी का मैसेज मिला है, उसे मैंने मुख्यमंत्री का रोल किया है। तो इस तरीके से मैंने टीवी कमर्शियल्स बहुत सारे किए, 22-24 में टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ। तो ये है कि लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट जो मेरा आया उसमें 2 चीजें थी। एक पहला था मेरा सीरियल उड़ान जो 1989 में कविता चौधरी ने बनाया था, वो जब टेलीकास्ट हुआ उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था राष्ट्रीय चैनल, तो वो पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाता था। और चूंकि उसमें मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया था सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस

0: और जो हीरोइन थी उसका बॉस भी था, उसका मेंटर भी था, उसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी वो पूरे हिंदुस्तान में। बल्कि आपको मैं बताऊं, मजा आता था क्योंकि अक्सर मैं एज ए साइंटिस्ट मैं मीटिंग्स अटेंड करने जाता था, कहीं मेरा पेपर प्रेजेंटेशन होता था, कहीं मैं लेक्चर देने जाता था, कहीं एग्जामिनर होके जाता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद हैं, क्योंकि सीरियल बहुत पॉपुलर था। स्टेज आर्टिस्ट तो मुझे लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 64 साल मुझे हो गए, मैं 1961 से कर रहा हूँ थिएटर, और अभी मैंने 2025 में अपना 100वां नाटक किया था, और टोटल मेरे नाटकों के 1000 से ज्यादा शोज हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान पर। लेकिन जो फिल्म की मेरी पहचान हुई वो या वेब सीरीज में या टीवी कमर्शियल, वो उसका मेन रीजन रहा इशक साधे।
1: बहुत बधाई हो आपको कि सिने जगत में आप बेहतरीन कमाल कर रहे हैं। हमारे सुनने वाले को बताएं कि एक जो श्रोता वर्ग होता है वो फिल्म देखने जाता है, हॉल में जाता है, आपकी फिल्म देखता है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैसेज वो अपने दिल में लेके जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्मों का समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है।
0: देखिए, फिल्मों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि क्या है कि हम ये मानते हैं कि विजुअल मीडिया जो है बहुत पावरफुल होता है। एक चीनी कहावत है कि जब आप कोई बात सुनते हैं तो वो सुन करके कान से निकल जाती है, जब आप उसको देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती है। तो फिल्म चूंकि एक विजुअल मीडिया है, जो आप देखते हैं उसका असर पड़ता है। अब देखिए क्या है कि बहुत सारी फिल्में आती हैं जो कि ये पहले आती थी, वो बेसिकली हीरो हीरोइन बेस्ड होती थी, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, एक कॉमेडी हो गया, और अक्सर मैसेज नहीं होता था। लेकिन अब जो है कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है फिल्म का, कंटेंट बेस्ड फिल्म आती है। आजकल आप देखिए जैसे धुरंधर फिल्म आई है, या कश्मीर फाइल्स आई थी, या सोशल फिल्में बहुत सारी आती हैं। मैं आपको बताऊं नरगिस की फिल्मों, मदर इंडिया आई थी, हमारे बलराज साहनी जी की फिल्म आई थी, वो बहुत मशहूर फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो एक या जैसे 3 Idiots आई थी, तो इन सब में एक जो सोशल मैसेज होता है, श्री 420 आई थी राज कपूर जी की फिल्म, गुरदत्त जी की फिल्में आती थी, तो इन फिल्मों में जो मैसेज होता था उसका बड़ा असर पड़ता था। और क्या है कि अब जैसे तमाम विलेन हैं, अब विलेन में आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो फिल्मों में चीजें दिखाई जाती है उसको पकड़ते हैं, आजकल आपको नए नए तरीके के विलेन मिलते हैं, तो ये उसका निगेटिव आस्पेक्ट है। अभी बीच में OTT आया था, OTT पे आप देखिए तमाम गाली गलौज शुरू हो गई थी, लोगों को लगता था गाली गलौज चूंकि लोग लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वहां बोलना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें शॉर्ट टर्म होती है, असली चीज होती है वही थिएटर में मैं करता हूँ। थिएटर में जैसे अभी मेरा प्ले डैडी है, वो डिमेंशिया की कहानी है, एक डिमेंशिया पेशेंट की, मैं आपको लिटरली बताऊं लोग रोते हैं उसमें, तमाम लोग मुझसे आके बाद में मिलते हैं कि मुझसे कहते हैं साहब जो आपने दिखाया मेरे घर की यही कहानी है। मैंने एक प्ले किया था शनिवार रविवार, चाइल्डलेस कपल की कहानी है कि वो अपना समय काटते हैं, खुशी खुशी काटते हैं करते हैं, लेकिन जो एक दर्द मन में रह जाता है बच्चे न होने का। और इसके जरिए जैसे रामायण है, अब रामायण क्यों इतनी पॉपुलर हुई कि रामायण की वजह से लोग अपने घर में बच्चों को शिक्षा देते हैं कि भाई तुम राम बनने की कोशिश करो, लक्ष्मण देखो कितना वो अपने बातों पे अटल रहे हैं, कितना अच्छे उनके कर्म रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है नई जनरेशन को सीखने में, जो पुराने लोग हैं उनको भी जब ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो अगर ये कहा जाए कि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है तो गलत बात नहीं होगी। और इसीलिए लोग कोशिश करते हैं, अब आप देखिए कि ग्लैमर वाला पीरियड खत्म हो रहा है, कंटेंट बेस्ड जो है चीजें आ रही है, तो वो कंटेंट इसीलिए क्योंकि वो जहां थिएटर में हो चाहे सिनेमा में, जहां वो डायरेक्ट आदमी से जुड़ता है वो फिल्में बहुत पॉपुलर।
1: आपने एक जमाने से आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन के लिए, सिनेमा जगत के लिए आप काम कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस करते हैं कि आज की फिल्मों में?
0: नहीं, बहुत बदलाव, जैसे अभी अभी मैंने कहा ना कि पहले ग्लैमराइज्ड फिल्में आती थी, ग्लैमर के ऊपर फिल्में चलती थी, अरे भाई इसमें शाहरुख खान रोल कर रहे हैं, इसमें आमिर खान रोल कर रहे हैं, इसमें सलमान खान रोल कर रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब देखिए जो हमारे नए कलाकार आ रहे हैं, थिएटर के एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे नसीरुद्दीन शाह साहब हो, हमारे ओमपुरी जी, अब नहीं ओमपुरी जी चले गए हैं, पंकज कपूर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, राजपाल यादव हैं, देखिए ये जो फिल्में आज जो नई नई बन के आ रही हैं इनको लेकर के, वो एक तो एक्टिंग प्रधान है, उसमें आपको बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलती है, और कंटेंट पे फिल्में चलती हैं, न कि उस ग्लैमर के ऊपर। कम से कम एक क्लास ऐसा है जो कि ऐसी ही फिल्में देखने जाता है।
1: जब आप किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है,

0: उसमें बहुत सारे आपके कुछ किस्से होते होंगे, तमाम लोगों से मिलना होता है, कुछ मजेदार ऐसा वाकया होता है कि कभी आप सेट पर गए और किस किस तरह की बातें आप लोग करते हैं सेट से पहले, उसका क्या दृश्य होता है?
1: देखिए, बहुत मजेदार वाकया तो नहीं, एक मैं ऐसा वाकया बना रहा हूँ जिसमें मैंने बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील किया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डायरेक्टर हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं एक सीरियल कर रहा था, मेरा ख्याल कोई क्राइम शो था शायद, उसे डायरेक्टर आया। अच्छा, मेरी थोड़ी रिकॉग्निशन पावर वीक है, मैं नाम और चेहरे लोगों की जल्दी भूलता हूँ, मुझे याद नहीं रहते। और वो डायरेक्टर, शायद मैं 3-4 एपिसोड कर चुका था पहले कभी, मुझे याद नहीं था वो है, तो आया तो चला गया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं उनको विश करूँ। उसके बाद में सब लोग जब आ गए तो वह साहब रीडिंग करें, मैं रीडिंग करने लगा अपने कैरेक्टर। बोले नहीं नहीं कुछ बन नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा बताइए। नहीं नहीं नहीं एक्टर आप हैं, आपका काम है करना, मैं तो बता रहा हूँ कुछ ऐसा चाहिए। मैंने कहा ठीक। मैंने दूसरे ढंग से पेश किया, नहीं नहीं नहीं नहीं आ रहा अनिल जी, नहीं बात। फिर तीसरे ढंग से पेश किया, भाई आकाशवाणी से मैंने सीखा है कि आप आवाज मॉड्यूलेट करके उसको अलग अलग ढंग से पेश कर सकते हैं। तो बोले अच्छा, मैं आपको 1 घंटे टाइम देता हूँ, आप इसको फिर से तैयार करिए। फिर मैं 1 घंटे बाद फिर आया, मैं नहीं साहब बन नहीं रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है महाराज, आप मेरा पेमेंट दे दीजिए, मैं जाता हूँ। इसी मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह,
1: मैंने हबीब फैजल के साथ काम किया है, मैंने एक से एक सुधीर मिश्रा के साथ काम किया, मैंने तिग्मांशु धूलिया के साथ काम किया। किसी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि अनिल जी बन नहीं रहा। प्रकाश झा जी के साथ काम किया, ये जरूर है कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऐसा कर दें। लेकिन उस दिन आई फेल्ट सो बैड, वो मुझे लगा कि चूंकि उसने नमस्ते मैंने उसको नहीं की थी, ही फेल्ट सो ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट। तो वो मैं इतना ह्यूमिलेटेड। तो एक बार फिर मैंने फेसबुक पे मैंने डाला कि ऐसे ऐसे भी होते हैं, साहब फौरन उसका फोन आया मेरे पास। मैंने डाला कि उसने मेरे साथ इस ढंग से बदतमीजी की डायरेक्टर ने। अरे सर मैंने ऐसा क्या किया था, आपने डाल दिया, सर आपके तो बड़े फॉलोवर्स हैं और मुझे फोन आ रहे हैं कि भाई तुमने रसोगी के साथ ऐसा। मैंने सब ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं आपने किया था। मैंने कहा पहली बार ऐसा हुआ था कि सेट छोड़ के मुझे आना पड़ा, एक बेइज्जत होकर के आना पड़ा कि मैं कैरेक्टर कर नहीं पा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं नहीं सर मैं तो देखिए आपको मैंने लखनऊ से बुलाया बंबई में करने के लिए, आपको याद होगा फलाने एपिसोड के लिए ये वो। तो खैर उसने बड़ी माफी अफी मांगी। अच्छा। तो ये वाकया जो आज भी मुझे याद है, आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट। देखिए मैं अपने को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं डायरेक्टर सेक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर जो बताता है मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि नहीं नहीं आप नहीं कर पा रहे। मैंने आप सोचिए कि इस मामले में मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा लकी रहा कि चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे थिएटर हो, मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिले। मैं टाइप्ड नहीं हुआ। अब जैसे ये नहीं हुआ कि मैंने उड़ान में रोल मेरा बहुत पॉपुलर हुआ है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मुझे पुलिस के ही रोल मिलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने नेता की भी रोल किए, मैंने विलेन भी किया, मैंने हीरो भी किया, मैंने कॉमेडी भी की, हर तरीके के रोल मैंने किए। तो जाहिर है कि जब आप हर तरीके के रोल करते हैं तो ऐसा बड़ा मुश्किल ही है। ये ठीक है कि आई मे नॉट कम टू द मार्क और डायरेक्टर को मुझे बताना पड़े, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझसे कोई कहे कि नहीं आपसे रोल हो नहीं पा रहा है। मैंने थिएटर के मैंने बड़े चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, जैसे मैंने बताया यहूदी की लड़की में यहूदी का रोल कर रहा था। आपको मैं बताऊं, ये रोल पहले अनुपम खेर साहब कर रहे थे हमारे यहाँ।
0: अच्छा।
1: खेर साहब लखनऊ में थे, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे थे, थपलियाल जी ने कहा मुझे अनुपम खेर दे दो, मैं प्ले कर दूं। मैं इत्तेफाक से आपके ड्रामा सेक्शन में खेर साहब बैठे हुए थे। मैंने खेर साहब से कहा खेर साहब हम ये प्ले कर रहे हैं, आपको करना है। बोले जहे नसीब कि भाई दर्पण कर रहा है, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात। देखिए खेर साहब कह रहे हैं।
0: वाह वाह।
1: तो खेर साहब कर रहे थे, बीच में खेर साहब को छोड़ के जाना पड़ा उसे। तो थपलियाल ने कहा नहीं अब तुम करो रोल। अब आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है, कहीं अनुपम खेर हो कहीं अनिल रस्तोगी। खेर साहब उस जमाने से ही बहुत टॉप के आर्टिस्ट थे। खैर मैंने किया तो थपलियाल जी ने मुझे उसकी एक एक लाइन सिखाई, और मैं आपको बताऊं अभी तक मैं उसको अपनी जिंदगी का बेस्ट प्ले मानता था।
0: वाह वाह।
1: उसी तरीके से मुझे सखाराम बाइंडर करने के लिए कहा गया, मेरे गुरुजी थे राजेश्वर बच्चन जी, कहने तुम्हें सखाराम का रोल करना। अब सखाराम का रोल बड़ा चैलेंजिंग रोल है, उसका डायलॉग है, मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, उसका डायलॉग है मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। सोचिए कि ना अनिल बीड़ी पीने वाले, ना अनिल गाली देने वाले, कैसे रोल करेंगे। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा बच्चन जी मैं अलग से बैठ के आपके साथ 1-to-1 रिहर्सल करता हूँ, जब आपको लगे कि मैं रोल कर ले जाऊंगा और मुझे भी लगे कि मैं रोल के साथ जस्टिफिकेशन करूंगा तब इसको अनाउंस करेंगे। तो मैंने बड़े चैलेंजिंग रोल्स भी किए हैं।
0: बहुत बड़ी बात।
1: तो और उसका मुझे बड़ा

0: संतोष अभी जैसे जो मेरा 99 पे डैडी है, इसमें सूर्यमोहन ने मुझे एक एक लाइन इसकी बताई कि अनिल जी, क्योंकि मैंने कभी डिमेंशिया पेशेंट देखा नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने फिल्म देखी, फिर उस ढंग से मैंने रोल को कंसीव किया और ईश्वर की कृपा से वो भी मेरा बहुत सक्सेसफुल नाटक।
1: वाह वाह, आज आप सफलता के शिखर में हैं अनिल जी, इस बात के लिए तमाम लोग जिम्मेदार होंगे, तमाम लोगों का सहयोग होगा। आपके परिवार ने इस सफलता में कितना सहयोग?
0: परिवार ने तो मेरे पूरा सहयोग किया। देखिए, मेरे माता पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई भी जो हुई मेरे बड़े भाई साहब ने प्रमोट किया, उन्होंने मुझे थिएटर के लिए भी प्रमोट किया। मुझे याद है मेरा कपड़े का बिजनेस था, मैंने बताया अक्सर हमारे यहाँ 50-50, 100-100 लोग आ जाते थे कस्टमर, और मैं भी लग जाता था बिजनेस में। लेकिन जैसे मेरी रिहर्सल का टाइम होता था, भाई साहब मुझसे कहते थे अनिल तुम्हारी रिहर्सल का टाइम है, तुम जाओ, ऐसे प्रमोट किया। और इधर जो मुझे सबसे बड़ा प्रमोशन मिला, मेरे बेटे बहू ने तो जैसे मुझे बम्बई में फ्लैट खरीद के दिया, अदरवाइज में बम्बई में मेरे लिए मैं लिम्प करता था जब मैं बम्बई गया था, तो मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल था। अब देखिए, अभी मैंने एक 100वां प्ले जो मेरा था, दैट वाज ऑलमोस्ट माय बायोग्राफी, और उसमें एक कैरेक्टर अमरीश बॉबी भी थे, लेकिन 99% मेरे डायलॉग्स थे, सोलो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट थी। तो ये डायलॉग अभी इस उम्र में, आप सोचिए 83-82 साल की उम्र में याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो मेरी पत्नी मुझे याद कराती है। जैसे मैंने बताया वो टीचर रही हैं, तो एज ए टीचर आप सोचिए कि मेरे जो को एक्टर्स हैं उसके डायलॉग वो बोलती हैं, फिर मेरे डायलॉग बोल के मुझे, अगर वो ना हो तो मैं थिएटर तो कम से कम नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्म वगैरह में तो याद करने की जरूरत पड़ती नहीं, आपको स्क्रिप्ट मिली, हालांकि कभी जब लंबे रोल होते हैं वहां भी याद करना पड़ता है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत सहयोग करती हैं, उनके सहयोग के बिना मैं शायद आज काम ना कर पाऊं।
1: अनिल जी, आपने रविंद्र जैन जी का जिक्र किया कि उनके साथ अपने मंच साझा किए हैं, चलिए रविंद्र जैन जी का कंपोज किया हुआ, उनका लिखा हुआ ये गीत दोस्तों आपको भी सुनवाता हूं, साथ में अनिल जी भी सुन रहे हैं।

0: अनिल जी, अगर आप अभिनेता ना होते, CADRI में तो आप डायरेक्टर ही रहे, वहां बड़ी अच्छी सेवाएं दी हैं आपने, अगर फिल्मों में ना होते तो फिर और क्या होता?
1: देखिए, मैं साइंटिस्ट तो था ही, फिर बस साइंटिस्ट बन करके ही रह जाता। और मुझे लग रहा है कि मेरा जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है वो शायद इतना अच्छा ना गुजरता जो एज एन एक्टर मेरा गुजर रहा है। लेकिन एक चीज मैं और करता हूँ, शायद वो मैं तब पहले शुरू कर देता, वो है फिलेंथ्रोपी। मेरे बड़े ब्रदर, जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, उन्होंने करीब 27 साल पहले एक संस्था बनाई थी, हरिओम सेवा केंद्र, जिससे जो गरीब पेशेंट या जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं होता है, वो जो पेशेंट जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? उनको फ्री मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ब्लड की जरूरत होती है ब्लड देते हैं। अगर लोग पेशेंट्स बाहर से आए हैं, उनको ठहरने के लिए हमारे पास रैन बसेरा में मेडिकल कॉलेज ने दिया हुआ है, उनको हम ठहराते हैं। उनको बेड प्रोवाइड करना, तकिया, गद्दा, चादर, गर्मियों में ठंडा पानी, जाड़ों में गर्म पानी, और हफ्ते में 6 दिन हम उनको लंच प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी एक एम्बुलेंस है जो कि मरीजों को ट्रॉमा सेंटर से और OPD से वार्ड्स में लेकर के जाती है। उसका खर्चा सारा हमारी संस्था करती है। अगर मैं थिएटर नहीं करता होता तो उसमें मैं और ज्यादा समय दे करके करता है। मेरे बड़े ब्रदर ने जो संस्था एक बनाई थी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं अभी भी उसमें समय देता हूँ जब मैं नाटकों से फ्री होता हूँ, लेकिन तब शायद मैं उसको ज्यादा समय दे सकता
0: हूँ। आपकी बहुत खूबसूरत जसामत है, बहुत स्मार्ट हैं आप, अभी भी सीनियर जगत में काम कर रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं?
1: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मुझे कोई बुरी लत नहीं रही, और बाकी तो ये सब ईश्वर की देन होती है। ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ, पान खाता हूँ, ना मसाला खाता हूँ, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो शायद एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या जब आप हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो वो भी आपको इफेक्ट करती है। और लोगों में बड़ा कहा जाता है कि भाई कलाकारों में शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। मेरे जो गुरुओं ने सिखाया, मेरे राजेश्वर बच्चन जी जो मेरे पहले गुरु थे, तो उनको मैं जानता था, उन्होंने मुझसे कहा कि इन चीजों से हमेशा दूर रहना। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, चंद्रा साहब के साथ जब मैं रोल करने के लिए गया, नाटक था जय सोमनाथ, उसे बोले देखो बड़े बड़े कलाकार हैं वहां, तुम्हें बल्लम धारी का रोल मिले वो भी कर लेना, तुम्हें सीखने को मिलेगा। मुझे ये 1966-67 की बात कर रहा हूँ, मुझे साहब वाकई बल्लम धारी का रोल मिला, लेकिन मेरी सिंसियरिटी ने पे किया। हुआ ये कि जो गजनी के सिपहसालार का रोल कर रहे थे, उन साहब ने छोड़ दिया, तो मेरा प्रमोशन उसमें हो गया, जिनका मैं चौबदार का रोल कर रहा था। उसके बाद जो गंग सर्वज्ञ उसके मठाधीश थे, उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई, उन्होंने छोड़ दिया।

0: किया तो जो शिवराशि जो उसका मेन विलेन है उनका प्रमोशन उनमें हो गया, मेरा प्रमोशन शिवराशि में हो गया। अब शिवराशि जो है मेरा ख्याल है जय सोमनाथ का सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर, जो विक्षिप्त होकर के मंदिर के दरवाजे खोल देता है, वो चौला जो नर्तकी उसके प्रेम में पागल था। तो मेरा मानना है कि रोल को भी कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, जो कि मैं नहीं मानता। मैंने बड़े छोटे छोटे रोल भी किए फिल्मों में, लेकिन ये जरूर मानना है कि वो रोल एस्टेब्लिश होना चाहिए।
1: आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है?
0: मूल मंत्र मेरा ये है कि जो भी काम करो सिंसियरिटी से करो, डेडिकेशन से करो, लग करके करो और ईमानदार रहो अपने काम की तरफ से।
1: लगातार संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखें, और पढ़ना, जज्ब करना, उसे फील करना कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सेहत का भी ध्यान रखना मुझे लगता है उसके लिए आवश्यक है। ये सारी चीजें आपने बखूबी निभाई हैं। हमारे जो नवोदित कलाकार है जो आपकी तरह फिल्मों में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैंने जब थिएटर शुरू किया था उस समय कोई ओपनिंग्स नहीं थी हमारे लिए, सिर्फ एक स्वांता सुखाए हम करते थे और लोग चार देख लेते थे, उसको पसंद करते थे। आज एक्टिंग एक करियर हो गया है। आज आप देखिए कि ढेरों चैनल्स बन गए, 300 से ऊपर 400 500 चैनल्स हैं। OTT जो था पहले एक दो हुआ करते थे प्लेटफॉर्म, आज ढेरों प्लेटफॉर्म। तो आज कलाकारों की बहुत सख्त जरूरत है। तो उस समय मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये भी मैं आपको बताऊं, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं, मैंने जो भी सीखा है रिहर्सल से सीखा है। तो आज भी क्या है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें थिएटर पढ़ाया नहीं जाता है। जो ड्रामा स्कूल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतीय नाट्य अकेडमी है, अब वहाँ कितने बच्चों का एडमिशन होता है? 20 बच्चों का एडमिशन होता है एक साल। लेकिन आज एक्टिंग के लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, तो उसके लिए वर्कशॉप्स होती है। तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो अच्छे अच्छे गुरुओं की, अच्छे अच्छे टीचर्स की, देखिए वर्कशॉप कमर्शियल भी बहुत होने लगी है, तो उससे फायदा नहीं होगा। जो अच्छे टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं, अच्छे गुरु लोग जो वर्कशॉप करते हैं उनकी वर्कशॉप अटेंड करें और कमिटेड रहें। नाटक एक आज बहुत ऐसी विधा है जो कि प्रमोशन में बहुत मदद करती है। मैं नाटक करके ही मैं सीरियल्स में आया, फिल्मों में आया। अगर मैं नाटक नहीं करता होता तो शायद मेरी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि नाटक में जो सीखने को आपको मिलता है, फिल्म में आपको क्या है, सीधे स्क्रिप्ट दी जाती है और आपसे कहा जाता है आप करिए। नाटक में आपकी रिहर्सल्स होती है, महीना महीना दो दो महीने रिहर्सल होती है, जिसमें आप एक एक उस कैरेक्टर को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, उसमें सीखने को मिलता है। तो आप नाटक करिए और सिंसियरिटी के साथ करिए, ये नहीं कि रोल मिला कैजुअली ले लिया हम तो कर लेंगे, बस रोल याद हो गया कर लेंगे, नहीं, रोल में डूबिए और जो डायरेक्टर बता रहा है अपना ही नहीं दूसरे कैरेक्टर्स को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या पता कल आपको दूसरा कैरेक्टर करने को मिले। तो जो आपको ज्ञान उससे मिलेगा वो आपके काम आएगा। तो आज के जो बच्चे हैं जो इसको एक सीढ़ी बनाए हुए हैं रंगमंच को कि बस एक दो नाटक किए और फौरन में फिल्मों में चला जाऊं, वो नहीं चलेगा। आप मेहनत से अच्छे ढंग से थिएटर करिए, लंबा थिएटर करिए, उसके बाद में आपके लिए पूरी दुनिया है, पूरा आकाश है काम करने के लिए।
1: अनिल रस्तोगी जी, आप आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो आए और अपने निजी जीवन के बारे में, आकाशवाणी के बारे में, दूरदर्शन और उसका फिल्मी सफर, कई फिल्मों के का जिक्र आपने किया, आपकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो, स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओ, ये थे पद्मश्री से सम्मानित श्रीमान अनिल रस्तोगी जी। अब आज के मेहमान कार्यक्रम से सुरेंद्र राजेश्वरी को अनुमति दीजिए। नमस्कार
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी से बातचीत कर रहे थे सुरेंद्र राजेश्वरी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान और भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ और स्थान

0: आत्मीय खाद्य पदार्थों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से हमारे घरों में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जौ का पेय और नींबू पानी न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि गर्मी से राहत देने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
1: नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: हमारे साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ है डॉक्टर रीना अरोड़ा। आप एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। स्वागत, नमस्कार रीना जी, आपका भी।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं मोनी दीपा तालुकदार। आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से पोषण और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। आपका भी स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: अपनी चर्चा शुरू करने से पहले क्यों ना हम सुन लें कि गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मई के मन की बात के कार्यक्रम में क्या कहा।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम प्रकाश की, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करते हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये बताइए, ये गाइडलाइंस क्या हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए?
1: बहुत सही कह रहे हैं आप, गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस समय जब गर्मी अत्यधिक है, जिसको चरम सीमा पे आप कहिए, इस समय गर्मी देश के विभिन्न भागों में है और जैसा कि आगे आने वाला है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी जो है बरसात भी कम होगी, तो हर विभाग जो है देश का उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा एक डिजास्टर अलर्ट जो है वो मोबाइल पे भी किया गया चेक।
0: हाँ।
1: तो ये भी एक उस तरीके से है और अभी 3-4 दिन पहले भी वो अलर्ट आया था जब गर्मी चरम सीमा पे थी। तो ये हर विभाग जो है सरकार का इसको हर साल ही कुछ ना कुछ करते हैं, ये नई नई चीजें जो है ईजाद की जा रही है।

0: जिससे कि लोग इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं और हर सरकारी अस्पताल में लू की चपेट में आने वाले लोगों के लिए या जो गर्मी से त्रासदी होती है उसमें कोई भी जो व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसका हम लोग यूजुअली रिपोर्ट भी करते हैं और उनको हम लोग देखते भी हैं कि कैसे इलाज करना है। तो ये सारे स्वास्थ्य विभागों में सारे अस्पतालों में डिस्पेंसरी में गर्मी से जिन जिन लोगों को दिक्कतें होने की संभावना होती है या दिक्कतें होती हैं उनके लिए कैसे उनका हमें मैनेज करना है, कैसे उनका उपचार करना है, ये सब दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और सबके लिए लागू है।
1: जी, ये तो आपने बताया कि जो आपके हॉस्पिटल्स में किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी हुई है गाइडलाइंस के तहत, लेकिन जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझें कि कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए बाहर ना निकलें, या अगर लू लग जाए तो किस तरह से उसको सीरियसली लें, कब वो डॉक्टर के पास जाएं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
0: तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर राज्य में भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या क्या कैसे सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी बरतें ये भी काफी जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा आपने कहा तो मैं श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूंगा कि दोपहर में भरी दोपहरी में नहीं जाएं, तो 12 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक जब धूप बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, सूर्य हमारे सर पे होता है, उस समय गर्मी से में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ अत्यधिक काम है, बहुत जरूरी काम है, तो आप या तो सवेरे के समय कर लें या शाम के समय कर लें जब धूप इतनी तेज नहीं होती है। अगर बाहर निकलें तो छतरी लेके निकलें या गमछा या फिर कपड़ा रख करके निकल सकते हैं, गीला कपड़ा करके अपने सर पे डाल करके निकल सकते हैं, या साथ में पानी भी जरूर लेके निकलें। ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें मन की बात में कहा था और ये बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें गर्मियों में, इस समय मई जून के महीने में कभी भी आप बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। तो ये कई चीजें हैं और इस पे मेरे ख्याल से सब श्रोताओं को पता भी होना चाहिए। इसमें रहन सहन की भी बात है, तो अगर कई लोग जो है ना बड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टाइट नहीं पहने। तो जो पहले जैसे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे गर्मियों में आप कई बार देखेंगे, तो ये ऐसे कपड़े पहनकर जाना बाहर बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें गर्मी शरीर में बचती भी है और थोड़ी हवा से रहता है तो जो पसीना आता है वैपोरेट हो जाता है जिससे शरीर को खुद ब खुद जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये कई चीजें हैं जो हम लोगों को ट्रेडिशनल जो हम लोग करते रहे हैं और ये बार बार दिशा निर्देश जारी भी होते रहते हैं और मेरा मानना है श्रोताओं के इसमें अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और हम कार्यक्रम भी इसीलिए समय समय पर करते रहते हैं कि लोगों को बताया जाए, कहीं कोई चूक ना हो और इस कारण से कोई हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे आपने पानी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी फेटल हो सकता है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप जैसे कई लोग हैं जिनको उम्र दराज लोग होते हैं उनको कुछ दवाएं चल रही होती है तो उसकी वजह से उन्हें पसीना नहीं आता है, तो पसीना आएगा और ज्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हुए हो सकता है। और पसीने में और कई तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी पिए और तरल पदार्थों के साथ वाला पानी पिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नींबू पानी पिए, तो नींबू की वजह से उसमें पोटेशियम सोडियम चीजें आती हैं तो उससे तरल पदार्थ पानी में आपूर्ति होती है, सादे पानी से बेहतर माना जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको डिहाइड्रेशन तो पानी और तरल पदार्थ से आप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं जिनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं बीमारियों की वजह से तो उनको पसीना नहीं आ पाता है, तो कई बार बिना पसीने के अभाव में भी आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिसमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी जो है गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, गर्मी के दुष्प्रभाव बिना डिहाइड्रेशन के या स्वेटिंग जब नहीं होती या पसीना नहीं आ रहा होता है तब भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, सर में भारीपन लगे, चक्कर लगे, बहुत ज्यादा पसीना आए जो कि आपको लगे कि आप ठंडक में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आपको गर्मी का आहत हो रहे हैं। कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, कई बार आप धूप में जाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, तो ये सब चीजें जो नॉर्मली आपको नहीं होती है और कोई भी नई चीज आपको गर्मी में लगती है तो आप ये मानिए ये गर्मी के या गर्म से ज्यादा तापमान के दुष्प्रभाव है।
1: जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में। तो आपने नींबू पानी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने बहुत सारे ऐसे शीतल चीजों के बारे में हमें बताया इस कार्यक्रम में, मन की बात में जिक्र किया, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, आपके पास भी फिर वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी रीना अरोड़ा जी कि एक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हर मौसम में जब ऋतु चक्र की बात करते हैं और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है या कोई दूसरा काल आता है तो हमारा जो रसोई है उसका मिजाज बदल जाता है, तो किस तरह से रसोई का लिंक जो है ये आयुर्वेद में ऋतुचर्या जिसको कहा गया है वो कैसे जुड़ता है आपस में?
1: जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है शालिनी जी। अक्सर क्या होता है जैसे ही ऋतु बदलती है हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी ये चीजें समझ नहीं आती हैं, फुल एसी ऑन करके वो गर्मी में सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, ये आयुर्वेद

0: गर्मी में सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, ये आयुर्वेद में भी एडवाइस है कि आप लाइट कलर्स के कपड़े डालिए, कॉटन डालिए, बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े मत डालिए ताकि उसमें से हवा पास हो सके, और सिर पे पानी डालिए, चंदन का यूज कीजिए इन दिनों पे। सर्दियों में अगरू का लेप बताते हैं तो समर्स में बिल्कुल चंदन का लेप आप बॉडी पे कीजिए, सबको पता है चंदन बहुत ठंडा है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो ये सब चेंजेस, और डाइट में जैसे कुष्मांड है, बहुत आजकल सीजन में जो चीजें आ रही है, पंपकिन जिसको बोलते हैं उसका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, कूलिंग एजेंट है। घिया, तोरी, टंडे टाइप की सब परवल जो सब्जियां आ रही हैं ये भी बहुत कूलिंग है, वाटर बहुत ज्यादा है इनमें तो बॉडी में वाटर कम नहीं होता है। खीरा है, एक्सेस में आ रहा है सीजन में,
1: सब्जियों में या फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा हो उसको।
0: और एक और चीज मैंने देखी है, भिंडी बहुत ज्यादा आ रही है। अब लोग कहेंगे कि ये वायुवादी करती है, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, और होता क्या है धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है। ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो उनको बढ़ाने में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आजकल जैसे भिंडी आ रही है, अरबी आ रही है, तो अगर किसी को सूट करती है तो उनको ये खाना चाहिए, ताकि आपकी वो इम्यूनिटी, आपका इनहेरेंट जो हेल्थ हमारी होती है ना, ओज जिसको बोलते हैं, बोलते किसी को देख के हम कहते हैं बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, तो वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है तो आपको कोई हीट स्ट्रोक इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देखा है आजकल बच्चे भी कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, वो भी एक कारण है, खाली गर्मी कारण नहीं है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आप चल पड़े ऑफिस के लिए इतनी गर्मी में, तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्वेटिंग हो रही है आपको। तो ये बेसिक चीजें भी अगर हम मेंटेन करें तो काफी हद तक इस गर्मी से हम बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कुछ और भी हम चीजें शामिल करते हैं, मनोरंजन को भी स्थान देते हैं। तो एक प्यारा सा गीत चाहूंगी कि श्रोताओं के नाम आप सुनाएं, हम सब बैठ के सुनेंगे, आनंद लेंगे। कौन सा गीत जहन में आ रहा है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
0: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: अरे और ये क्यों पसंद है आपको गीत?
0: आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सबको, सुसाइडल रेट भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये गीत अगर सबने सुन लिया तो इतना तो समझ आ जाएगा कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। खाली सोशल साइट्स को देख के आप अफेक्ट ना हो, जो आपके पास है, आपको जो सोशल साइट्स पे दिख रहा है शायद उससे ज्यादा है, वो दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आपको, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है अंदर। तो आप इस चीज को, इस गाने को अपना मतलब करियर में, लाइफ में, हर जगह एक सामने लिख लीजिए कि कोई भी किसी को मुकम्मल जहां मिला नहीं हुआ वो शो कर रहे हैं सोशल साइट्स पे, डोंट बी अफेक्टेड बाय देम, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और गर्मी से बचिए।
1: चलिए हम भी खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं, और बहुत ही खूबसूरत संदेश भी इसमें छुपा है, उसको भी हम समझते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शालिनी मित्तल और कार्यक्रम में हम कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत अभी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से 10 पारंपरिक देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन इनमें हमारी पीढ़ियों का अनुभव छिपा है। तो मैं जानना चाहूंगी मोनी दीपा जी आपसे कि पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। अगर हम जानना चाहें कि उत्तर भारत का, उन्होंने बात की है आम पना, पंजाब हरियाणा की लस्सी और गुजरात राजस्थान की छाछ, ये ड्रिंक्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में कैसे मदद करती है, बताइए
1: जी। प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन में कि पानी पीते रहिए और साथ में उन्होंने हमें 10-12 भारतीय पेय पदार्थों का एक सूची दी है जो हमें एक अंदाजा देती है कि हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, ये कोई टोटका नहीं है या ये केवल एक अंदाजे की बात नहीं है। ये हमारी नानी दादी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से लिखा हुआ है, प्रमाणित है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उत्तर भारत में क्योंकि लू बहुत अत्यधिक पड़ती है और आम का वेजिटेशन वहाँ ज्योग्राफिकली होता है, इसीलिए कच्चे आम को उत्तर भारत में आम पन्ना के रूप में गर्मियों में खाने का एक कल्चर कस्टम रहा है। आम में एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो गर्मियों में हमारे पेट को, एसिडिटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, इसमें पेक्टिन है, कच्चे आम में पेक्टिन रहता है जो एक किस्म का सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर हमारे

0: स्टमक की लाइनिंग को टोन करता है, उसको सूद करता है. तो गर्मियों में जो अपच की समस्या रहती है और जो उसमें इन्फ्लेमेशन, जलन या एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है, उन सब के लिए ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है. तो आम पन्ना इस प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है उत्तर भारत में. गुजरात और राजस्थान की तरफ उन्होंने छाछ लस्सी का जिक्र किया है. छाछ लस्सी अपने आप में प्रोबायोटिक्स है, ये तो अपने आप में ही एक क्लेम है. प्रोबायोटिक नाम अपने आप में एक क्लेम है क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है. और ये यदि हम घर की बनी हुई दही से बनाते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी दूध की गुणवत्ता वाली चीजें भी मिलती है. और प्रोबायोटिक्स अपने आप में गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है और जो उसके कल्चरल माइक्रोफ्लोरा है उसमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. और ब्रेन गट जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को और गट बैरियर को एनहांस करता है, ब्रेन गट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है. उससे गर्मी में दिमाग भी शांत रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बेनिफिट कर सकता है. इसके अलावा उन्होंने तीसरा जिक्र उन्होंने हमें
1: पंजाब हरियाणा की लस्सी का भी जिक्र किया है.
0: लस्सी भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक ड्रिंक है इसमें. और लस्सी में क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वाटर अमाउंट एडेड हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काफी डाइल्यूटेड रख सकते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोबायोटिक के गुण भी हमें मिल जाते हैं. और इसके अलावा हमें फैट या हमें जो दूध का एक्सेस फैट या उसमें जो मलाई रहती है, चिकनाई रहती है, उसको भी हम डाइल्यूट करके उसकी चिकनाई को रिड्यूस कर सकते हैं. तो लस्सी, छाछ और इस प्रकार के भारतीय पेय पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो सुनिश्चित करते ही हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं. तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक है और हमें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना चाहिए और बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचना चाहिए.
1: जी, पर आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे और युवा जो हैं अक्सर जो बाजार में चीजें मिलती हैं, डिब्बा बंद सारी चीजें होती हैं, उन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे उसको कहीं प्रमोशन किया जाता है उनको उस तरह से. तो ये जो एक धारणा अब बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर में बनी हुई और ट्रेडिशनली जो चीजें बनती हैं वो ज्यादा लाभप्रद रहती हैं. तो क्या हाइजीन फैक्टर भी उसमें इम्पोर्टेंट है और क्या बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं?
0: आजकल युवा पीढ़ी पूरी तरह से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी आकर्षित है. उनको वो चीजें चाहिए जो कूल है, जो फैंसी है, वो ट्रेडिशनल और हमारे भारतीय दादी नानी के नुस्खे वाली चीजों को अनकूल समझते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें इतनी अत्यधिक मात्रा में चीनी एडेड रहती है. एक 300 ml का यदि हम एक कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी रहती है. कंपेयर टू जब हम ये ट्रेडिशनल आम पन्ना और इस तरह के ड्रिंक्स घर पे बनाते हैं तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं. उसमें हम एक दो चम्मच चीनी, शहद या गुड़ से काम चला लेते हैं. प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में इवन फ्रूट जूसेस जो बाजार में मिलते हैं उसमें परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स अलाउड है. उसमें फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स पड़ते हैं जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है और वो परमिटेड भी है. तो कई सारे एडिड प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स, प्रोसेसिंग एड्स अलाउड है सिंथेटिक ड्रिंक्स में. और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में तो कैफीन की मात्रा रहती है. उसके अलावा उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पड़ते हैं तो काफी सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन में. उसके कंपैरिजन में जब हम ये ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक, सत्तू का शरबत घर पे बनाते हैं, एक तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, हम इनके फॉर्मूला को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं. और हाइजीन का आपने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर उठाया क्योंकि लोग शरबत के नाम पे गन्ने का जूस भी सड़क किनारे बिक रहे हॉकर से, वेंडर से लेते हैं. उसमें किस प्रकार का पानी का इस्तेमाल किया गया है, इवन जो बर्फ इस्तेमाल हुई है क्या वो बर्फ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी थी कि नहीं, क्योंकि हम कई बार इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हैं. हम बर्फ के बारे में इतनी तहकीकात नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पानी उसमें जो यूज किया गया है गन्ने को धोने के लिए या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए वो किस प्रकार का रहा है. तो एक मसला उसमें
1: मतलब वो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं
0: और गर्मियों में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट रहती है तो वाटरबॉर्न डिजीजेस का रिस्क रहता है जब हम ये चीजें खुले वेंडर से या स्ट्रीट फूड से हम खरीदते हैं. तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इन सब ड्रिंक्स को युवा पीढ़ी को खुद बनाने को घर पे दे कि आप खुद बनाइए, क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तो वो पियेंगे भी.
1: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने से बनाएं और एक कुछ वेरिएशन लाके बनाएं और कुछ इंटरेस्ट के साथ

0: बनाए तो एक अच्छी चीज बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको कंज्यूम करने में. डॉक्टर अनुपम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं मोनी दीपा मैम से, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बताई, तो जब आप एज अ डॉक्टर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बहुत एक्सट्रीम लू लगने के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण आता है, तो किस तरह के आप पे उनको सजेस्ट करते हैं फॉर रिकवरी?
1: देखिए, हम लोगों के पास जब कोई आ जाता है मरीज जिसको कि लू लग गई होती है या कई बार कहते हैं सरसाम हो जाता है, जैसे तो हीट से इलनेस हो गई है, तो उसको हम लोग यूजुअली तो सादा पानी अगर नहीं है कुछ तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग तरल पदार्थ वाला देते हैं. जैसा मौनी दीपा मैडम ने कहा, बहुत सही कहा इन्होंने कि आपको जो है पानी में मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो उसके लिए देते हैं. तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नींबू पानी है या बेल का शरबत है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें आप अच्छे से दे सकते हैं. लस्सी है तो दही है, ये सब चीजें आप दे सकते हैं. अब अगर अस्पताल में आता है तो फिर हम लोग जो है लिक्विड जो देते हैं तो फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो उसमें अलग तरीके का देते हैं. लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट अगर उसके कमी है तो ओआरएस का घोल हम लोग पिलाते हैं, तो ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं. तो आप अगर वैसे सादा पानी है, समझिए तो पानी, एक चुटकी नमक, जरा सी चीनी, ये डाल करके और नींबू डाल करके एक अच्छा पेयजल बन जाता है जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक होता है. तो हम लोग अस्पताल में, तो अब श्रोताओं के लिए हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एसेस करना पड़ता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि कितना डिहाइड्रेशन है
0: जी, बिल्कुल,
1: और ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कैसी चल रही है, नब्ज कैसी चल रही है,
0: पेशेंट का अलग,
1: उस हिसाब से अलग है. लेकिन श्रोताओं के लिए मेरे हिसाब से जरा सी चीनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो जरा सा नमक और नींबू डाल करके पानी में एक बहुत अच्छा पेयजल बन जाता है जो आसानी से हर कोने में, भारत के भी और विश्व के भी हर कोने में चीज मिल जाती है. बाकी अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसा मौनी दीपा जी ने बताया, आप लस्सी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो आप दूध के कई तरीके के प्रकार की चीजें हैं जो आप बना करके ले सकते हैं
0: जी.
1: तो प्रोबायोटिक्स वाली चीजें कई मिलती हैं, तो ये आप ले सकते हैं. लेकिन ये बहुत सही बात है कि स्ट्रीट वेंडर्स जब तक ऑथोराइज नहीं है तब तक आप नहीं लीजिए, क्योंकि इस गर्मी में ना सिर्फ गर्मी से लेकिन और बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना रहती है. और अगर आप किसी अनऑथोराइज वेंडर से लेते हैं तो ये जो मौसम होता है मई जून जुलाई, तो इसमें वाटरबॉर्न डिजीजेस, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, ये सारी चीजें बहुत होती हैं. और ये तो ज्यादा सीरियस डिजीजेस हैं, लेकिन बाकी जो है डायरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां भी बहुत संभव है कि हो जाएंगी.
0: जी जी, और खासतौर पर हम सुनते हैं गर्मियों में पेट संबंधी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये कारण भी जुड़ता है पानी का, तो यही कारण कि साफ पानी नहीं पिया या खाना जो है रखा हुआ, बना
1: घर
0: हुआ
1: में बना हुआ खाना और ताजा खाना, ताजा ये दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में जैसा मौनी दीपा जी ने भी कहा, रात का बना खाना अगर आपने सवेरे खाया तो कई बार वो खराब हो जाता है
0: क्योंकि बहुत गर्मी में इजीली वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसमें. यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी रीना जी कि बहुत सारी बातें अभी हमने की पेय पदार्थों के बारे में, अभी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि और सारे राज्यों की बात अभी छूट गई है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ORS घोल है जो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है नमक और चीनी मिला के, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे आसानी से बनने वाले कुछ ड्रिंक्स हैं जो आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
2: इसमें आयुर्वेद में खजूर आदि मंथ एडवाइज्ड है टेक्स्ट बुक में, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है. इसमें इमली डालते हैं, एक वृक्ष अम्ल एक प्लांट है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुनक्का, इमली, खजूर, आंवला और अनार, चार गुना पानी में इसको भिगो देते हैं 4 घंटे के लिए. उसके बाद मैश करके छान के पी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको और पतला कर सकते हैं. अगर किसी को मीठा डालना है तो गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं. अब इसमें जो खजूर है और मुनक्का है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए आंवला तो सबको पता है कंप्लीट रसायन है, अनार वैसे ही बहुत अमृत है वो बॉडी के लिए. तो देखो कितने चुन चुन के आयुर्वेद में उसमें डाली गई हैं चीजें जो बिल्कुल सारी ठंडी हैं और आपको ऐसा एकदम ORS से ज्यादा बेटर शायद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, कि अगर आपको अगर घबराहट हो रही है और गर्मी लगी और ये करे आपने ड्रिंक पी ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको जरा भी वीकनेस रहेगी. ये रूटीन में दे सकते हैं गर्मी में, बच्चों को भी, बड़े भी ले सकते हैं. शुगर नहीं है तो बिना शुगर के इनको ही मिक्स करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, अनंता, आम, कमल, किशमिश, गुलाब की पत्तियां, चंदन, उशीर यानी खस की ठंडाई बनाते हैं लोग रात को भिगो के, सुबह ग्राइंड करके दूध में, बादाम वगैरह भिगो के वो भी उसमें डालते हैं, ऐसा कुछ घरों में बनता है सुबह ये ड्रिंक. ठंडाई जो आजकल बनी बनाई आती है ये उसका घर पे बनने वाला वर्जन है कि रात को उसको भिगोते हैं, सुबह अच्छे से उसको पीसते हैं, दूध डाल के, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, थोड़ा सा काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, एंड दिस इज वेरी

0: गुड इन दिस समर सीजन. ये अक्सर बड़े लोग पहले पीते थे. और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी एक यूज करके उसका ड्रिंक बना के भी घर पे पी सकते हैं. लेमन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दिस इज वेरी गुड. चंदन सबको पता है, उसको भी पानी में घोल के चीनी डाल के ले सकते हैं. खस, किशमिश, गुलाब, कमल और अनंता, ये कॉमन है, बट बाकी चीजें आप ले सकते हैं. एक और चीज मैं एडवाइस करूंगी, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काश्मीरी एक चीज आती है, और फालसा. आजकल का सीजन है, फालसा बहुत आता है उसमें. हाँ. तो इन चारों को भी ग्राइंड करके मिक्सी में, और उसके बाद एक ड्रिंक बन सकता है. और अगर आप इजाजत दें शालिनी जी, तो मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रिंक्स बताए थे, 3-4 ड्रिंक्स की रेसिपी बता दूं शायद.
1: हाँ, तो ये मैं रेसिपी जरूर आपसे सुनूंगी. अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें मोनी दीपा जी से भी पूछनी है, सर से भी पूछनी है, पर यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे. डॉक्टर साहब, कौन सा गीत आपको अभी याद आ रहा है या बहुत पसंद है आपको?
2: सुख के सब साथी, दुख में ना कोई.
1: चलिए, तो ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, और इसके बाद हम लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.

0: आप है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और अभी रीना जी से हम कुछ रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोनी दीपा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका खास तौर पर जिक्र किया है, जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सत्तू के शरबत के बारे में उन्होंने कहा है, और इनको सुपर फूड भी सत्तू को कहा जाता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कोंकण और गोवा की शान कोकम शरबत और सोल कढ़ी, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि एसिडिटी कम करती है। और दक्षिण भारत के पारंपरिक ड्रिंक्स जैसे पानकम, नीरमोर, सांबाराम, उड़ीसा का बेलपना, इन सब की भी बात उन्होंने की है, तो इनकी खासियत भी जानना चाहूंगी, इन सब के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की।
0: जी,
1: इसको हम एक्चुअली वे पाउडर से कंपेयर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सुपर फूड है कि इसकी कंपैरिजन वे पाउडर से की जा सकती है, जो कि 10 गुना महंगा है इससे, परंतु इसमें उसी प्रकार का कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। जी, सत्तू भुने हुए चने को पाउडर करके बनाया जाता है, इसीलिए ये पल्स बेस्ड प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये घर पे ही बनता है या इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये मिनिमली प्रोसेस कैटेगरी में आता है, और इसी कारण से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में रहते हैं, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ही एनर्जी रिलीज करते हैं,
0: तो काफी समय तक ऐसा लगता है कि
1: पेट भरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो रहता है, तो ये स्थिर ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं लंबे समय तक, तो आप 4-5 घंटे आराम से टिक सकते हैं सत्तू के 2-3 चम्मच ड्रिंक बनाकर। और सत्तू का ड्रिंक बनाना आसान है, आप 3-2 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी 1 गिलास के करीब डालिए, काला नमक डालिए, उसमें भुना जीरा, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, और चीनी, गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार से डाल सकते हैं, तो ये ड्रिंक अपने आप में 100 ग्राम सत्तू क्योंकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन देता है, और इसमें फाइबर्स हैं, इसमें लीन प्लांट प्रोटीन्स है, तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसीलिए सत्तू को सुपर फूड कहा गया है। और इवन कॉलेज के बच्चे, जिम गोअर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इन सभी लोगों के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही कंप्लीट फूड है, तो सत्तू पेट भी भरता है और ताकत भी देता है।
0: जी, जी।
1: इसके बाद हम बात करते हैं कोकम की, जो गोवा और कोस्टल एरियाज में बनता है, क्योंकि उन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए कोकम वहां अवेलेबल रहता है। कोकम एक प्रकार का आप फंक्शनल फूड की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं, और फंक्शनल फूड वो फूड कैटेगरी है जो बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, तो ये एक प्रकार का एक अपने आप में ही अनोखा एक फूड इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड तो आपको समर की इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता ही है, परंतु इसके अलावा इसका एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गार्सिनॉल। गार्सिनॉल अपने आप में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, ये पेट को ठंडा रखता है, और पेट से जुड़ी हुई जो ये

0: एसिडिटी और जलन की समस्याओं को कंट्रोल में करता है और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पोटेंट है कि वो कई बार कंप्लीट बाकी विटामिन से काफी स्ट्रेंथ इनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है जो कोकम शरबत में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और इट इज लोडेड विद कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. तो कोकम एक कंप्लीट फंक्शनल फूड है और कोकम शरबत केवल गोवा या महाराष्ट्र में ही नहीं, हमें उत्तर भारत में भी हम इसको पी सकते हैं. सोल कड़ी और नीर मोर की भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने. नीर मोर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है और नीर मोर का यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, नीर पानी को कहते हैं और मोर इज बटर मिल्क, तो अच्छा, पानी वाला बटर मिल्क. तो ये डाइल्यूटेड बटर मिल्क का ही फॉर्म है जो हम उत्तर भारत में लस्सी छाछ पीते हैं. नीर मोर उसी का ही एक पतला वर्जन है. इसमें काफी मात्रा में 3 से 4 गुना मात्रा में पानी डाला जाता है और फिर इसमें हींग अदरक जैसी और पेपर पुदीना इस तरह का हरी मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है. तो इस तरह से ये एक उनका छाछ है, ये भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है और क्योंकि इसमें अदरक कड़ी पत्ता का तड़का लगता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी मात्रा में हमें हरी पत्तियों से आयरन भी मिला. अदरक डाइजेस्टिव होता है तो ये, क्योंकि हमारा अपच की समस्या गर्मियों में बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा धीमा पड़ता है गर्मियों में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखता है. इसके बाद हम बात कर सकते हैं सोल कड़ी की. सोल कड़ी भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक बेस्ड एक रेसिपी है और जिस जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोबायोटिक दही लस्सी जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें अपने आप में हमें एक्टिव बैक्टीरिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम उसको कड़ी के फॉर्म में खाएं, चाहे हम उसको लस्सी छाछ या हम उसको सांबरम के रूप में या नीर मोर के रूप में खाएं. इन सभी में जो जो मसाले पड़ रहे हैं, अगर जीरा पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा पोटेशियम दे रहा है, काला नमक पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा सोडियम दे रहा है, तो हम जो जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला रहे हैं उस प्रकार से हमें कुछ कुछ कुछ कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते रहते हैं. तो ये जितने भी हम ट्रेडिशनल हर्ब्स स्पाइसेस और प्रोबायोटिक्स मिला के ड्रिंक्स बनाते हैं वो अपने आप में एडेड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, गट माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं.
1: जी जी, बहुत सारी खाने की चीजों का नाम आपने लिया एक के बाद एक. तो हमारे श्रोताओं का भी अगर मन कर रहा है तो जल्दी से आप जा सकते हैं कुछ खा के आए, क्योंकि हम यहाँ पर एक गीत का ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनकर आएंगे. आप फटाफट वापस आइए, लेकिन आपकी पसंद का गीत ही सुनेंगे. मोनी दीपा जी बताइए कौन सा गीत सुनवाएंगी.
0: जी, हमने इतने सारे हमने शरबतों की बात कर ली है, कोकम से लेकर बेल शरबत की, तो एकदम टैंगी फ्लेवर हमारी कोट हो चुका है हमारी टंग पे. तो इसी बात पर हम निबुड़ा निबुड़ा गाना सुनते हैं.
1: ओके, चलिए तो ये गीत सुन लेते हैं. इसमें बहुत अच्छा सा नृत्य भी है. तो ये गीत सुनते हैं.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, मैं हूं शालिनी मित्तल। और इस गीत को सुनते सुनते एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो ये कि फिजिकल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में तो खैर कहा जाता है कि आप बैठ जाते हो एक जगह, पर गर्मियों में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है उसमें हम फोन, मोबाइल, टीवी, इसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पर लाइफ स्टाइल का काफी रोल बताया गया है और उसमें योग, प्राणायाम और ध्यान, इस पर भी काफी स्ट्रेस दिया गया कि इससे भी तनाव कम होता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उस पर कुछ बताएं, और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जो खास तौर पर गर्मियों में करने के लिए कहा जाता है।
1: जी शालिनी, सुबह अगर शीतली प्राणायाम करें या जब भी आपको गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शीतलता आती है। इस पर बहुत रिसर्च हुई हुई है कि ये शीतलता प्रोवाइड करता है। और अगर हम योगा, जिम, एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो हमें सुबह करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बहुत ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइजेस हम विंटर्स में एडवाइस करते हैं, समर्स में नहीं करते। बट क्योंकि आजकल के लोग सारा दिन भी कोई काम नहीं करते, ज्यादातर लोग सेडेंटरी वर्कर हैं और नहीं भी हैं तो काम कम करते हैं, तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज जरूर करें और उसके बाद ओवर एक्सर्ट ना करें, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करें। और जितने भी योगा हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकते हो।
0: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम, कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है, क्योंकि बहुत आजकल केसेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के।
2: देखिए, लाइफस्टाइल का, रहन सहन का रोल तो हर चीज में है और बीमारी के बचाव में बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यायाम करें, लेकिन इसको ध्यान रखें कि व्यायाम आप ठंडे समय में करें, तो अर्ली मॉर्निंग करें जहां तक संभव हो, और दिन में तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप को शाम को कर सकते हैं तो फिर खाने के बाद या शाम को खाने से जस्ट पहले करें। खाने के बाद आप बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने से जस्ट पहले कर सकते हैं। लेकिन वो भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब लू चल रही होती है तो रातें भी गर्म होती है और उस समय फिर बाहर जा करके आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरीर का चलना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि बैठने से काम नहीं होता, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी ऐसा मौसम है जबकि आपको चलना चाहिए और व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि जो लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वयस्क लोग हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब वो व्यायाम कर रहे हैं तो साथ में कुछ तरल पदार्थ वाला पानी रखें या

0: पानी पीने के बाद व्यायाम करें या व्यायाम करने के बाद फौरन पानी लें, क्योंकि जब भी आप व्यायाम करेंगे तो थोड़ा पानी पसीना तो आप लूज करेंगे ही और पसीने के साथ तरल पदार्थ भी लूज करेंगे, तो उसको जो है शरीर में रिप्लेनिश करना, आपूर्ति करना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान देकर के व्यायाम करें। बहुत ज्यादा जिनमें एनर्जी लग रही है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको ध्यान दें। ऐसे में जिन लोगों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की, उनको जो है बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से पूछ करके तभी व्यायाम करना चाहिए या कोई नया व्यायाम शुरू करना चाहिए।
1: जी चालीस जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें, समर्स में सबको अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नैप जरूर लेना चाहिए आफ्टरनून में, उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और आप बाकी रात तक आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है ग्रीष्म ऋतुचर्या में कि समर्स में हो सके तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए हमें।
2: और मोनी दीपा जी, हमने बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात की, पर एक ड्रिंक और है जो दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर है और पारंपरिक ड्रिंक्स में शामिल होती है, वो है पनकम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
3: पनकम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है और ये बहुत ही पतला रसम जैसा एक बेवरेज है। ये इसके तीन ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें पेपर पड़ता है और इसमें जिंजर, सूखा जिंजर जिसको सौंठ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कैलोरीज, क्योंकि ये बेसिकली वाटर बेस्ड ड्रिंक है तो इसमें कैलोरीज 100 से भी कम रहती है, तो काफी वेट वॉचर्स के लिए भी इस तरह का ड्रिंक फायदेमंद है और इसमें बाकी चीजों का भी कोई लोड नहीं है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये जैगरी बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ में आयरन रहता है और साथ में इसमें पेपरिका, पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेपरिका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में काफी मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है उस न्यूट्रिएंट के साथ, तो पेपरिका पड़ा हुआ जैगरी तो उसमें से आयरन एब्जॉर्प्शन काफी बढ़िया रहता है, तो पेपरिका और गुड़ का ये बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन किया गया है। और पेपर का इसके अलावा भी एक रोल है, पेपर आपको गर्मियों में भी हमारे ब्रीदिंग कंजेशंस को ये रिलीफ करता है। ब्रीदिंग की समस्या आजकल पोल्यूशन के कारण गर्मियों में भी रहती है, तो पेपरिका, क्योंकि इस ड्रिंक में रहता है पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड समर कंजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चों को खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की काफी समस्या रहती है, तो पानकम अपने आप में एक कंप्लीट लिक्विड वाटर बेस्ड ड्रिंक है, प्लस इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं।
2: जी, एक आध ड्रिंक्स और बच गई थी जो मैं चाहूंगी कि वो भी श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो उन्होंने बताया था संभाराम और ओडिशा का बेलपन्ना।
3: जी, संभाराम एक प्रकार का पनकम का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की तरफ पनकम को ही संभाराम के रूप में का नाम दिया गया है। इसका बेसिक फॉर्म्यूलेशन पनकम जैसा ही है और कई लोग इसमें गुड़ ना डाल के मिश्री डालते हैं, पर मोर और लेस इसके मेजर थ्री इंग्रेडिएंट संभाराम और पनकम के सेम ही है। बेल शरबत उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है और बेल शरबत भी अपने आप में एक फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेल में पाए जाने वाले टैनिन्स जो हमें चाय से भी मिलते हैं, हमें कॉफी से भी मिलते हैं, बट बेल में पाए जाने वाले ये टैनिन हमारे डाइजेस्टिव स्लगिशनेस जो समर्स में आती है उसको रिलीफ करता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों चीजों से ये टैनिन हमें सेव करता है और बेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो विटामिन सी युक्त कोई भी बेवरेज आपकी समर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, लू से बचाता है और विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हमारे जो सेल्स में गर्मी की वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है उसको ये हील करता है। तो बेल रस अपने आप में बहुत ही एक थेरेप्यूटिक ड्रिंक जैसा है और ये भारत में आजकल उड़ीसा के अलावा बाकी कई क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात हुई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बीच में चाय कॉफी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश से करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब बहुत ही कॉमन है और इंडिया में, और खासतौर पर अगर वर्किंग करें, वर्किंग भी नहीं घर में भी अगर हम रहते हैं तो बहुत ही इजीली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हम कहते हैं अरे चाय पी लो, कॉफी पी लो, तो ये सही है कि नहीं? मतलब बाकी ड्रिंक्स की तो हम बात कर रहे हैं पर विच इज द मोस्ट कॉमन उसकी बात हमने नहीं की है, तो वो भी
0: देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोग चाय कॉफी या जैसे कि पहले बात हुई कि बच्चे लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कैफिनेटेड बीवरेजेस पीते रहते हैं, लोग ड्रिंक करते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये सब नुकसानदेह हैं। ये सब हालांकि लिक्विड है, मतलब सब तरल पदार्थ है मतलब, लेकिन ये सब जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैफीन होता है या टैनिन्स होते हैं ये थोड़ा डायलिसिस करते हैं, मतलब पेशाब बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप पानी पीते हैं

0: तत्व होते हैं, टैनिन्स या कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीनेटेड बीवरेजेस होते हैं, तो वो जो है वो आपको यूरिन बढ़ाते हैं। तो ये लेने से आपका ना डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है, बल्कि नॉर्मल आदमी में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्मियों में चाय या कॉफी जैसे पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में पानी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: जी जी, रीना जी, कुछ जो ड्रिंक्स की हम बात कर रहे थे, मोनी दीपा जी बता रही थी, उनकी रेसिपी आप बताना चाह रही थी, तो प्लीज शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ।
2: जैसे दीपा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इनके कंटेंट्स, पनकम में गुड़ डलता है, ड्राई जिंजर पाउडर, लेमन भी डालते हैं इसमें कुछ लोग, और छोटी इलायची डालते हैं बहुत, उस पर रिसर्च पेपर्स हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ब्लैक पेपर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, नमक डालते हैं, एडिबल कैम्फर भी डालते हैं इसमें, और तुलसी के 3-4 पत्ते डालते हैं, ग्रीन चिली भी कुछ थोड़ा बहुत डालते हैं अगर किसी को डालनी हो तो। इसको ग्राइंड करके ये पानी में जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैगरी डाल के ये लोग पीते हैं, इसको पनकम बोलते हैं। सोल कड़ी एक मैंने देखा था, इसमें क्यूमिन डलता है, गार्लिक डलता है, ग्रेटेड कोकोनट डलता है, और कुछ इसमें ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, ये डाल सकते हैं, और इसको भी ग्राइंड करके और पीते हैं। ऐसे नीरमोर भी एक तक, संबरम भी एक तक्र का यानी छाछ का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो इधर बहुत कॉमन पीते हैं लोग। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं जो हमारी रेसिपी मतलब थोड़ा सा अलग थी इधर नॉर्थ इंडिया से, तो ये सब पी सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी, और दीपा जी ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको।
1: जी, तो गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर हमने बहुत सी आज यहाँ पर चर्चा की, और इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन शैली, उचित आहार, पर्याप्त जल सेवन और हमारे पारंपरिक भारतीय पेय जो है वो अगर हम नियमित उनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार स्थानीय और पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थों को अपनाने का आह्वान किया गया है, वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है, बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर आप निकाल कर आए हैं, विचार हमारे श्रोताओं तक साझा किए हैं। हमारे साथ, मैं बता दूं, इस चर्चा में शामिल रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। हमारे साथ रही डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद विशेषज्ञ, और हमारे साथ थी मुनी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
3: धन्यवाद,
1: नमस्कार। और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्याप्त पानी पिएं, और इस गर्मी में अपने पारंपरिक पेय पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान, और इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ थे यानी शालिनी मित्तल के साथ, और स्वीकार कीजिए अब मेरा भी नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
5: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी, स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधि मंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया।

कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं को से रूबरू कराना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों को खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: नमस्कार, हेल्थ एंड फिटनेस में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट समरीन। और दोस्तों, अक्सर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अचानक सामने आती हैं, और उस समय घबराहट में उठाया गया एक गलत कदम मरीज की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। ऐसी ही एक स्थिति है दौरा यानी कि फैट्स, जिसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं बल्कि सही कदम उठाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें बताएंगी कि दौरा क्या होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल जाना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
6: थैंक यू, धन्यवाद।
3: इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आप सबको बता दूं, जो अभी हमारे साथ हेल्थ एंड फिटनेस में जुड़े हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 0522238852 2238845 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी हर प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका सलूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर फोन लाइंस बिजी हैं और आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि फिट्स क्या होते हैं, दौरे होते

0: क्या हैं और ये क्यों होते हैं?
1: दौरों का डर भी बहुत ज़्यादा है आजकल सब में, और
0: जी
1: बहुत सारी बातें ऐसी भी फैली हुई हैं जो सही नहीं है. तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दौरे होते हैं वो हमारे ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कीटाणु हो, कोई गांठ हो, कोई जेनेटिक नुक्स हो या कोई बनावटी नुक्स हो, तो वो हिस्सा हमारा ब्रेन का जो होता है वो दूसरे हिस्सों के मुताबिक एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है. मतलब उसमें एक तरह की तेजी आ जाती है जो करंट जैसा फ्लो करके बाकी ब्रेन में करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से कभी हाथ पैर टाइट हो जाना, हाथ पैर लूज हो जाना, जोर जोर से हाथों पैरों का झटकना, मुंह से झाग आना, आंखें ऊपर हो जाना, कभी कभी जीप कट जाना. इवन बहुत सटल दौरे, मतलब बहुत हल्के दौरे भी हो सकते हैं
0: जी,
1: जैसे एक ही जगह बच्चे का बैठे रहना, एक ही जगह देखते रहना, गुमसुम हो जाना, उस समय रिस्पॉन्स ना करना. आप बुलाओ तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है, और फिर एकदम से ठीक हो जाता है. इस प्रकार के भी दौरे हो सकते हैं.
0: मतलब उसमें जैसे टिपिकल दौरे में देखते हैं कि बॉडी हिलने लगी, वो नहीं होता है. आप चुपचाप बैठे हैं, एक जगह तक रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है. ओके, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि क्या क्या संकेत हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं. अगर बच्चे को अचानक से दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
1: अगर आपके सामने ऐसा होता है कि आपके घर में या आपके आसपास किसी को भी अचानक से दौरा पड़े, तो सबसे पहले आपको, अगर बच्चे के हाथों पैरों में कुछ भी टाइट कपड़ा बांधा हुआ है, तो वो लूज कर देना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे मसल टोन और बॉडी बहुत टाइट होती है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं. तो आपको सब कपड़े, ज्वेलरी, वो सब लूज कर देना चाहिए, और आपको एक करवट पे लिटा देना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि मुंह से पानी आए, झाग आए, तो वो सब चीजें जो है वो बाहर निकल जाए, फेफड़ों में ना जाए. उसके अलावा हमें मुंह में कोई जीभ, कोई चम्मच, दवाई, पानी, सॉक्स, जूता कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि वो चीज जो है वो हमारे गले से लंग्स में जा सकती है, और हमें तुरंत इमरजेंसी में लेके जाना है. अगर आपके बच्चे को पहले से ही दौरे की शिकायत है और आपके पास नाक में डालने वाला स्प्रे है, तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज मुंह में कुछ नहीं डालिए, कोई चम्मच नहीं डालिए, और कोई दवाई उस समय देने की कोशिश ना करें.
0: अक्सर देखा जाता है कि इधर इंसान बेहोश होके कुछ भी उसका हो रहा है तो सबसे पहले कहते हैं पानी डालो, मुंह डालो, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए.
1: मुंह के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा होश में नहीं है, तो जो भी आप डालोगे वो फूड पाइप की जगह फेफड़ों में, ट्रेकिया में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है.
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनको लिखते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है उनकी. हेलो.
2: हेलो.
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल पूछिए आप.
2: मैडम गुड आफ्टरनून, संजय बोल रहा हूँ लखनऊ.
0: जी जी संजय, बताइए क्या समस्या है.
2: डॉक्टर साहब नमस्कार.
1: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, हमको ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे जो बेबी होते हैं, जैसे वो छोटे बेबी होते हैं, 1 ईयर से होते हैं या 2 ईयर से होते हैं, कभी ऑन द बेड से नीचे गिर जाते हैं गलती से, तो क्या मैडम उसमें भी बहुत रिस्की रहता है आगे के लिए उनकी लाइफ जो है?
1: आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर जैसे बच्चा गिरा तो उस समय अगर कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, कि बच्चा अगर बेहोश नहीं हुआ है, उस समय दौरे नहीं पड़े हैं, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया है, तो आप यूजुअली आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अगर जब गिरा था, जब चोट लगी थी, तो सीटी स्कैन में नुक्स आया, काफ़ी कुछ मतलब वहाँ खून बहा या दौरे ज़्यादा हुए थे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए दौरों की दवाई देनी पड़े और आगे चल के शायद कुछ तकलीफ बने. लेकिन हर बच्चे को गिरने के बाद ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है.
2: मैडम ये पूछना है, जैसे अगर बच्चा गिर जाता तो क्या जरूरी है कि उसमें स्कैनिंग कराई जाए या उससे एक्सरे कराया जाए?
1: एक बार करा लेने में क्या रहता है ना, मन की शंका निकल जाती है. अगर बिल्कुल बस बच्चा बस हल्का सा बेड से नीचे गिरा और थोड़ा सा रोया और चुप हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, तो फिर हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रुक सकते हैं. लेकिन अगर गिरने के बाद बेहोश हुआ या खून निकला कान या नाक से या फिर दौरा पड़ा, तो हमें ज़रूर एक स्कैन करवा लेना चाहिए.
2: जी जी थैंक यू मैडम.
1: धन्यवाद.
0: डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो दौरा है वो थोड़ी उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, उस दौरान क्या करें, क्योंकि फिर हाथ पैर आपके काम नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद बहुत घबरा गए होते हैं. तो पहली चीज़ जो इस तरह की सिचुएशन में हमें करनी चाहिए, एक तो आपने बताया कि करवट लिटा दें, और क्या ऑप्शंस हैं जिससे मरीज को थोड़ा रिलीफ मिले?
1: एक्चुअली एक बार जब सीजर्स शुरू होते हैं और ये जो दौरे लंबे पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन अपने आप ही पूरा एक्साइटोटॉक्सिक हो चुका होता है.

0: समय या तो अपने आप दौरे कंट्रोल होंगे या फिर दवाई देने पे कंट्रोल होंगे.
1: अच्छा,
0: अगर एक बार जैसे आप समझ रहे हैं दौरा पड़ गया और वो करंट हमारा ट्रांसमिट होने लग गया है तो ब्रेन खुद ही सेल्फ एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है. उस टाइम पे एक टाइम के बाद या तो खुद एक्टिविटी कम होती है, अदरवाइज अगर हम मेडिसिन देंगे तो ही कम होगी. सो इसके लिए मेन चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट मेजर्स ले लिए, साइड में लिटा दिया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने प्रिवेंट कर लिया, जैसे हमने सिक्रीशंस को हैंडल कर लिया, उसके बाद हमें जो भी सबसे पास में हॉस्पिटल हो वहाँ पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि तुरंत एक इंजेक्शन लगा के दौरे को कम करना, रोकना वो ज़रूरी है. अगर आप किसी दूर के अस्पताल में यूजली दिखाते भी हैं
1: जी,
0: तो भी मेरा एडवाइस ये होगा कि आप एक बार किसी भी आसपास के अस्पताल में चले जाए जो आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी पे हो.
1: फिजिशियन को भी दिखा सकते
0: हैं, किसी को भी दिखाइए. जी, ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को पता रहता है दौरे की रोकने की जो दवाई होती है वो दवाई देके एटलीस्ट एक बार दौरा रुक जाए. उसके बाद आप एम्बुलेंस से आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहें आप जा सकते हैं. लेकिन

0: स्पेस ये होगा कि आप एक बार किसी भी आसपास के अस्पताल में चले जाए जो आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी पे हो,
1: फिजिशियन को भी दिखा सकते
0: हैं, किसी को भी दिखाइए। जी ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को पता रहता है दौरे की रोकने की जो दवाई होती है वो दवाई देके एटलीस्ट एक बार दौरा रुक जाए, उसके बाद आप एम्बुलेंस से आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली जल्दी रोकना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: क्योंकि अगर आधे घंटे से ऊपर दौरा पड़ जाता है तो उसके काफी लंबे डैमेज हो सकते हैं जो फिर कोई भी आगे चल के नहीं ज्यादा रिवर्स कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी बिल्कुल पास के अस्पताल में जाइए, दौरा रुकवाइए, उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप लेके जाइए।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस संजीदा मुद्दे पे जो कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होता है अगर आप किसी तरह की कोताही, लापरवाही या गलतियां करते हैं। लेकिन अभी माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हुए एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक म्यूजिक ब्रेक। थैंक यू।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:19 मैं हूं आपके साथ समरीन। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हेल्थ एंड फिटनेस, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें आज जानकारी दे रही हैं कि दौरा क्या होता है और इसके क्या नुकसान आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को दौरा है और वो गांव, चूँकि अपने आसपास 70% हमारी आबादी जो है वो गांव में है, दौरे जैसी सिचुएशन आती है और वो उसको ओझा या बाबा या मौलवी के पास लेके जाते हैं, इन दैट सिनेरियोस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या कुछ और बुरा हो सकता है पेशेंट के साथ?
3: ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे काफ़ी बार दौरों को यही समझा गया कि हाँ, कुछ जिन बच्चे के ऊपर भूत प्रेत का साया हुआ है, लेकिन हमें अब हम 2026 में आ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी, और आजकल प्रिसीजन मेडिसिन का ज़माना है,
2: बिल्कुल
3: बीमारी की जड़ तक जाके उसका इलाज करने का ज़माना है। जीन्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमको ऐसे नहीं सोचना है कि कोई भूत प्रेत आया है, तांत्रिकों के पास जाएं, उनसे गलत सलाह लें और अपने बच्चे को और नुकसान करें।
2: जी जी।
3: क्योंकि देखिए, जितनी बार दौरे पड़ते जाएंगे वो दिमाग पे असर छोड़ता जाएगा।
2: अच्छा, उसका उसका नुकसान भी होता है, हर दौरे का,
3: हर दौरा अपना नुकसान छोड़ के जाता है। तो आप अपने बच्चों को सही दवा दे के एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, और कहाँ दौरों का नुकसान होता रहेगा और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि हमने कितना बच्चे के लिए डैमेज कर दिया है।
2: मैम, हर दौरे के बाद क्या नुकसान होता है हमारे जहन को?
3: जब हमारे ब्रेन में एक जब भी लंबा दौरा आता है तो उस टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स होते हैं ब्रेन के वो मरते जाते हैं। तो हमको ये हर दौरा जितना हम बचाएंगे उतना ही हमारा ब्रेन बचा रहेगा।
2: अच्छा, आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को दौरा होता है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह की चीज़ें अपने बैग में रख के ले जाएं कि इंस्टेंट अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर लोग उनको मदद कर सकें, जैसे पेरेंट्स अगर टीचर को इन्फॉर्म कर दें कि बच्चों को ये दिक्कत है तो टीचर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? इसके अलावा क्या जिनको दौरा आता है उन्हें ड्राइविंग करनी चाहिए या वो अपनी रूटीन लाइफ जी सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है पेशेंट?
3: सही बात है। जैसे मतलब एक बार जब दौरे आते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं दोबारा दौरे आने के लिए।
2: अच्छा।
3: और अगर जैसे दौरों की दवाई देने के बाद दौरे कंट्रोल है, 2 साल तक दौरे नहीं आए हैं
2: जी,
3: फिर हम धीरे धीरे जैसे दवाई कम करके बंद कर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि 5 साल तक बच्चे को दौरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
2: ओके।
3: अगर स्टार्टिंग के टाइम पे जब एक्टिव सीजर्स हैं, दौरे आ रहे हैं, उस समय स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई रहे। इवन हम एडवाइस करते हैं कि रात को सोते समय कोई साथ में सोए, ताकि अगर रात में दौरा पड़ रहा है तो वो लंबा या अननोटिस्ड ना जाए। हमेशा आपको साथ में होना चाहिए। इवन अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो साइकिलिंग करके ना जाएं, अकेले ना जाएं, क्योंकि दौरा आएगा तो कोई होगा नहीं आसपास। और मेजर दौरा ना होते हुए साइकिल से गिरने की वजह से मेजर इंजरी हो सकती हैं, इसलिए साथ में एक कंपनी होना बहुत जरूरी है।
2: प्रिकॉशंस
3: बहुत जरूरत है। स्कूल में टीचर्स को बताएं, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें, टीचर्स को पता रहे कि हमारे

0: को दौरा पड़ने के चांसेस हैं, तो हमारे पास जो स्प्रे होता है जिससे हम दौरे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम हमेशा बच्चे के बैग में रख सकते हैं. दौरा आने पे वो स्प्रे डाल सकते हैं दौरा कंट्रोल करने के लिए. एंड स्कूल में टीचर्स भी अवेयर रहेंगे एंड इवन द अदर किड्स विल ऑल्सो नो. एंड एज अ डॉक्टर हमारे लिए वीडियो भी बहुत जरूरी होता है कि कैसा दौरा था, क्या हुआ था. तो टीचर्स को अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए. ड्राइविंग स्विमिंग इज वेरी रिस्की अगर आपको सीजर्स आए हैं, लेकिन अगर आप 5 साल से ऑफ एंटी एपिलेप्टिक से आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं और ईजी भी आपका बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तब हम नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी. हेलो.
2: हेलो,
1: नाम बताइए अपना.
2: जी मेरा नाम मृदुल कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ.
1: मृदुल आपकी क्या सवाल है डॉक्टर साहब से, आप पूछ सकते हैं.
2: मैम मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चा है 1.5 साल का है.
0: हाँ जी.
2: तो ये इसका जन्म हुआ था, रोया नहीं था, तो मैं डॉक्टर ने बताया था मतलब सीपी चाइल्ड है ये. तो शुरुआत में तो इसको दौरे नहीं पड़े थे, मतलब उसके बाद ये जब 6-7 महीने का हुआ, जिसको जुकाम उखाम हुआ उसके बाद से इसको मतलब सोके उठता था एकदम से, जैसे चौंक जाते बच्चे थे, अकड़ जाता था.
0: जब जब सोके उठता था तो ऐसे झटके लेता था ऐसे एकदम आगे को होके और फिर रोने लग जाता था.
2: जी
0: हाँ जी.
2: हाँ फिर इसको मैंने दिखाया था तो डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ लिखी थी.
0: हाँ जी.
2: एक लेवेरा और एक वो गार्डेनल.
0: अच्छा
2: जी.
0: हाँ जी.
2: तो उससे भी मतलब शुरुआत में तो कम हो गए, बच्चा बंद हो गए, उसके बाद फिर हो गए. तो उन्होंने एक फेनाटोनिन नाम की दवाई यहाँ सजेस्ट की थी, तो उससे भी फिर कुछ दिन फर्क पड़ा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया.
0: ठीक है. इसमें क्या रहता है ना, जब बच्चे को पैदा होने पे दिक्कत हुई होती है, रोई नहीं होते, ये वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं हम इस चीज़ को, कि सुबह सो के उठ के इस तरह से झटके आते हैं. तो जो आपने पहले जो दवाइयाँ दे रहे हैं सही है, उससे कुछ उसमें गलती नहीं है, पर इसके लिए और भी स्पेसिफिक मेडिसन्स हैं इन्हीं वाले दौरों के लिए जो हम अगर देंगे, जैसे ओमनाकॉटिल है, विगाबैट्रिन है, ऐसी दवाइयाँ देने से ये वाले झटके भी हमारे कंट्रोल हो जाते हैं. इसका इलाज है और ये झटके पूरे 0% हमें करने होते हैं, बिल्कुल एक भी झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ही जो डेवलपमेंट है गर्दन संभालना बैठना फिर ही वो बेहतर हो पाता है. जब तक हम इन दौरों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा ठीक से गर्दन भी नहीं संभालता और बैठ भी नहीं पाता है. जब हम इन दौरों को कंट्रोल कर लेंगे तभी वो चीज़ भी ठीक हो पाएगी. एक बार इसलिए ईजी भी करवाना बहुत ज़रूरी है, एमआरआई ब्रेन भी कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बार हम दौरों को अच्छे से देख लें फिर हम उसके हिसाब से दवाई दें. तो ऐसे इसमें घबराने की बात नहीं है, आप मिल सकते हैं फिर इसकी दवाई दे के ज़रूर बच्चा बेहतर हो जाएगा.
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनसे. हेलो. हेलो. हेलो.
3: हेलो.
1: हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, नाम बता दीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए. संजना लहरपुर से बोल रही हैं आप, सवाल क्या है आपका?
3: मैम हमारा सवाल है कि मैम दौरा आने से मौत भी हो सकती है.
0: आपका सवाल बहुत सही सवाल है, बिल्कुल यूजली एक्सपेक्ट नहीं करते हम ऐसे सवाल, पर ऐसा है बिकॉज स्पेशली इसलिए मैंने अभी जस्ट जो बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि रात को बच्चे के साथ कोई सोए, बिकॉज वैसे भी अगर दौरा रोड पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जिसको हम सुडेप बोलते हैं कि दौरा आते हुए डेथ भी हो सकती है. इसमें क्या रहता है कि जब बच्चा रात को सो रहा होता है और कोई देखने वाला नहीं होता है, दौरा लंबा पड़ जाता है और सांस एकदम रुक जाता है, तब ऐसा हो जाता है. इसीलिए बहुत आवश्यक है हम पेरेंट्स के लिए ऐसा पॉपुलेशन के हमें पता हो कि अगर हमारे बच्चे को या हमारे घर में किसी को भी दौरे आ रहे हैं, उस समय कम से कम जब तक दौरे आ रहे हैं 2 सालों के लिए, हम उनको अकेला ना छोड़ें.
1: डॉक्टर साहब हम अकेला ना छोड़ें ये बात तो आपने बताई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे
0: और दौरे की दवाई कभी छोड़े नहीं, ये एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी, बहुत गलत हो जाता है कि जब एक पेरेंट्स को बच्चे को या इवन एडल्ट्स को दौरे की दवाई चल रही होती है फिर वो एकदम से दवाई छोड़ देते हैं और एकदम से बहुत बड़े दौरे आ जाते हैं. तो कभी भी अब्रप्टली दवाई ना छोड़े.
1: जैसे हर मर्ज के लिए अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो चुके हैं, चाहे

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हेल्थ एंड फिटनेस सुन रहे हैं आप समरीन के साथ और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो कि बात कर रही हैं कि अगर आप के घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो दौरे से या फिट से जूझ रहा है तो किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से उसको इलाज के लिए लेके जाना है और क्या स्पेशलाइज डॉक्टर आप चुन सकते हैं उसके लिए, इस पर हमने अभी तक चर्चा की है। हमारे पास एक डॉक्टर मेल आया है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। मेल हमें भेजा है राज जी ने, लिखते हैं, अगर किसी मरीज को मिर्गी का दौरा हर तीसरे चौथे दिन या महीने में दो बार आ रहा हो और उसका दवा इलाज शुरू हो गया हो और उसके बाद कितने समय तक दौरा ना आए तो हम ये मान सकते हैं कि मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है।
3: जी, अगर हमारे जैसे पेशेंट को इतने ज्यादा

0: में दौरे आए हैं, फ्रीक्वेंट सीजर्स 3 से 4 बार, तो एक बार हमने जब दवाइयाँ टाइट्रेट कर दी हैं, बढ़ा दी हैं
1: जी,
0: और एक डोज पे दौरे रुक चुके हैं, फिर हमें दवाई को छेड़ना नहीं चाहिए. और अगर हमारा बच्चा ठीक चल रहे हैं, है ना, कोई दौरे नहीं आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, देन वी वेट. एक बार जैसे 2 साल तक अगर कोई दौरे नहीं आते हैं तो हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि डेफिनेटली काफ़ी हद तक दौरे की परेशानियों को हमने कंट्रोल कर लिया है. पर डेफिनेटली ईजी करवाना, ईजी का नॉर्मल हो जाना, बच्चे का बिल्कुल नॉर्मल हो जाना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही हम दौरे की दवाई कम करके बंद कर सकते हैं. एंड देन ऑल्सो हम सब में जनरली भी सीजर का रिस्क रहता है, दैट रिस्क डेफिनेटली रिमेन्स, वो एक डर ज़रूर रहता है. लेकिन अगर 2 साल तक बच्चे को दौरे नहीं आए हैं तो हम मेंटली काफ़ी एक सेफ फील कर सकते हैं.
1: एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, स्पेशल चाइल्ड्स की अगर हम बात करें जो ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है या मतलब मुश्किल लाइफ होती है, ऐसे में अगर बच्चे को फिट्स आते हैं तो वो किस तरह से हैंडल करें सिचुएशन को?
0: हाँ जी, सो अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है या डेवलपमेंटल डिले है, मतलब बच्चा पीछे चल रहा है
1: जी,
0: चीज़ें उस हिसाब से नहीं कर रहा है जैसे आपके दूसरे बच्चे या आम तौर पे बच्चे करते हैं, और फिर उसमें दौरा आ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई अंदरूनी दिक्कत हो, जिस तरह से MRI में ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो जिसकी वजह से ये सब लक्षण आ रहे हो, या फिर कोई जेनेटिक नुक्स हो जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आ रहे हो, ऐसी कंडीशन में दौरे की दवाई के साथ साथ थेरेपी के साथ साथ और भी मेडिसिन्स और दवाइयाँ आ गई हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे हम बच्चे की बीमारी को उसकी रूट कॉज जो जड़ है वहाँ पे जाके हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए हमें घबराना नहीं है, दौरे की दवाई देना है और सही कारण पता करना है.
1: थैंक यू डॉक्टर साहब इस जवाब के लिए. और हमारे साथ एक कॉलर और कनेक्ट हो गए हैं. हेलो
2: जी सर, मैम.
1: हाँ, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और क्या सवाल है.
2: मैं बबलू यादव, ग्राम धनवा खान, मोहनलालगंज, लखनऊ से बोल रहा हूँ.
1: जी, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से.
2: मैम, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते है.
0: नमस्ते
2: मैम. मैं डॉक्टर साहब, मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे रिलेशन के बेटे को पहले उसको झटके जरा सा आता है तब उसका शिशु आता है.
0: झटके आते हैं किससे पहले?
2: करने से पहले.
0: अच्छा अच्छा.
2: कमर हिलती है उसकी तब उसका सूसू निकलता है.
1: ऐसा मुमकिन है? ये बता रहे हैं कि ये वॉशरूम जाने से पहले बच्चा पहले उसको फिट्स आते
0: हैं? काफ़ी सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसके चलते इस तरह से दौरे आ सकते हैं, बट यूजली जिस तरह से वो लाइट होती है या फोकस करना होता है या फिर नींद अगर ठीक से नहीं हुई है तो ऐसा हो जाता है. लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो झटके लग रहे हों वो झटके ना हो. तो हम पानी अच्छे से दें, यूरिन वगैरह की एक बार जांच भी करा लें, और जो बच्चे को हो रही है प्रॉब्लम उसकी एक वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो झटके हों पर जब आप हमें या डॉक्टर को दिखाएं तो वो झटके ना हों.
1: अच्छा. और सब एक और हमारे साथ कॉलर कनेक्ट हुए हैं. अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई. आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि नींद पूरी नहीं हुई हो, तो क्या ओवर स्ट्रेस या लाइफस्टाइल से भी अगर अच्छी नहीं है आपकी लाइफस्टाइल तो भी आपको फिट्स आ सकते हैं?
0: लाइफस्टाइल पूरा होने से या फिर ओवरऑल आपका
1: स्ट्रेस,
0: हेल्थ एंड स्ट्रेस इश्यूज से स्पेसिफिकली आपको एपिलेप्सी नहीं आएगी.
1: अच्छा.
0: लेकिन आपको ऑलरेडी अगर एपिलेप्सी
1: टिपिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है. अच्छा.
0: अगर आप यस इट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको एपिलेप्सी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी है, उस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लाइट बहुत एक्सेसिव हो, डिस्को लाइट्स हो, रात को आप सोए नहीं हो, आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है, तो उस कंडीशन में आपका सीज दौरा जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, आ सकता है.
1: रुस्कब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो.
3: हेलो, नमस्ते मैम. सर
0: नमस्ते जी.
1: अपना नाम, जगह का नाम और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से.
3: मैं महानगर से बोल रहा हूँ, ब्रजेश.
0: हाँ जी,
3: लखनऊ से.
0: जी
1: जी, सवाल पूछिए.
3: 17 साल की लड़की है, वो गुमसुम रहती है.
0: गुमसुम रहती है
3: जी. अच्छा. ना उसका पढ़ाई में मन लगता है ना किसी काम में मन लगता है.
0: हाँ जी.

0: और
1: उसकी
0: हाँ
1: जांचें कुछ हुई हैं और डॉक्टर को दिखाए, वो जांचें करवाए, वो सब नॉर्मल हैं।
0: हाँ तो ये जो गुमसुम रहती है, आपने हाल फिलहाल में देखा है कि बच्ची गुमसुम रहती है या मतलब हमेशा से ये बच्ची गुमसुम ही रहती
1: मैं
0: थी?
1: पहले पहले जो पढ़ने जाती थी तब ठीक थी,
0: तब ठीक थी
1: 2 साल से लगभग है ऐसा।
0: बिल्कुल। तो अगर पहले बच्ची बिल्कुल ठीक थी और 2 साल से ऐसा हुआ है और कोई दौरे भी नहीं आए हैं बच्ची को,
1: नहीं दौरे वोरे नहीं है।
0: ऐसे नहीं आए हैं, तो इस कंडीशन में मेरा आपको ये पर्सनल एडवाइस होगा कि एक बार आपको हमें बच्चे से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत स्ट्रेस चलता है। पढ़ाई को लेके भी हमारी बच्चे से वो अपेक्षा होगी कि वो अच्छा करें, आसपास जो उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ, तो एक बार हम अगर बच्चे से बात कर पाएँ तो हो सकता है कि काफ़ी सारी बातें हो जो बच्चे ने मन में दबा के रखी हो और उसके साथ ठीक से बात करी ना गई हो, इसलिए शायद अभी चीज़ों में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ऐसा होना कि लक्षण ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले आप खुद अपने बच्चे से ज़रूर अच्छे से बात करें, उसके दोस्त बने, उसके दिल की सारी बातें समझें। फिर भी अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपको बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर से या बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दूसरे कारण भी होते हैं बच्चों के गुमसुम हो जाने के, फिर हम उसके लिए ज़रूर जांचें करवा सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, हम अभी यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और अपने लिसनर से यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके सामने किसी को फिट्स आ रहे हैं तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है बल्कि सही कदम उठाना है। और इसी बात के साथ आपके कॉल्स का इंतज़ार हमारे स्टूडियो में हम दोनों ही कर रहे हैं। आप लगातार कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर, 0522-238-845 पर। डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आपका कॉल ज़रूर कनेक्ट होगा क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं, कुछ कॉल डिस्कनेक्ट ज़रूर हो रहे हैं। बट अगर आप कॉल मिला रहे हैं और कॉल नहीं लग रही है तो आपके पास मेल करने का ऑप्शन है, fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: तो लगातार आपसे बात हो रही है कि अगर आप फिट से या दौरे से आपके घर में कोई बच्चा जूझ रहा है या आसपास या फ्रेंड सर्कल में, तो आपको क्या करना चाहिए। रुक साहब, एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो।
5: हेलो
2: जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ हेलो मैम।
0: हाँ जी नमस्ते।
5: हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, चतरार गाँव।
2: जी सवाल पूछिए।
5: सवाल ये था मैम कि हमारे भाई साहब हैं तो उनको कभी कभी साल दो साल में झटका, मतलब दौरा।
2: जी जी पूछिए
0: जी।
2: ओके, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। सवाल तो पूरा नहीं हो पाया लेकिन एक मेल हमारे पास ज़रूर आया है और उन्होंने नो टॉपिक से इतर आपकी तारीफ की है कि बहुत ही बेहतरीन और सलीके से नाम द्वारा क्वेश्चन किए जा रहे हैं और डॉक्टर साहिबा के ज़रिए इतनी प्यारी सी आवाज़ से जानकारी दी जा रही है। हमें आप दोनों का प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में। मैंने मैम को पहले भी सुना है, बहुत ही जागरूक और ज्ञानवर्धक जानकारी डॉक्टर साहिबा दे रही हैं।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
2: एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। शायद वो भी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपसे डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है अगर आपको फिट्स आते हैं और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर दवाएं बंद करते हैं, तो क्या ये मान लें कि अब ये दोबारा पलट के नहीं आएंगे?
0: बिल्कुल, एपिलेप्सी के जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे कारण हैं। उन जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि देयर आर सम बेनाइन और सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सीज, मतलब जो इतनी घबराने वाली दौरों की बीमारियां नहीं होती हैं और काफ़ी बार एक या दो दौरों के बाद ही कंट्रोल में हो जाती हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सी है मेरे बच्चे को, तो शायद दवाई दे के हम बहुत जल्दी इलाज कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्यूचर में इतना डर

0: की जरूरत नहीं है दौरों से. कभी कभी ब्रेन में सिर्फ एक कीटाणु होता है, जिस कीटाणु की अगर हमने दवा दे दी और दौरे की अगर दवाई दे दी तो ये भी क्योर हो जाता है. बट कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिसके डिफिकल्ट और ड्रग रेजिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लिमिटेड एपिलेप्सीज होती हैं जो दवाइयों पे देने के बाद भी कंट्रोल कभी कभी नहीं होती. पर उसके लिए भी आजकल बहुत सारी मेडिसिंस आ गई हैं. तो हम दौरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दौरे से घबराना नहीं है. ज़रूरी ये है कि पहले ही इलाज शुरू हो जाए, इलाज में देरी ना हो.
1: ओके, तो अभी हमारे साथ एक और कॉलर. ये आज क्या हो रहा है? हेलो. हाँ जी कॉलर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं?
2: जी नमस्कार दीदी जी और डॉक्टर साहबा भी नमस्कार. मेरा नाम है रौशनी रावत, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि दौरा पड़ने पर माता पिता को क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि
1: फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए?
0: अगर पहला सीजर आया तो हमें क्या करना चाहिए?
1: जी जी
0: बिल्कुल. सो अगर जैसे एक बार भी अगर बच्चे को दौरा आ रहा है तो आपको तुरंत तुरंत डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ब्रेन में कोई भी कीटाणु हो सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आगे चल के दूसरे दौरे का भी रिस्क हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी बातें हमें देखनी होती हैं कि दौरा बुखार के साथ आया था या कितनी देर का आया था, जगे हुए सोते हुए आया था, उससे हम कारण पता करते हैं. अगर उस कारण के चलते हमें लगता है कि MRI या EEG की जाँच करवानी चाहिए तो वो जाँच करवा के बच्चे के दौरे का कारण पता करके फिर हमें इलाज करना चाहिए. बिकॉज जैसे हमें इस बार मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर मल्टीपल काफी बार दौरे पड़ते हैं तो हम खुद ही अपने बच्चे को एक रिस्क में डाल रहे हैं. तो जल्दी कंट्रोल करना, सही दवाइयों से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो इवन अगर एक दौरा आ जाए तो भी आपको दिखाना है.
1: रुखसेबा, अभी आपने बार बार जिक्र किया कीटाणु का, तो ये कीटाणु जहन तक कैसे पहुंचता है? अगर आपने प्रॉपर कुकिंग नहीं की है या फिर किसी और जरिए से, तो ये कीटाणु जो जहन तक पहुंचता है उसे कैसे रोका जा सकता है? अगर हम शुरुआत में यही कहें कि हम बहुत हाइजीन तरीके से खाना दें तो क्या कीटाणु नहीं पहुंचेगा जहन तक?
0: जो ये कीटाणु है, जैसे पहले लगता था लोगों को कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ही ऐसा होता है, लेकिन जैसे सबने सुना है कि पत्ता गोभी में भी होता है, अगर अच्छे से नहीं धोया है तो वेजिटेरियंस में भी हो सकता है. यस डेफिनेटली. सो ऑल्दो ये जो है ये एक ही कीटाणु के लिए है स्पेसिफिकली, तो आपको ये तो इसमें यू गोज विदाउट सेइंग कि आपको सारी सब्जियां अच्छे से धोनी है, हाइजीन रखनी है. लेकिन उसके अलावा दूसरे भी बैक्टीरिया और कीटाणु है, जैसे TB है, उसकी भी गांठें हो सकती हैं.
1: अच्छा.
0: तो बेसिक प्रिवेंशन होना, सारी वैक्सीन्स लगवाना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, डाइट अच्छा रखना, आसपास कोई भी पेशेंट, जैसे कभी कभी आपके आसपास किसी को TB होता है तो कॉन्टैक्ट कम से कम रखना. सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम करते हैं तो हम काइंड ऑफ प्रिवेंट कर सकते हैं. बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दवाइयों का कोर्स देके कंट्रोल किया जा सकता है.
1: डॉक्टर साहब, फिर से समय है एक कमर्शियल ब्रेक का और उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
1: तो 12:51 और 34 सेकेंड आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस और आज हमारा जो मौजू है, विषय है, वो है कि किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, पहला क्या एक्शन होना चाहिए अगर आपके सामने कोई बच्चा फिट से या दौरे से गुजर रहा है. डॉक्टर साहब, इसी मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक कॉलर है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है. हेलो. हेलो. हाँ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए.
5: मेरा नाम राम सुचित है, लखनऊ से बोल रहे हैं.
1: जी जी.
5: हमारे दौरे पर जाते
0: हैं. हाँ जी.
5: हम ब्रांच पीपल का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, तब भी दौरे आ रहे हैं.
1: अच्छा, इन्होंने पूरा प्रॉपर इलाज कराया है पर फिर भी इनके दौरे आ रहे हैं.
0: किसी चीज का इन्होंने, आपने कुछ चीज बोली, कोई सर्जरी भी हुई है आपकी?
5: जी, हम ब्रांच पीपल का
1: ब्रेन ट्यूमर.
0: ओके ओके.
5: आईफोन में.
0: ओके ओके ओके. नहीं, सर्जरी के बाद भी, क्योंकि जैसे सर्जरी हुई है.

0: तो वो जो ब्रेन का हिस्सा रहता है वहाँ पे जो आसपास का हिस्सा रहता है उसमें डैमेज हो जाता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक हिस्सा गल जाता है या दिक्कत होती है तो वो जो है दौरे डेफिनेटली लेके आ सकता है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने दवाई तो नहीं छोड़ दी थी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको जो दवाई बताई गई हो वो कभी ख़त्म हो जाती है, छूट जाती है, तब दौरे आने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो मेरा आपको ये एडवाइस होगा कि आप दौरे की दवाई जो आपको चल रही है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसके बाद भी अगर दौरे आते हैं तो हमें दौरे की दवाई बढ़ानी होगी। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी हो गई वो बहुत अच्छी बात है, पर दवाई ज़रूर टाइम टू टाइम लें और फिर भी आएँ तो हम जाँच करके दवाई बढ़ाएँ।
1: डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया, अभी तो उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद इनको फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कीटाणु से आपने बताया, और कितने किस्म के रीज़न हो सकते हैं फिट्स आने के, स्पेसिफिकली अगर हम पूछें तो?
0: बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जब पैदा होने पे रोई नहीं होते हैं या पैदा होने पे इन्फेक्शन हो गया होता है, शुगर कम हो गया होता है, उसके चलते बहुत कॉमन है दौरे आना।
1: जी,
0: उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे जब बच्चों का विकास हो रहा होता है
1: जी,
0: तो बिना किसी कारण के भी बच्चों को जो एपिलेप्टिक एनकेफलोपैथीज या जेनेटिक एपिलेप्सिस होती हैं वो अंदरूनी, जैसे जो ये हमारे जीन्स में जो नुक्स हो जाता है उसके चलते भी हो सकती हैं। फिर जैसे हमने कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो हमारे ब्रेन में, मेनिंजाइटिस हुआ हो, एनकेफेलाइटिस हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी हुआ हो, या इवन जो आम भाषा में जो हम नॉर्मल देखते हैं कि डेंगी वगैरह हो जाता है, उनमें भी दौरे पड़ सकते हैं। तो आपको जब भी लगे कि दौरा पड़ रहा है आप एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए, सारी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद। कभी कभी बच्चों के शरीर पे आप देखेंगे काले भूरे रंग के निशान होते हैं, तो वो निशान भी हमें दिखाते हैं कि ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो सकता है, उसके चलते भी दौरे आ सकते हैं। तो एक डिटेल में बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेना कि क्या क्या हुआ था बर्थ से और पूरी बॉडी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है,
1: तो कॉज पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, सवाल पूछिए अपना।
2: सवाल ये पूछ रहे कि हमारी बहन की छोटी सी बच्ची हुई है, हल्का झटका के शिकायत है।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: अकबरपुर हेरिटेज जिला वाराणसी से।
1: आपकी बहन की छोटी सर्जरी हुई है जहन की, दिमाग की? अच्छा, तो अभी कोई समस्या क्या है?
0: बहन के बच्चे के दौरे पड़े हैं, आई थिंक। बहन के बच्चे को, बच्चे की उम्र कितनी है?
2: अभी मैडम इसे 4 दिन की हुई है।
0: 4 महीने?
2: 4 दिन की हुई है।
1: 4 दिन?
0: 4 दिन की हुई है, ठीक है। तो हाँ जी, तो आपको मोस्टली आपके डॉक्टर ने बताया होगा, लेकिन ये बहुत काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा पैदा होने पे नहीं रोया है या उसका शुगर कम हो गया था या फिर उसको पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया है या इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में भी दौरे आ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी डॉक्टर देख रहे हैं उन्होंने दवाई बढ़ा दी होगी, तो अभी आपको घबराना नहीं है, दौरे की दवाई। हाँ हाँ जी, तो अभी दौरे बेहतर हैं, कंट्रोल्ड हैं? बच्चे को दिखाई नहीं देते?
2: बच्चे को मतलब देखने नहीं देते है ना।
0: अच्छा,
2: दिखाई नहीं देते
1: जी। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको आपका जवाब मिल गया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये हमारे साथ आज के लास्ट कॉलर थे।
3: सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे हेल्थ एंड फिटनेस से इजाज़त। डेफिनेटली आज डॉक्टर साहिबा के ज़रिए दी गई जानकारी से आपको पता चला होगा कि आपको पहला जो एक्शन लेना है उस वक्त, जिस वक्त बच्चे को इस तरह का फिट आ रहा है, क्या करना है, सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। और हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम की मंशा भी यही है कि आप कैसे, मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर का जो हमारा कोशिश है वो डेफिनेटली आज सार्थक हुई होगी।

0: के साथ हम इस प्रोग्राम से आपसे लेते हैं इजाज़त. डॉक्टर साहिबा, आप आई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा.
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ.
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा.
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान. चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल. ये लखनऊ है जनाब.
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब.
6: समझे जनाब अली.
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो. धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाया जाए। उन्होंने खासकर भर्ती परीक्षाओं व बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखे जाने का कड़ा निर्देश दिया। प्रदेश में 8, 9 व 10 जून को सिपाही भर्ती की बड़ी परीक्षा होनी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साइकिल रैलियों का आयोजन कर फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। अलीगढ़ में जिला साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित अस्मिता साइकिलिंग लीग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाए। वहीं हमीरपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने रवाना किया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों एवं नागरिकों ने भाग लेकर फिट इंडिया अभियान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून

जून तक ही निर्धारित थी। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली है। दिन का तापमान अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री रहा, ये सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा, ये सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान लगातार 40 डिग्री के पार बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
5: आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
9: धड़कन लखनऊ की।

एक बजकर पांच मिनट और 51 सेकंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम होटल पे तेरी बात और मैं हूं आपके साथ समरीन। और क्या मौजू होने वाला है आपका, मैं आपको बता देती हूं। आज हम बात करेंगे कंटेंट फील करने की या फिर दिखावे की जिंदगी के बारे में। आप क्या सोचते हैं, जैसे कंटेंट आप किसी भी चीज़ से महसूस कर सकते हैं, संपन्न आप आध्यात्मिक होकर भी कंटेंट फील कर सकते हैं, आप पैसा कमा के भी कंटेंट फील कर सकते हैं, आप बहुत सक्सेस हासिल करके भी कंटेंट फील कर सकते हैं, और आप ये सब करके भी अगर दिखावे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खाली खाली रहती है। तो आज के टॉपिक पर मुझे चाहिए आपके विचार, क्या सोचते हैं आप, कौन सी ज़िंदगी बेहतर है, वर्चुअल दुनिया या फिर रियल दुनिया? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि लोग वर्चुअल दुनिया पे तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आप बड़ा एनवी फील करते हैं उन्हें देखे, यार ये इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, ये बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी वो वैसे ही महसूस कर सकें? इस पर बातचीत करेंगे हम आपसे। आप हमें करेंगे मेल fmakashwani@gmail.com पर और बताएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं इस विषय पर या इस ख्याल के बारे में। फिलहाल सुनते हैं एक बेहतरीन सा गाना और उसके बाद बातचीत जारी रहेगी आपसे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती रेलवे पुलिस के काम का जायज़ा लेते हुए हिदायत दी कि रियासत में रेलवे सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद जदीद और तकनीकी तौर पर काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, जराइम पर काबू पाने और पुलिस की फौरी मदद को अवलियन तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन अवलियन सिस्टम का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने मुजरिमों को फौरी और मौसर सज़ा देने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक्तसादी गैर यकीनी सूरतहाल का सामना कर रहे हैं, भारत आलमी मईशत में तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत ने इक्तसादी तरक्की को मुस्तहकम, खुद एतमादी, तसलसल और एतबात के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर दिफा ने अपनी रिहाइश पर लोगों से मुलाकात के बाद आलमबाग वाक़ टेढ़ी पुलिया के पास प्रबुद्ध जनसंवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और इलाके के मुमताज़ शहरियों से बातचीत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब आज आधी रात तक अपनी दरख्वास्त

दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इससे पहले कल 6 जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। रियासत में सिविल पुलिस कांस्टेबल और उसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान कल से 10 जून तक रोजाना 2 शिफ्टों में मुनक्किद होगा। इंतजामिया इसके लिए तैयारियां कर रही है। वजीर आला की हिदायत के बाद इम्तिहान की तैयारियों की रिहर्सल हुई। कानपुर में इंतजामिया ने इंतजाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। रेलवे ने भी खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उम्मीदवारों को रियायती शरों पर खिदमात फराहम करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पेपर के मुबैना लीक या फरोख्त के दावों की तरदीद की है। NTA ने कहा है कि ये मुनज़्ज़म धोखाबाज गिरोहों का काम था जो तलबा और उनके अहल खाना के खदशात का फ़ायदा उठा रहे हैं। एजेंसी फ़ाल तौर पर काबिल एतराज़ चैलेंजेस अकाउंट्स और मवाद की निशानदेही कर रही है और उसने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। NTA उम्मीदवारों और वालदैन को मशवरा देता है कि वो ऐसे किसी पैगाम का शिकार ना हों। आम की खुशबू और मिठास अब अमरोहा के सरहदों से निकलकर कई ममालिक

1:22 और 9 सेकेंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ होठों पे तेरी बात, जिसमें आज हम बात करेंगे कि दुनिया में हम अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को सबके साथ तो बांट रहे हैं, लेकिन अपने अकेलेपन, अपनी बेचैनियां और अपने अधूरेपन को अक्सर दिल में किसी कोने में छुपा कर रखते हैं। होठों पे तेरी बात में आज हम बात करेंगे उसी खुशी की जो दिखाई तो बहुत देती है लेकिन महसूस कम होती जा रही है। चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया पर सैकड़ों लाइक्स हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में अकेलापन है। क्या वजह है इसकी? क्या महसूस करते हैं आप इस टॉपिक को लेकर? हमें मेल करिए और बताइए। चंद मेल जो हमारे साथ आए हैं उन्हें मैं जल्दी से

शामिल कर लेती हूँ। बसंत कुमार जी लिखते हैं कि आदरणीय मैडम जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज का थीम क्या है? दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से मैं आपको मेल कर रहा हूँ। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अंश का बेबी, और आगे उन्होंने शुक्रिया लिखा है। टॉपिक मैंने अभी आपको बताया कि खुशी जो है वो आप एक्चुअल महसूस करते हैं या फिर वो सिर्फ दिखावटी खुशी है। नीलू लिखती हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे रियल लाइफ पसंद है। जो भी कुछ करो दिल से करो, मन से करो, या किसी की मदद करनी है तो बिना संकोच के करो। अपनी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं आप। समरिंदी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं दुनिया अक्सर भरोसा उन्हीं लोगों पे करती है। आगे इन्होंने एक लिखा है कि सुखन के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, सुखन के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, हम अपने साथ अपने दोस्तों का पैगाम लाए हैं। खुलो तो इस दिल में आंखों में प्यार लाए हैं, कबूल कीजिएगा हम प्यार भरा सलाम लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत नीलू जी, आप शायरा बन गई हैं अब। आगे सुधाकर यादव जी लिखते हैं, होठों पे तेरी बात, ये प्रोग्राम हम लाइव सुना था और हमका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा था। इस प्रोग्राम के सादरीकरण बहुत ही सुंदर रहता है और प्रोग्राम सादर करने की शैली हमको बहुत भाती है, शुक्रिया। रोशनी रावत लिखती है, नमस्ते समृद्धि दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी, आप कैसी हैं? 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ, मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से। मैंने पूरा हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। आपके द्वारा पूछे गए सारे सवाल और डॉक्टर साहिबा के द्वारा बताए गए उत्तर जो है वो बहुत सराहनीय थे। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत, पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक आज का है कि जैसे कि आज का टॉपिक बहुत ही अलग और हकीकत से परे है। मेरा मानना है कि रील में जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा रियल बोलती हूँ और वही करती हूँ जो मुझे अच्छा और सही लगता है। ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मगर इतना कहती हूँ कि रील में ज्यादा ना जाइए। और आगे लिखती हैं, आज मेरे जहन में आपका ख्याल बार बार आ रहा था कि शायद दीदी आप आए। जैसे ही सुना मैंने 12 बजे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आई एम सो हैप्पी रोशनी कि आप लोग इतने दिल से कनेक्टेड हैं हमारे साथ, और ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत एहसास है कि कोई दूर बैठा जो हमसे कभी मिला नहीं है, हमें जानता नहीं है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसको हमारा इंतज़ार रहता है। बसंत कुमार सिन्हा लिखते हैं कि सलाम कबूल हो फिल्म जुगनू, वाह वाह वाह। टॉपिक पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। राज कमल यादव लिखते हैं, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, नमस्ते मैम जी, कैसी हो आप? मैम जी हमको ज्यादा तो नहीं पता, पर जो है वो ये कि हमने जीवन को वास्तविकता की भूमिका पर सजीवता से जीना चाहिए। थोड़ी बहुत सुंदरता स्वीकार है, परंतु व्यर्थ का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। बहुत सही बात आपने कही। हमारे साथ रमजान मास्टर जी आपको सुन रहे हैं और आपको नमस्कार बोल रहे हैं। धन्यवाद राजकमल जी, और आपकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि अपने आसपास सुंदरता बनाए रखिए, लेकिन उस सुंदरता को बनाने में आप खुद खाली मत हो जाइए। ये बात आपने बहुत सही कही, और सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारा आज का होठों पे तेरी बात का टॉपिक है कि जिंदगी में रियल लाइफ और रियल लाइफ में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। हम रियल लाइफ में इतना मगन हो गए हैं, हम दिखावे की जिंदगी में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि हम एक्चुअली अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रील पोस्ट करते हैं ना, तो 10 बार जाके चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, क्या कॉमेंट्स आए, क्या जरूरत है। आपने पोस्ट कर दी, अब उसे बार बार क्रॉस चेक करना आप में एक तरीके एंजाइटी को बढ़ाएगा, और वो आपको फिर आपके सेल्फ डाउट पे ले जाएगा। अगर लाइक ज्यादा नहीं आए, कुछ पे ज्यादा लाइक आए तो उसने खुशी तो दी, लेकिन जिस पे लाइक ज्यादा नहीं आए वो अपने सेल्फ डाउट में आ जाएगा। तो ये है हमारा आज का मौजू, आपके क्या विचार है हमें बताइए। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 1:36 और पूरे 23 सेकंड आप सुन रहे हैं होटो पे तेरी बात। मैं हूँ आपके साथ समरीन और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क करना, महसूस करना जो है वो भूल गए हैं। हम फंस गए हैं बहुत सारे जालों में, जैसे कब हम अपनी ज़िंदगी में कंपैरिजन ले आते हैं दूसरों से, पता ही नहीं चलता कि उसके पास तो बड़ी नौकरी है, उसके पास तो बड़ा घर है, उसके पास बेहतरीन सी कार है, वो हर वीकेंड जो है वो घूमने जाता है। लेकिन इस कंपैरिजन में हम ये भूल गए हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ है जिसका हमें शुक्राना भेजना चाहिए, जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है। आइए जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस टॉपिक पर। सुधान बाबा लिखते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में लड़कियां कुछ ज़्यादा ही बर्बाद हैं। क्यों भाई सुधान बाबा, ये तो गलत बात हुई, ये तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूँगी। सारी जेंडर बाइज होने के बजाय आप ये देखें कि दोनों तरफ जो है वो हम, हमारा जो मेयार है वो कहीं डिग्रेड हो रहा है, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, उसे अच्छा करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी एक जेंडर बाइज्ड होके स्टेटमेंट दे देना सुधान, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करूँगी। बाबू अंसारी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम समरीन अप्पी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा और टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे

0: का कुछ भी ज़्यादा देर तक नहीं चलता और मैं बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। तो ये तो ज़िंदगी की कुंजी है कि अगर आपने एकदम सादगी से ज़िंदगी गुजारी है तो यकीन मानिए आप स्ट्रेस के जैसे जाल में नहीं फंसेंगे। बसंत कुमार जी लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक मैडम जी, हमारी ओर से प्यार भरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आज की थीम क्या है? थीम तो मैंने आपको कई बार बताई, अच्छा मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज की थीम ये है, टॉपिक ये है कि आप रियल लाइफ और रील लाइफ में किसे बेहतर मानते हैं और क्या क्या कुछ खोया है हमने रील लाइफ को तवज्जो देकर। आगे लिखते हैं, मुझे सादगी पसंद है, कम खाओ गम खाओ और हमेशा दिखावे से दूर रहो। अपने जीवन में जो भगवान ने दिया है उसी पर संतोष करें, दूसरे की बराबरी करें लेकिन बुराई नहीं। एक दिन ऐसा होगा जब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भरोसा रखें, मेहनत करें, भगवान पर विश्वास और भरोसा बढ़ाएं। जावेद अख्तर जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून समरीन बाजी, आज के दौर में देखा जाए तो दिखावा ज़्यादा है। अगर हम अपनी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो दूसरे के लिए दिल से उनकी मदद करें, तभी हमारे अंदर की छुपी हुई खुशी उजागर होगी। रेशम की नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। वकील अहमद लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है, टॉपिक अच्छा है, चेहरे पर हंसी दिखावटी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, लेकिन रियल को हम मानते कितना है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथौली जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, पिंकी रिंकी, महक अंसारी, गुलफशन सिद्दीकी, अहमद नवाब, अनीस अहमद, बबलू यादव और ये जो जिन्होंने हमें मेल भेजा है वकील अहमद, ये आम की बाग में हैं इस वक्त। और टॉपिक पे जिन्होंने लिखा है वो यही, इसका सार ये है कि दिखावटी जो है वो ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और एक बात ये भी बिल्कुल सच है कि अगर आप दिखावटी ज़िंदगी पे नहीं जाएंगे ना तो स्ट्रेस लेवल आपकी ज़िंदगी से बहुत हद तक कम हो जाएगा, बोझ नहीं होगी। एक्चुअली आप जब शुक्राना या ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाते हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो अपनी ज़िंदगी में शुक्राने को ज़रूर शामिल करें। महेंद्र दीपान लिखते हैं कि आदरणीय समरीन मैडम जी, कैसी हैं आप? सप्रेम नमस्कार, FM रेनबो लखनऊ का एक समर्पित श्रोता महेंद्र दीपान, राजस्थान के नागौर ज़िले के छोटे से गांव रून से हूँ। मैम कल शाम 4 बजे के बाद, आज ही श्वेता मैम आई थी, उनकी आवाज़ और आपकी आवाज़ सेम सेम लगती है। अच्छा, आज अब मैं भी सुनूंगी श्वेता की आवाज़। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल लाइफ सिर्फ एक सजी हुई खिड़की है जो चमक धमक तो दिखा सकती है लेकिन रियल लाइफ की गहराई और सुकून नहीं दे सकती है। मेरी नज़र में रियल लाइफ ही असली धमाका है, क्योंकि हमारे असली रिश्ते हमारे माता पिता का आशीर्वाद, अपनों का साथ और अपनी मेहनत की कमाई ही जिंदगी की असली पूंजी है। रियल लाइफ को केवल अपनी रचनात्मकता के एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना सही रहेगा, लेकिन कभी भी इससे असल जिंदगी की शांति और सादगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा माना है कि हमें अपनी जिंदगी को इतना प्राइवेट और मर्यादित रखना चाहिए कि दुनिया बस अंदाजा ही लगाती रह जाए। महेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी पर्सनल लाइफ रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे भी हुए हैं जहां पर सोशल मीडिया से लोगों ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के कोई स्कैम किया है। तो आगे और भी मेल्स हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले एक और बेहतरीन सा ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद सेम मौजू पर आपके मेल्स भी शामिल होंगे। और जो हमारे नए लिसनर्स अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमें मेल कर सकते हैं इस टॉपिक पर जिसमें मैंने बात की है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में आप किसे तरजीह देते हैं। मौजू आज का ये है, आप हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब

और देखते ही देखते ये जो वक्त का पहिया है ना, ये इतनी तेजी से भाग रहा है। 1:51 हो चुके हैं, हमारा होठों पे तेरी बात एकदम खत्म होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन जाने से पहले जो मेल्स हमारे पास आए हैं उनके नाम तो मैं एटलीस्ट आप तक पहुंचा दूं। अनिल कुमार ठाकुर, सतीश अनेजा, रामेश्वर, एमन नवाब, गुलफशा सिद्दीकी, शैलेश कुमार, रामराज, मोनू सेठ, बेनित कुमार। अब मैं जल्दी से इन्होंने क्या लिखा है ये भी आप तक पहुंचा देती हूँ। बेनित कुमार लिखते हैं कि होठों पे तेरी बात प्रस्तुत करने वाली बहन जी को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, आपकी बोली आपका अंदाज बहुत सुपरहिट लाजवाब है, धन्यवाद आपका। धूप में हमारे भाई बहन 10 बजे के बाद ना निकलें, पानी पर्याप्त पिएं, दिन में 3-4 बार अपना चेहरा जरूर धोएं।

सेठ ने सिर्फ शुभ दोपहर या लिखा है। रामराज जी लिखते हैं कि होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भान शंकर भैया, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। और जो ये जिंदगी है, ईमानदारी से जीने का मजा है, इसमें कुछ और है, दिखावे पर ना जाएं। एकदम एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कह दी है। शैलेश कुमार जी लिखते हैं, नीलू आपका तो मैंने मेल पढ़ा है। समरीन दी, आज का टॉपिक हम ठीक से समझ नहीं पाए थे, इसलिए दोबारा मेल कर रही हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान और खुशी हमारे लिए दोनों चीजें मायने रखती हैं। एक मेरी दोस्त प्यार और दूसरा एफएम रेनबो, जो मेरे पसंदीदा आरजेएस की आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। और जब मैं सोकर उठती हूँ, सबसे पहले आईने के सामने अपना चेहरा देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं एफएम रेनबो को इतना पसंद करती हूँ। दी, मेरे पास बहुत अनमोल तोहफे ऊपर वाले ने दे रखे हैं। एफएम रेनबो का प्यार मोहब्बत का कोई रंग नहीं, फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं, फिर भी वो हसीन है। इतनी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें आपने भेजी हैं नीलू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफशा सिद्दीकी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम समीर अप्पी। गुलफशा सिद्दीकी, सडीले से प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि असल जिंदगी में जो होता है वो हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन दिखावटी जिंदगी में हम खुद तैयार रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि सच वही होता है जो असल जिंदगी में होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात आपने कही गुलफशा, कि दिखावटी जिंदगी में हम अपने हिसाब से चीजें दिखा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जिंदगी में हम फेस कर रहे होते हैं या जो जिंदगी की प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगला मोमेंट क्या होने वाला है, बट रियल लाइफ में आप ऐसा करते हैं। अमन नवाब लिखती हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अप्पी, मैं आपको 12 बजे से सुन रही हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत अच्छा लगा। रियल लाइफ में हम धीरे धीरे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, आगे के थोड़े से दांत दिखाते हैं, सोच कर कदम बढ़ाते हैं, क्या करना है कैसे करना है सोच के करते हैं। अगर रोना है तो सोचते हैं कैसे रोएं जो खराब ना लगे, आंखों से आंसू टपकते हैं लेकिन चेहरा खराब ना हो। अपने ही कंपैरिजन आप हमेशा दूसरों से करते हैं और यही सोचते हैं कि यही है रियल लाइफ। अब आते हैं जैसे लोग रियल लाइफ जीने वाले लोग, जैसे कि हम खुद हैं, पूरे 32 दांत दिखाकर हंसने वाले। रोना है तो पूरा मुंह खोलकर चिल्ला कर रोने वाले। अपने अकेलेपन में नहीं, इसको अकेलापन नहीं एकांत बोलेंगे, उसमें सुकून ढूंढ लेने वाले। मेरे जैसे लोग रियल लाइफ में जीते हैं, बनावटी लाइफ में नहीं जीते, और ना ही मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जो कुछ मेरे पास है ऊपर वाले का शुक्र है। बहुत ही प्यारी और मुख्तसर सी लाइंस में आपने बहुत बड़ी बात कह दी अमन, कि इसमें कोई शक नहीं कि आप ज़िंदगी खुल कर जिए, बग़ैर इस चीज़ का लिहाज किए हुए कि हंसते हुए आप कैसे दिख रहे हैं या रोते हुए आप कैसे दिख रहे हैं। आपको रोना आ रहा है आप रोइए, आपको हंसना है आप हंसिए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आपके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसका वेंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। और रियल लाइफ में आप अपने आप को होल्ड करते हैं, नहीं अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, 1:56 हो रहे पे तेरी बात प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को रामेश्वर जी ने सादर प्रणाम कहा है। कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती हैं बहन जी, प्रस्तुति बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति कटेरिया ने हमें ये मेल किया है। और इसी के साथ होटो पे तेरी बात से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाज़त, एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ अगले 1 घंटे भी मैं रहने वाली हूँ। और मुझे पता है एकदम आंधी तूफान और बाढ़ आती है आपके मेल्स की उस प्रोग्राम में, तो अगर आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में हॉट मेल में मेल करना चाहते हैं तो fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके साथ डिस्क्लेमर ये है कि आप का मेल अगर नहीं पढ़ा जा पाया तो उसके लिए पहले से ही माजरत, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मेल्स को हम शामिल करें। दीजिए हमें इजाज़त, सुनिए ये बेहतरीन सा ट्रैक।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष में जन भागीदारी से स्वच्छता की तस्वीर बदली है। उप मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दशकों तक पहले की सरकार के लिए स्वच्छता कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जन भागीदारी का विषय बनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि आज देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और करोड़ों परिवारों विशेषकर माताओं बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट भर्ती 2025 परीक्षा में पहले फर्जीवाड़े की सूचना जारी की। बोर्ड ने बताया कि एक टेलीग्राम चैनल के जरिए 6 जून को संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें परीक्षार्थियों को 8 जून 2026 को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया गया। बोर्ड के अनुसार इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग कर परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो ऐसे फर्जी संदेशों और चैनलों से पूरी तरह से दूर रहें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता भंग करने वाली होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण और नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा आज विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में गोमतीनगर स्थित जैनेश्वर मिश्रा पार्क में राष्ट्रव्यापी फिटनेस पहल संडेज ऑन साइकिल का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया कार्यक्रम की भावना को बढ़ावा देना और लोगों में स्वास्थ्य और सामुदायिक भागीदारी के प्रति उत्साह जगाना था। साइकिलिंग महाकुंभ में भारत की सामूहिक खेल भावना का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां कुल मिलाकर 13,300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देवरिया में आज केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा खनोवा नदी में वृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नदी से शैवाल, जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की विशेष मदद से साफ किया गया। अभियान के दौरान एसडीआरएफ और पीएसी 26 वाहनी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसी के साथ ये

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 2:04:54 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हॉटमेल और मैं आपके साथ एक बार फिर से समरीन हूं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को खास बनाते हैं आपके मेल्स, जो अक्सर हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए पहले से ही आपसे माफी और माजरत चाहते हैं, लेकिन कोशिश तो ये रहेगी कि मैक्सिमम मेल्स को शामिल करें, आपके पसंद के गाने भी इसमें हम बजाएं। लेकिन अगर कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो आपसे अनुरोध है, विनती है, गुजारिश है कि उसे जाने दीजिएगा। शिकायतें करने के बजाय सॉल्यूशंस पे जाते हैं। मेल करिए हमें और हम शामिल करेंगे इस बेहतरीन से गाने के बाद आपका मेल।

हॉटमेल में आपके मेल्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं मुझ तक. और पहला मेल जो हमारे पास आया है वो मल्होत्रा डी मोहाली का है. लिखते हैं ये गाना सुनाना चाहते हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र, बजाज साहिल, बजाज बिट्टा बजाज और चंडीगढ़ से इन्होंने हमें ये मेल किया है. अगला मेल है दीपेश वर्मा का. दीपेश ने ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है. दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा को ये गाना सुनवाना चाहते हैं. शेख अल्हा बख्श लिखते हैं आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी आदाब अर्ज़ है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा. मेरा ये मेल तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्हा बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और आगे तालिब अंसारी लिखते हैं राजा कटरा बाराबंकी से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सॉन्ग मोरा और टिप टिप बरसा पानी इन्होंने गाने की फरमाइश की है. बिट्टू गनेजिया लिखते हैं फिल्म मदर इंडिया गीत गाड़ी वाले गाड़ी धीरे चला रहे, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमत आहूजा को ये सुनाना चाहते हैं गीत. आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा अपनी पसंद का. अहमद बागवान लिखते हैं होस्ट बहना जी आदाब नमस्कार, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करिएगा, मेरा मेल ज़रूर शामिल करिएगा और आप प्लीज़ ऐसे मत लिखा करिए कि आप निराश हो जाएंगे अगर मैं मेल नहीं शामिल करूँगी या नाराज़ हो जाएंगे. छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ़ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परवीन और राबिया मंतशा, आशुतोष अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली को इन्होंने ये मेल डेडिकेट किया है. आफ्ताब अंसारी लिखते हैं आरजे समरीन बहन जी को प्यार भरा नमस्कार. मेरा इन्होंने जो नाम डेडिकेट किए हैं मैं जल्दी से उनको मेंशन कर लेती हूँ. आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का नाम इन्होंने मेंशन किया है. फगरू राम यादव लिखते हैं फिल्म खून पसीना से संबलपुर कांकेर सिका, फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव को ये गाना सुनवाना चाहते हैं.

राशिद हुसैन का मेल कहाँ है? आफताब अंसारी लिखते हैं, आप मेल दोबारा कर रहे हैं। राशिद हुसैन लिखा है, हॉटमेल प्रोग्राम, प्यारी सिस्टर जी, आरजे जी, आपको प्यार भरा आदाब। फिल्म कभी अजनबी थे बोल गीत मेरे होठों को दे गया कोई, लता मंगेशकर की आवाज में है, इसे सुना दीजिए। और सुनाना चाहते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, असना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और आगे जो नेक्स्ट मेल हमारे पास आया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम को शामिल करूँ। रविंद्र मोहनदास, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से रवीन मोहनदास और आशा देवी को गीत सुनाना चाहता हूँ। सतीश अनेजा जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं, सलाम समरीन बहन जी, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं, नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। क्या बात कही आपने। गीत मौसम मस्ताना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर से इन्होंने फरमाइश की है।

जी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। क्या बात कही आपने। गीत मौसम मस्ताना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर से इन्होंने फरमाइश की है, चंडीगढ़ से। और आगे लिखते हैं कि आपका दिल से धन्यवाद, आपका भी सतीश अनेजा जी, दिल से धन्यवाद हमें मेल भेजने के लिए। अगला मेल हमें भेजा है सुधांशु एस ने, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट महोना, थाना इटौंजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, गाना सुनाइएगा, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, अथवा दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, अथवा अच्छा ज़रूर सुधांशु, हम कोशिश करेंगे कि आपके फरमाइशी गीतों को हम शामिल करें। सुनील पाठक जी लिखते हैं, आदरणीय होस्ट मैडम जी का हार्दिक अभिनंदन, अनारकली बाजार जगराव से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन्होंने फरमाइश की है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। तौहीद रयान लिखते हैं, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। गुड आफ्टरनून आरजे मैम, कैसे हो आप? मैं मलियाबाद से हूँ, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे ये सॉन्ग सुना दीजिए कि तू धरती पर चाहे कहीं भी रहे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी तौहीद, हमने आपका ये गाना मेंशन कर लिया है और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मल्होत्रा जी की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर, ये रहा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दो बजकर 21 मिनट और 22 सेकंड, आप सुन रहे हैं हॉट मेल अपनी दोस्त समरीन के साथ, जहां शामिल हो रहे हैं आपके भेजे हुए मेल्स इस प्रोग्राम में। और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमें जो मेल भेजा है वो है तुलसी मस्कीन का। सबसे ज्यादा प्रेशर इस प्रोग्राम में इसलिए होता है कि इतने प्यार से आप लोग 3-3, 4-4 बार मेल भेज रहे होते हैं और फिर भी शिकायत होती है कि अभी मेल नहीं पढ़ा गया है। तो मैं जल्दी से मेल पढ़ना शुरू करती हूँ। आदरणीय होस्ट मैम जी नमस्कार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ किसी भी प्यारे से गीत को में शामिल कर लीजिएगा। मेरा ये मेल और एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भी मैं अपनी पसंद से प्ले कर दूं। कितने प्यारे और इनोसेंट हमारे लिसनर्स हैं। और नेक्स्ट मेल हमें भेजा है अभिजीत जी ने। आदरणीय मैडम जी, आपको प्यार भरा नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। फिल्म कारवा, स्वर लता मंगेशकर जी, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, आगे इन्होंने ये सुनाना चाहते हैं अभिजीत जी को, प्रणीता जी को, सरिता जी को, अर्जुन को और वैशाली, शैलेश को, एकांश, सुमित को और कुमारी ध्वनि को, जिन्हें इन्होंने लिखा है कि वो परी भी कहते हैं। रोजी डिकैस्ट्रो सप्रेम नमस्कार, होस्ट जी जानकीपुरम सार जानक जनकपुरम सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो और गाने की उन्होंने फरमाइश की है, जो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर प्ले करें। गाना बहुत प्यारा है। एक मिनट, अगला मेल हमें भेजा है विनोद जी ने और उन्होंने सिर्फ गुड आफ्टरनून मैम लिखा हुआ है। सत्यनारायण कुरिल लिखते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हॉटमेल प्रोग्राम में मेल करने का समय निर्धारित करिए, जैसे कि 2 बजे से 2:15 के तक ही मेल शामिल करें, उन्हीं मेल को, जिससे आप सभी को मेल शामिल, आप सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके मेल शामिल हो सकें और सभी के पसंद के गीत शामिल हो सकें। उदयपुर राजस्थान, सत्यनारायण कुरील, धन्यवाद। सत्यनारायण जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर हम वक्त की लिमिटेशन कर देंगे

तो लगातार जो एक घंटे मेल आ रहे होते हैं और बहुत सारे मेल्स जो है उसमें ये छूट जाता है, बहुत सारे मेल्स छूट जाते हैं. तो आप ऐसा करें कि ये रिक्वेस्ट आप हमारी जब प्रोग्राम आता है जिसमें हमारी सुमना मैम आती हैं, आप उनको अपनी ये रिक्वेस्ट बताइए एंड डेफिनेटली वो इसका कोई सलूशन निकालेंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है. लेकिन फिर भी सभी के गाने प्ले हो जाएंगे इसके कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि मेल्स बेहद आते हैं इसमें. दिनेश वर्मा लिखते हैं कि फिल्म ममता स्वरलता और फरमाइश करता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा. जय लिखते हैं हमारा नंबर कब आएगा जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म सौदागर, गीत इलू इलू क्या है. देखिए आपका समय आ गया और आपका मेल पढ़ दिया गया है. अब आप लोग ऐसे भी एडजस्ट कर लिया करिए, अच्छा ठीक है मेरा मेल पढ़ लिया गया तो गाना नहीं गया या मेरा गाना प्ले हो गया तो मेल रह गया, ऐसे ऐसे एडजस्ट भी करिए. सुरन सिंह नमस्कार जी, गाँव लोहगढ़ ठकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुनवा दीजिए, हमारा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिए. अब ये भी एक कन्फ्यूजन है, कुछ लोग चाहते हैं कि मेल शामिल हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि गीत प्ले हो. और सुधाकर जी आपका मेल शामिल हो चुका है, प्लीज़ आप चार चार बार मेल करेंगे तो कैसे बाकी लोगों के मेल शामिल होंगे. बेरित कुमार लिखते हैं संजय ट्रेलर ग्राम सरैया पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल सीतापुर से हॉटमेल में मेल कर रहा हूँ. समरीन बहन जी आपको गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया की नमस्ते, मेरा मेल शामिल कर लीजिएगा, पहली बार मेल कर रहा हूँ. नहीं बिनित, मैंने इससे पहले भी आपके मेल कई बार पढ़े, निराश मत करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा. मेरा एक गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे. अच्छा 20 साल बाद मेरे दोस्त हैं विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर से आज़ाद सिमरीन. अच्छा मेल लिखते लिखते गायब हो गए हैं, इनका मेल पूरा नहीं है. नेक्स्ट मेल हमें भेजा है पंजाजी नवाकर ने. आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार, फिल्म जानवर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना दीजिए. और नालेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस घनवकर. और इसके अलावा इन्होंने हमें भेजा है मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायरे, राजकुमार करचे, आशीष मुहारकर, शमसुल कमर राही ने हमें भेजा है आरजे जी आदाब. गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, नवी हसन लिखते हैं आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, खैरियत से हैं आप जी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. और ये सुनवाना चाहते हैं नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन. और आगे लिखते हैं कि अगर मेरा मेल आपने शामिल कर लिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. इससे पहले कि मैं म्यूजिकल ब्रेक में जाऊँ, गुरमीत का मेल शामिल कर लेते हैं. खुशनुमा एफएम गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से इन्होंने हमें मेल किया है. अब सुनाते हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पर, ये रहा

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी

और ये जो वक्त है ये दुश्मन है हमारा. 2:36 और पूरे 36 सेकंड आप सुन रहे हो हॉटमेल. और अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने मेल्स भेजना चाहते हैं, तो आप हमें आप fmakashwadi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं. फिलहाल चलिए जल्दी से शामिल करते हैं मेल. दिग्दर्शन गौर जी का लिखते हैं मेरठ कैंट से. दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, ठीक 2 बजे मेल किया था, ना जाने कहाँ चला गया. आप मेल पढ़ते हुए शिकायतें या तारीफें मत पढ़ा करिए, इससे प्रोग्राम का समय नष्ट होता है. जितनी देर में आप शिकायत और तारीफ पढ़ती हैं, इतनी देर में बहुत सारे लोग के मेल शामिल हो जाएंगे. देखिए, मेल में कोशिश तो यह रहती है कि पूरी बात लोगों तक पहुँचे, जो भी वो हमें भेज रहे हैं. और इतना टाइम नहीं होता कि हम मेल्स को पहले से पढ़ कर रखें. तो दीपेश वर्मा लिखते हैं, नमस्कार, जय जोहार, ग्रीन पीपल लोड, सरगांव, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश. और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, कोशिश करेंगे कि प्ले हो जाए. कदर एमआर लिखते हैं कि आपकी पसंद का कोई भी गीत, सुरीला सदाबहार सा गीत सुना दीजिए. और बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है, बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री जी को ये गाना सुनवाना चाहते हैं. साई गैकवाड़ लिखते हैं, हॉटमेल सादर करने वाली समरीन दीदी को प्यार भरा नमस्कार. दीदी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और अनारी फिल्म का क्या मौसम आया है गाने की इन्होंने फरमाइश की है, अगर हमारे पास वक्त मिलेगा तो हम ज़रूर प्ले करेंगे. सीताराम कागरा जी लिखते हैं, नमस्कार, फिल्म सनम गीत इश्क में मेरे रब्बा जो है वो प्ले कर दीजिए. एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकिता कांगड़ा ने हमें मेल किया है. ताज मोहम्मद लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, हमारी फरमाइश का गीत भी

जी उसमें शामिल कर लीजिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर सराही, महराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। मोहम्मद सादिक खत्री लिखते हैं, मोहतरमा जी आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुना दीजिए और इन लोगों के नाम ले दीजिए। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। राघव बघेल लिखते हैं, फिल्म नील कमल से तुझको पुकारे मेरा प्यार पसंद, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। फरहान लिखते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान, मैं लखनऊ से हूँ, सॉन्ग सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। ज़रूर फरहान, कोशिश रहेगी कि हम गाने प्ले करें जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले मेल शामिल कर लेते हैं। डीके जी लिखते हैं, न्यू दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु, फिल्म महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इसी तरह का अभी थोड़ा सा एक गाना मैंने आपको प्ले किया है। वारिस अंसारी जी लिखते हैं, समरीन जी को आदाब, मूवी बादशाह ट्रैक हम तो दीवाने हुए यार। ओके और अच्छा, इन्होंने ऑप्शन दिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ज़रूर फिलहाल हमारे एक श्रोता की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर गे रहा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

2:49 आप सुन रहे हैं हॉट मेल अपनी दोस्त सबरीन के साथ, और लगातार जो आपके मेल्स का सिलसिला है वो हम तक पहुंच रहा है। और मेल जो हमें भेजा है वो भेजा है सुरेश नारंग ने। रिस्पेक्टेड आरजे, मेरे पसंद का ये गाना सुना दीजिएगा। सहारनपुर से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग को ये सुनाना चाहते हैं मेल। ज़रूर आपकी पसंद का ट्रैक हम कोशिश करेंगे कि इसी अगले जो 10 मिनट हैं उसमें हम प्ले कर दें। बोधराज खोरवाल लिखते हैं, फिल्म 3 इडियट्स, जुबी जुबी डुबी रुबी उत्तम नगर दिल्ली से। बोधराज खोरवाल, कमल रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश को ये सुनाना चाहते हैं गीत। नरेश लिखते हैं कि नमस्कार आरजे जी, शुक्रिया कहना तो भूल गए थे। शुक्रिया जी, ये मेल नाम शामिल करवाने के लिए नहीं भेजा था दीदी, सदा खुश रहिए आप। इन्होंने नाम भेजे हैं खैर बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। और अगला मेल जो हमें भेजा है वो भेजा है नरेश ने, लिखते हैं नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। लालगिरी लिखते हैं, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित गोस्वामी। और कार्यक्रम पेशकर्ता जी, हमारा प्यार भरा नमस्कार, और कोई भी सॉन्ग जो है वो आप अपनी पसंद का प्ले कर दीजिए। ओम बगेरा लिखते हैं, नमस्कार गांव बांडीवाला फलजिका पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। और इन्होंने फरमाइश की है क्रोधी फिल्म के गीत की। अजीज अहमद लिखते हैं, ग्राम पोस्ट तिहार यूपी 34, एक सुखमय खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या ना करें। और इन्होंने आज मेरी पसंद का गाना सुना दीजिए, जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है। ज़रूर थोड़ी देर में सुनेंगे आप ये गीत। और अगला गीत की फरमाइश की है संजय ढींगिया ने, बागपत उत्तर प्रदेश से। नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन, गीत की इन्होंने फरमाइश की है। निसार अली जी लिखते हैं, प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार, किसी भी गीत में के बाद मेरा ये मेल शामिल कर लीजिएगा और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए। घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा लिखते हैं, हॉटमेल आदरणीय प्रसारक जी, सप्रेम नमस्कार, किसी भी गीत में मेरा ये मेल शामिल कर लीजिए। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा को ये गीत सुनाना चाहते हैं। राजकुमार जी लिखते हैं, गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी। सदानंद मंदुरकर प्रसारक जी, सेवा में नमस्कार, फिल्म आंखें से गाना सुनवा दीजिए। और अब हम थोड़ा सा लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडलेक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहतर महत्वपूर्ण है और इस संवाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व किसान, गरीब, महिला और युवाओं को न्याय दिलाने वाला नेतृत्व है। अठावले ने दोहरिया के सरकार पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और कहा कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से पूर्वांचल के महत्वपूर्ण मऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और फोर लेन निर्माण परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये उपलब्धि पूर्वांचल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मंत्री शर्मा ने इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतार के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस मार्ग को फोर लेन बनाने के लिए यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी और यात्रा समय में कमी आएगी तथा सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। कक्षा 12 की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारित घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में एक विकेट खोकर 36 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना ठेडिये मारा, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: बजकर 10 मिनट और 1 सेकंड और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है। मैं हूं आपके साथ समरीन और इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो अनोखे फैक्ट्स जो आपको चौंका देते हैं। आज हम बात करेंगे उन दुश्मनों की जो ना बंदूक से चलाता है और ना कोई धमाका करता है लेकिन हर साल करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर ज़रूर डालता है। ये दुश्मन हमारे घरों में है, हमारी सांसों में है, हमारे सड़क पर है, हमारे खाने में है, पानी में है और दुख की बात यह है कि अब हमने बहुत आसानी से इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रदूषण की। अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आज का हमारा ये टॉपिक जिसे पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन पोल्यूशन पर हम वही पुरानी बातें नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि धरती को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे धरती तो ख़त्म हो ही रही है, साथ ही साथ हम भी ख़त्म हो रहे हैं। क्या हैं वो फैक्ट्स और क्या हैं वो हैरान कर देने वाली बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं एक म्यूजिकल सफ़र पर।
1: मुझको जब

3:17 आज हम बात कर रहे हैं आपसे सतरंगी दुनिया में पॉल्यूशन के बारे में और उसके फैक्ट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो आप क्या आपको ये पता है कि अभी रिसेंट जो सर्वे हुआ है उसमें अगर आप बगैर मास्क के रहते हैं और नॉर्मल हवा में सांस ले रहे हैं, तो एक औसत इंसान लगभग 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हर हफ्ते निकल सकता है और साल भर में ये इकट्ठा होते होते एक एटीएम के बराबर की प्लास्टिक जो है वो आपके अंदर आ जाती है। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे पीने के पानी में, समुद्र में, खाने में, हवा में, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जा रही होती है। सोचिए, ये प्लास्टिक हम फेंक देते हैं लेकिन उसका हिस्सा पलट कर किसी न किसी शक्ल में हमारे जिस्म में आ रहा होता है। यहाँ तक कि हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी इस पॉल्यूशन से नहीं बच सका है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को माउंट एवरेस्ट की बर्फ में भी माइक्रोप्लास्टिक मिली है। धरती की सबसे ऊंची चोटी जहाँ पहुँचना इंसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, वहाँ भी प्रदूषण पहुँच चुका है। तो इसका मतलब अब ये है कि शायद ही पृथ्वी का कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं पहुँचा होगा, और ये सब हम इंसानों की देन है। प्रकृति हमें बदले में स्वच्छ हवा, साफ जमीन, अच्छा खाना सब कुछ देती है, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं? और सोचिए,

जो आप करते हैं वो पलट कर आता है। आज की डेट में आपके पास कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया है, ना खाना, ना हवा, ना पानी। मेरे ख्याल से धूप को छोड़ दें तो शायद शुद्धता हर चीज़ से ख़त्म हो चुकी है। खैर, ये बातें जागरूकता के लिए हैं कि आप सोचें, समझें और प्लास्टिक के यूज़ को अपनी ज़िंदगी में कम करें। लेकिन इन भारी भारी बातों के साथ म्यूज़िकल सफ़र भी चलना चाहिए। तो एक बेहतरीन सा गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बजकर 30 मिनट 54 सेकंड सतरंगी दुनिया सुन रहे हैं आप समरीन के साथ और बात हो रही है आज सतरंगी दुनिया में पोल्यूशन की, एक ऐसी समस्या जो आज के वक्त में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई है और हमने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई अब ये है और इसके रेपरकेशंस जो है वो बुरी तरीके से हम फेस कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से आपके फेफड़े जो हैं वो खराब होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फेफड़े नहीं जाते, शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से आपकी याददाश्त, आपकी एकाग्रता, आपका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना तो ये भी है कि इससे आपको डिमनेशिया या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं, यानी कि अब सिर्फ खराब हवा में सांस लेने से आपके लंग्स पर असर नहीं पड़ रहा बल्कि आप जो मेंटल फॉग, मेमोरी लॉस, फोकस ना कर पाना, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, ये पोल्यूशन का हिस्सा है। तो इसका समाधान ये है कि प्लास्टिक से अपनी जिंदगी को ना कहिए। और आपको पता है कि हम जब बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ गाड़ियों के जरिए जो धुआं निकल रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है, जी नहीं, जो टायर सड़क पर घिसते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक भी, वो माइक्रो रबर भी हवा में होती है जिसे हम देख तो नहीं पाते लेकिन वो हमारी सेहत को डेफिनेटली डैमेज कर रही है। बातें ऐसे ही आपसे सतरंगी दुनिया में होती रहेंगी, मेरा काम है आपको बताना, जागरूक करना और आपका काम यह है कि आप अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे से चेंजेस लाएं जिससे जिंदगी आसान हो, बेहतर हो और आगे आने वाली जनरेशन को हम एक बेहतर भविष्य देकर जाएं। इन सब बातों के साथ एक बेहतरीन सा रोमांटिक गाना मैं आपको पेश कर रही हूँ, सुने से

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सतरंगी दुनिया में आज बात हो रही है प्रदूषण की, और प्रदूषण न सिर्फ हवा, धरती, खाने में और हर जगह पहुंच चुका है, बल्कि हमारी समुद्र में, जिसे बहुत विशाल कहा जाता है, वहां तक भी पहुंच चुका है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है और इस प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें मछलियां भोजन समझ कर निकल लेती हैं और फिर वो मछलियां हमारी थाली में पहुंचती हैं। यानी समुद्र का कचरा एक लंबी यात्रा करके फिर हमारे खाने का ही हिस्सा बन जाता है। क्या आपको पता है कि समुद्र में ऐसे 4 एरिया डेवलप हो गए हैं जो भारत से बड़े बड़े हैं, और उनका जो घनत्व है, जो उनका एरिया है, वो किसी देश के बराबर हो गया है। और वहाँ पर ऐसे 4 एरिया जिसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक आपको नज़र आएगा चारों तरफ। आप सोचिए ये बीमारी किस कदर की फैल गई है हमारे बीच। और वहीं अगर हम पेड़ों की बात करें तो हमारी जो ऑक्सीजन का स्रोत है पेड़, उनके कटने की वजह से पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि दुनिया भर में हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल ख़त्म हो रहे हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वो हमारे धरती के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। जब जंगल कटते हैं तो केवल हरियाली नहीं जाती, बल्कि पृथ्वी की जो नेचुरल सफाई की व्यवस्था है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो धीरे धीरे हम किस गर्क में जा रहे हैं, अपनी आधुनिक जिंदगी जिसे हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हम प्लास्टिक को रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, जब जिंदगी में प्लास्टिक नहीं थी तो भी तो हम थे, हमारा अस्तित्व था, लेकिन आज प्लास्टिक ही हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर रही है। हमारे लिए अब एज ए ह्यूमन रेस बहुत मुश्किल होता जा रहा है आगे आने वाला वक्त, और आगे अगर हमने अभी अपनों में ये अवेयरनेस नहीं फैलाई तो आगे आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं कि जब बहुत मुश्किलें हों तो कुछ ना कुछ ऐसे ज़रिए होते हैं जो उसे आसान कर देते हैं, और उसी ज़रियों में से एक ज़रिया है म्यूज़िक का। तो इतनी हैवी हैवी बातों के बाद सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन सा ट्रैक 1942 लव स्टोरी से, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आपकी रेडियो सेट पर ये रहा।

तो दोस्तों 3:52 और 34 सेकंड, इसी के साथ इस प्रोग्राम से मैं लेती हूँ इजाजत। लेकिन आज के जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। पोल्यूशन भविष्य की समस्या नहीं है, फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी आज की सच्चाई है। हम जो हवा ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूटेड है। अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। एक पेड़ लगाने से, प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाने से, पानी बचाने से और एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझने से। इसी सोच के साथ आपसे मैं लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, होंगी आपसे बातचीत, इस उम्मीद के साथ कि आप खुद का भी ख्याल रखेंगे और अपने का भी ख्याल रखेंगे। मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मुलाकात होगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं एक जाते जाते एक प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है रते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से ये गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा की शुचिता निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ट्रेन गोरखपुर से 8, 9 और 10 जून 2026 को दोपहर 12:45 पर रवाना होगी और लखनऊ जंक्शन पर शाम 5:45 पर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से दोपहर 12:45 पर रवाना होकर शाम 6:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ये ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित होंगी, जिससे अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब यारी।

0: शहर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
1: करियर पर है ध्यान,
0: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
1: पॉजिटिव है फैशन,
0: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
0: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
0: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
1: ओनली ऑन यूथ वेव,
0: यूथ की बात यूथ के साथ,
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
0: धड़कन लखनऊ की।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जी घड़ी में ठीक 4:05 हो चुके हैं और जी बात करते करते 6 भी हो रहे हैं और ऐसे ही मिनट गुजरते जाएंगे। रहूंगा आपके साथ रात 8 तक। सर्वेश आज आपके साथ, अभी वक्त है प्रोग्राम यूथ वेव का, उसके बाद FM टॉप 10 और शाम यूथ के बाद हेलो FM तक आपका और हमारा साथ रहेगा। तो अभी की जो संडे का वक्त होता है, संडे का दिन होता है और आज का जो वक्त होता है 4 का यूथ वेव में, उसमें हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं और साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं बढ़ रही हैं ना डे टू डे, हम पढ़ते हैं पेपर में और न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, उनसे कैसे आपको जागरूक किया जाए, कैसे आपको अलर्ट किया जाए, कैसे आपको सचेत किया जाए, उस बारे में हम बात करते हैं आज के अपने संडे के सेगमेंट में। तो बिल्कुल सर्वेश रहेगा आपके साथ, लेकिन और बात करूँगा कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड के बारे में। लेकिन जब बात हो ही चुकी है तो एक गाना हो जाए, उसके बाद ये सारी बातें करें तो और भी अच्छा लगेगा ना। कितने रह गया फ्रॉम द एल्बम ऑफ नीति मोहन।

या यूथ वेव सुन रहे हैं आप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर जगह हो रही है, हर जगह आप सुन रहे हैं, हर जगह उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी जो केंद्र सरकार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की शिक्षा को आधुनिक और उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको केवल AI बनाना ही नहीं बल्कि इसके सही इस्तेमाल को भी सिखाया जाएगा। AI का कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये भी सब इस आज की जो इंडस्ट्री है, जो आज की जो जॉब है उसके हिसाब से उनको ट्रेंड किया जाएगा, और इसके लिए एडवांस डिप्लोमा जो है इसकी भी कोशिश की जा रही है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन तक जो आज का स्टूडेंट्स हैं उन तक उनकी पहुंच बनाई जाए, जिससे उनको आगे चलकर AI के हिसाब से अगर वो करियर बनाना चाहते हैं ना तो उसमें उनको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। अच्छी सी बात, AI हर जगह है, आपके फ़ोन में भी है, ChatGPT, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं। तो बस आप कहते ना वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए और FM रेनबो सुनते जाइए, 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जमहूरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप और सर्वेश आज आपके साथ। और यूथ वेव प्रोग्राम में आज बात हो रही है, संडे के दिन बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड की भी हम बात करते हैं। और एआई से जुड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में एक ऐसी टेक्निक डेवलप की गई है जिससे इन फ्यूचर पॉसिबल जो पैंडमिक पैदा करने वाले वायरस से लोगों को बीमार होने से पहले ही बचाया जा सकेगा। और इस तकनीक को यूनिवर्सल वैक्सीन कहा जा रहा है। कोरोना महामारी हो या रिसेंटली इबोला वायरस का जो खतरा बना हुआ है ना, ऐसे में एआई की हेल्प से एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार की गई है जो भविष्य में फैलने वाली किसी भी वायरल डिजीज से हमें पहले ही प्रोटेक्ट करेगी, है ना। अच्छी बात। और अच्छे से गाने भी हैं आपके साथ।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा।
3: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
4: भारत सरकार का उद्यम राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। ऑपरेटर HEMM ग्रेड 3, कुल पद हैं 6। खनन मैट ग्रेड 3, कुल पद हैं 21। कनिष्ठ फोरमैन कुल 8 पद। कनिष्ठ फोरमैन इलेक्ट्रिकल कुल 3 पद। SUPT ऑपरेटर कुल 55 पद। ऑपरेटर ग्रेड 3 कुल 55 पद। SUPT फिटर कुल 12 पद। तकनीशियन फिटर ग्रेड 3 कुल 13 पद। SUPT इलेक्ट्रिकल कुल 35 पद। तकनीशियन कुल 35 पद। SUPT प्रयोगशाला कुल 6 पद। SUPT इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक कुल 10 पद। तकनीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 कुल 10 पद। पात्रता संबंधी शर्तों, वेतनमान और आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए नालको की वेबसाइट www.nalcoindia.com। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है वरिष्ठ सलाहकार आपदा डाटाबेस के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत नियम और शर्तों और नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, टर्म ऑफ रेफरेंस आदि की जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट ndma.gov.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार IT की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thsti.res.in।
3: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: रात के खामोश पहर में

0: जान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की आप सुन रहे हैं और यूथ फेव प्रोग्राम में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, साथ ही साथ बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की। और साइबर फ्रॉड की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं जानकारी ना होने की वजह से, या कहते ना कि बहुत ज़्यादा अलर्ट ना होने की वजह से हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। एक ऐसी ही घटना भी सुनने में आई है, पढ़ने में आई है कि हल्द्वानी में सोशल मीडिया का यूज़ एक महिला कर रही थी और उनसे कहा गया कि आप एक टास्क पूरा कीजिए, और कुछ पैसों के लालच को करते करते उन्होंने पूरे टास्क करती रही और फिर उनसे कहा गया कि एक लिंक पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही उन्होंने एक लिंक पर क्लिक किया, उनके अकाउंट से अराउंड 16 लाख रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो गए। तो बी अलर्ट, बहुत ही सतर्क रहिए। और सोशल मीडिया, ये भी सच है कि हम उससे दूर नहीं हो सकते, आज की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिए। कोई भी OTP पूछे बिल्कुल मत बताइए। कोई भी OTP आपको भेजता है तो बिल्कुल भी मत बताइए। और जो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं, ऐसा कुछ भी कोई टेक्निकल टर्म नहीं होता है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है, फिर कैसा पछताना है ना।
4: What?

4:37 का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हैं यूथ वे, और एआई की बात कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी की भी बात हो रही है और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से आपको कैसे बचाया जाए इस बारे में भी आज की यूथ वे में बात हो रही है। हमेशा संडे को इसी बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। साइबर डेकिंग का नाम आपने सुना है? सुना है क्या? नहीं सुना? चलिए मेल करके बताइए fmakashwani@gmail.com पर। और कैलाश खेर साहब आ गए हैं कि ओ सिकंदर, उसके बाद बताऊंगा साइबर डेकिंग क्या होती है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आश की जगावत
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: एक 4:46 का वक्त हो गया है भाई और हमने पूछा था आपसे साइबर डेकिंग के बारे में लेकिन भाई शायद आपको नहीं पता है इसलिए मेल नहीं है लेकिन मोनू सेठ भैया का मेल आ गया है कह रहे हैं सर्वेश भैया जी नमस्कार हमें उम्मीद थी कि आज आ पाएंगे तो हम बिल्कुल आज आए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको रूबरू कराने के लिए ही आए हैं तो चलिए साइबर डेकिंग के बारे में आपको बता दें AI के इस युग में कंप्यूटर फ़ोन से लेकर एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन सभी में इसका यूज हो रहा है ना AI का मकसद ऑटोमेशन चैट बॉट से है वहीं हमारे यूथ में एक वर्ग ऐसा भी है जो AI से अलग दिशा में जा रहा है और इस नए ट्रेंड को साइबर डेकिंग कहा जा रहा है इसमें जो हमारा यूथ है वो खुद के कंप्यूटर या डिवाइसेस तैयार करता है और जो बेसिक फीचर्स और ऑफलाइन भी काम करने में काबिल होता है मतलब उसमें ये टैलेंट होता है जो डिवाइस तैयार करते हैं उसका हम यूज़ ऑफलाइन भी कर सकते हैं है ना ये अच्छी सी बात तो बस आप अच्छी अच्छी बातें सुनते रहिए एफएम रेनबो लखनऊ पर धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप सर्वेश आज आपके साथ रहूँगा रात 8 बजे तक याद रखिएगा 5 बजे विशेष कार्यक्रम के बाद प्रोग्राम लेकर आऊँगा FM Top 10 6 बजे शाम अवध और उसके बाद हेलो FM सीधे जुड़ते हैं जिस प्रोग्राम में आप हमसे फिलहाल सुनते रहिए यूथ वेव सर्वेश के साथ

जी हाँ, घड़ी में 4:55 का वक्त हो चुका है और अब आपसे यूथ व्यूफ से अनुमति लेने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते बस इतना कहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट के साथ ही इसके रिस्क फैक्टर जो है ना, जहाँ रिस्क की बात आती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो इसके जो रिस्क फैक्टर की भी चर्चा है वो पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिकी एआई एंड रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक पीबीसी की ओर से एक बयान आया है कि एआई के डेवलपमेंट पर कुछ कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स एआई के लिए पॉज बटन होना बहुत ज़रूरी है। सुनते रहे आप धड़कन लखनऊ की। मिलता हूँ समाचारों और विशेष कार्यक्रम के उस पार, प्रोग्राम FM Top 10 में।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस संवाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कानपुर देहात में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रबुद्ध वर्ग संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया और संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में आयोजित जनता दरबार में ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसंवाद में अनुप्रिया पटेल के समक्ष ग्रामीण विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रकरण प्रस्तुत हुए और निपुण भारत मिशन के माध्यम से कक्षा 1 से 3 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के बाद अब प्रदेश सरकार इसकी पहुंच कक्षा 5 तक बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन विषयों के लिए एक नए अधिगम लक्ष्य और दक्षताएँ निर्धारित की जा रही हैं। निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार इन दक्षताओं और लक्ष्यों को 20 जून तक अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हाल ही में यह कार्ययोजना अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए
2: जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के बीच

0: 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
1: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस स्कीम के लाभों को पहुंचा सके। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक EMI होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने IEC एक्टिविटीज का जागरूकता का प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीजें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाए कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। साथ ही हम निरंतर जो हमारे वेंडर्स हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं, बैंक्स के साथ बैठक करते रहते हैं ताकि जो भी समस्याएं विभिन्न स्तरों पे आ रही हैं, अलग अलग जगह पे आ रही हैं, उन समस्याओं का समय से हम समाधान करा।
0: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
1: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम। और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
1: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है जो कि हमारा PM सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने PM कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा।
0: आपने PM कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो लाभान्वित हो।
1: PM कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उसमें से जो UP नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है C1। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम PM कुसुम C1 कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान है।
0: जी, शहरों से लेकर गांवों तक सोलर सिटी बनाई जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दे?
1: जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उस भूमिका को निभाने के लिए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। जैसे कि रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें तो रूफटॉप सोलर में एक फायदा ये भी होता है कि जब हम छतों पर लगा रहे हैं सोलर पैनल तो जैसे यूपी की हम बात करें 1900 मेगावाट सोलर पैनल अभी तक उनकी कैपेसिटी छतों पर लगी घरों पर, तो इसी को अगर हम बड़े सोलर पार्क में लगा रहे होते तो करीब 10,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता हो। तो न केवल हम इसमें सोलर प्रोडक्शन भी यूज कर रहे हैं बल्कि हम लैंड भी बचा रहे हैं जिसको हम फर्दर यूज करके या तो हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर और बाकी चीजों में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक अभी नई टेक्नोलॉजी जो है एग्री वोल्टेक्स जिसे बोलते हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं पायलट बेसिस पे, तो उससे हमें ये मॉडल डेवलप करने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से किसान अपनी कृषि के साथ साथ में सोलर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे नई नई टेक्नोलॉजीज को भी हम डेवलप कर रहे हैं जो अभी तक वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज है उनको यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाए जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकें।
0: जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र

0: में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है, उनसे आपकी क्या अपील होगी?
1: मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया प्रतिदिन करोड़ों रुपए के वर्थ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी ज़रूर इसको अपनाएं। पिछले कुछ महीनों में हमारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को, देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए।
0: जी निश्चित रूप से, जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा की महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 5:13 का वक्त हो चुका है और ये वक्त होता है FM टॉप 10 का। कौन से 10 गाने हैं, किस मूड के हैं, ये हम लेकर आते हैं। और आज जो हम 10 गाने लेकर आए हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और वो 10 गाने हम आपको सुनवाएंगे, 10 से लेकर चलेंगे और पहुंचेंगे नंबर 1 तक। तो 10वां गाना कौन सा है भाई? मातृभूमि मूवी के बारे में आपने सुना? नहीं सुना? सलमान खान साहब की फिल्म आने वाली है और कब आएगी इसकी रिलीज डेट जो है ना, बार बार अनाउंस होती है और बार बार बदल जाती है। अब जो नई रिलीज डेट निकल कर आ रही है वो 14 अगस्त 2026 है, लेकिन पिछले हफ्ते बकरीद के दिन इसका गाना रिलीज़ किया गया है। और इस गाने में सलमान खान साहब और साथ ही साथ चित्रांगदा बहुत ही अच्छी नज़र आ रही हैं, और आपस की जो ट्यूनिंग है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है। और इस गाने के बोल हैं मैं हूँ, लिरिक्स लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और गाया है इसे श्रेया घोषाल और अयान लाल ने। तो चलिए सुनते हैं गाना नंबर 10।

जी हाँ, ये गाना आपने सुना सॉन्ग नंबर 10, और बात कर लेते हैं सॉन्ग नंबर 9 की। करीब 1.5 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं कंगना रनौत, और इनकी फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, जो रिलीज होगी 12 जून को। उसी फिल्म से ये गाना है नब्ज नब्ज, और ये फिल्म जो है 2008 के जो मुंबई अटैक्स की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है, और इसमें उन बहादुर नर्सों की कहानी दिखाई गई है। जी हाँ, तो इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल ने, और लिरिक्स है मनोज तापड़िया के, म्यूजिक अमन पंत का, और इस गाने में आपको जी हाँ बिल्कुल कंगना रनौत नजर आएंगी। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, सॉन्ग नंबर 9।

भाई अब चलते हैं सॉन्ग नंबर 8 की तरफ, और ये गाना हमने लिया है फिल्म कौन सी, वरुण धवन साहब की फिल्म रिलीज हो चुकी है साहब, कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं, है जवानी तो इश्क होना ही है, ये बात सही है या गलत ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन जो हमने गाना लिया है सॉन्ग नंबर 8, उस गाने को वाओ सॉन्ग के तौर पर जाना जा रहा है, और इसके गाने, इस फिल्म के गाने तहलका मचा रहे हैं, तो जल्दी से गाना सुनवा देते हैं। इसे लिखा है रोनी अजनेल ने, और हार्डी संधू और किरण बाजवा की आवाज आपको इस गाने में सुनने को मिलेगी। जबरदस्त म्यूजिक और जबरदस्त सॉन्ग सुन रहे हैं आप FM Top 10 में सर्वेश के साथ।

आज बजकर 24 मिनट का वक्त और आ चुके हैं हम सॉन्ग नंबर 7 पर, जो है फिल्म चांद मेरा दिल। और ये गाना काफी टाइम से बहुत ट्रेंड कर रहा है और गाने के बोल हैं खासियत। गाए हैं राघव चैतन्य और जोनिता ने, और इस गाने को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, म्यूजिक है सचिन जिगर का। और इस गाने को अगर आप देखेंगे तो आपको लक्ष्य और अनन्या पांडे इस गाने में नजर आएंगे। सुनते रहिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड।

आज बजकर 31 मिनट का वक्त और एफएम टॉप 10 सुन रहे हैं आप। सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ रहूंगा रात 8 बजे तक। ये इसलिए बता देता हूं कि आप संडे के दिन सुनते रहिए और हमारे साथ ही रहिए, धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए। 6 बजे प्रोग्राम शाम में और 7 बजे हेलो एफएम बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। और अभी आप सुन रहे हैं टॉप 10 गानों का तड़का। 5 गाने हमने आपको सुनवा दिए और अब बारी है सॉन्ग नंबर किसकी, 5 की। और ये गाना है फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, हम भी वापस आते हैं और आपसे मिलते हैं, प्रोग्राम्स अलग हो जाते हैं। ये फिल्म रिलीज होगी 12 जून को और ये जो गाना मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ उस गाने के बोल है मस्कारा, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। और इसमें आपको दिलजीत दोसांझ साहब दिखेंगे, वेदांग रैना और शर्वरी भी दिखेंगी। उस फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली साहब ने, म्यूजिक वन एंड ओनली एआर रहमान साहब। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को। और इस गाने को गाया किसने है, नीलांजना घोष और वेदांग रैना की भी आवाज आपको इसमें सुनने को मिलेगी।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास
5: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ओ दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर
2: Only 100.7 FM Rainbow.
4: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: जी हाँ बिल्कुल, बोरियत को करिए गॉन और सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 FM लखनऊ, धड़कन लखनऊ की। जिस पे चल रहा है प्रोग्राम एफएम टॉप 10, सर्वेश आज आपके साथ और बैक टू बैक आपको टॉप 10 गाने सुनवा रहा हूँ। और अब जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ उस गाने के बोल हैं रई रई रारा रारा। जी हाँ, और ये फिल्म है पेद्दी। ये बड़ी आजकल अच्छी चल रही है सिनेमाघरों में और साउथ सुपरस्टार रामचरण जो है ना, उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जबरदस्त धमाल मचाए हुए है और इसकी वजह से जो हमारे वरुण धवन साहब है ना, उनकी फिल्म जो है ना है जवानी तो इश्क होना ही है, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन अभी बात करते हैं इस गाने की, रई रई रारा रारा। और ये गाना लिखा है रकीब आलम साहब ने और म्यूज़िक ए आर रहमान साहब का है और गाया है नक्श अजीज साहब ने। सुनते हैं ये गाना, खूबसूरत सा रई रई रारा रारा। और थिरकने का मन है, थोड़ा सा झूमने का मन है तो बिल्कुल आप झूम भी सकते हैं।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान. चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल. ये लखनऊ है जनाब.
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें. चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब.
5: समझे जनाब अली.
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो. लखनऊ की
3: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
6: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
6: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं.
3: लखनऊ की
6: 100.7 FM रेनबो.
7: हेलो FM,
8: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
9: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर.
10: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
7: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
11: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
12: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
11: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा.
13: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
14: पुरानी जींस और गिटार,
13: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
14: है जगह,
13: रात को फुर्सत के वो पल,
15: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
13: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7.

0: FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: बिल्कुल धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप FM टॉप 10 में। अब जो गाने में प्ले करूंगा ना वो टॉप 3 सॉन्ग्स होंगे और अगर अगर आपकी डिमांड हुई तो और भी गाने सुनवा सकता हूं, लेकिन लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है गाना नंबर 3। वो गाना आपको याद है वेलकम मूवी का, एक ऊंचा लंबा कद। उस गाने को थोड़ा सा कहते ना रिक्रिएट किया गया है और वेलकम टू द जंगल ये मूवी जो है ना आने वाली है। और इस मूवी में कौन होगा, वन एंड ओनली अक्षय कुमार साहब तो होंगे ही होंगे। 26 जून को ये मूवी आएगी। उस दौर में आनंद राज आनंद साहब ने इस गाने को एक आइकॉनिक सॉन्ग बना दिया था और इसके लिरिक्स थोड़े बहुत बदले गए हैं जिसे लिखा है मेघा गिल ने। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडेज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, बहुत सारे लंबे लंबे नाम इसमें लिखे हुए हैं। चलिए बढ़िया सा गाना सुना दूँ आपको इसी का, जो नया वाला है, ऊँचा लंबा कद फॉरएवर इसको नाम दिया गया है। तो जल्दी से सुनते हैं इस गाने को और उसके बाद जो दो सॉन्ग्स बचेंगे वो भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन अभी का जो वक्त है इस गाने को सुनने का है, ऊंचा लंबा कद। सुनेंगे ना, ऊंचा लंबा कद है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मजा तो तब है कि आप इस गाने को सुन के डांस करें।

0: We miss you, Katrina.
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: तो 10 गानों का सफर जो है आ चुका है सॉन्ग नंबर 2 तक। 5:51 का वक्त हो चुका है और जल्दी से बात कर लेते हैं सॉन्ग नंबर 2 की। जी हाँ, आपका इंतजार मैं समझ सकता हूँ कि टॉप पोजीशन पे कौन सा गाना है। तो अभी बात करते हैं सॉन्ग नंबर 2 की, माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जो रिलीज होगी 19 जून को। और इसमें आपको दिखेंगे कीर्ति सेनन, शाहिद कपूर। फिलहाल इस गाने की बात करें, जिस गाने के बोल हैं माशूका, इस गाने को गाया है महमूद राघव ने। और इस फिल्म में या इस गाने की अगर अभी हम बात करें तो इस गाने में म्यूजिक दिया है प्रीतम दा ने। सुने ना, बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है प्रीतम दा का संगीत सुनने को मिलेगा। खैर, गाना बहुत अच्छा है और बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे सॉन्ग नंबर 1 की तरफ। फिलहाल के लिए माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2।

और वही घड़ी में 5:56 का वक्त हो चुका है और अब वक्त आ चुका है टॉप सॉन्ग को सुनवाने का। याद है ना वो पुराना गाना चुनरी चुनरी आ जाना चुनू तेरी चुनरी सनम, उसी गाने को दोबारा लेकर आ गए हैं। है जवानी तो इश्क होना ही फिल्म में रिक्रिएशन है। जी हाँ, वरुण धवन साहब और उनके फादर डेविड धवन साहब की ये फिल्म अभी चल रही है सिनेमा हॉल्स में और जल्दी से गाना सुन लेते हैं चुनरी चुनरी।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड

के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस संवाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसान, गरीब, महिला और युवाओं को न्याय देने वाला नेतृत्व है। अठावले ने दोहराया कि सरकार पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से पूर्वांचल के महत्वपूर्ण मऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और 4 लेन निर्माण परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये उपलब्धि पूर्वांचल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मंत्री शर्मा ने इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के 4 लेन बनने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी तथा सड़क सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम अवध।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

जी हाँ, घड़ी में 6:00 बज चुके हैं, 6:04 हो चुके हैं और शाम वक्त प्रोग्राम बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। और जल्दी से आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली की ओर से आज नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। आखिरी विरासत नाटक का नाम है और इसकी प्रस्तुति शाम 7 बजे से कला मंडपम कैसरबाग लखनऊ में आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो भाई घड़ी में 6:00 बज चुके हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना प्लान कर लीजिए क्योंकि ये नाटक जो है 7 बजे शुरू हो जाएगा। और खूबसूरत सा गाना दे रहा हूँ आपको, इस पर आप डांस भी कर सकते हैं। अवध की शाम है, हालांकि गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन कोई बात नहीं, शाम होते होते थोड़ी सी राहत तो हो ही जाती है। बहुत सारी बातें हैं लखनऊ शहर के बारे में आपको बताने के लिए, और आपके पास भी कुछ खास हो तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ पर। फिलहाल सुनते रहिए शाम अवध सर्वेश के साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: छह बजकर 10 मिनट का वक्त और बीच बीच में आंधी बारिश का दौर चालू।

होता है, और लेकिन एक बार फिर से गर्मी अपने पूरे चरम पर आ चुकी है भाई। दिन में बहुत गर्म होने लगा है एक बार फिर से, और अगले 4-5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो अपना पूरा ख्याल रखें, अपने को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, पना पीते रहें, और बेल का शरबत मिल जाए तो वो भी पीते रहें। कहने का मतलब यह है कि पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना हो। और खूबसूरत से गाने FM रेनबो पर आप सुनते रहें, सुन रहे हैं आप शामे अवध सर्वेश के साथ। बहुत सारी बातें और भी सुनाऊंगा, लेकिन एक गाना आपके लिए लगा दिया है मैंने, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

6:20 का वक्त हो चुका है और नगर निगम लखनऊ आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा लेकर आया है। जो भी अगर आपकी समस्याएं हैं उनको बहुत जल्दी सुना जाएगा। कैसे सुना जाएगा बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन इस गाने के बाद।

और घड़ी में 6:27 का वक्त हो चुका है। शामी हवा चल रहा है। सर्वेश आज आपके साथ और मैं बात कर रहा था लखनऊ नगर निगम से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। अगर आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम है जो कि नगर निगम लखनऊ से जुड़ी हुई है, तो अब नगर निगम के अधिकारी चौपाल लगाकर आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसकी शुरुआत 8 जून यानी कल से होगी। प्रतिदिन 2 वार्डों में चौपाल लगेगी जिसका समय शाम 4 से 6 बजे का होगा। तो भाई अगर आपके वार्ड में सफाई की कोई प्रॉब्लम है या सीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चौपाल में जाइए और सीधे ऑफिसर से अपनी बात कीजिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

घड़ी में 6:31 हो चुके हैं और शाम वक्त का जो सिलसिला है, प्रोग्राम का सिलसिला है, वो लगातार चल रहा है और खूबसूरत गाने भी आप सुन रहे हैं। और गानों के साथ इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारियों का भंडार। तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है, अगली जो अपडेट है, वो ये है कि KGMU जिसको हम बोलते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अत्याधुनिक डेंटल उपचार और उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं पेशेंट्स को मिलेंगी। साथ ही साथ रिसर्च के लिए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको भी मॉडर्न और हाईटेक फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी, है ना। और खूबसूरत सा गाना ये आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, अदनान सामी साहब याद आए आपको? नहीं याद आए, आप याद आएंगे।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: हेलो FM,
4: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
5: What is mobile number? What is your style number?
6: What is your style number? करो क्या dial number?
7: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
3: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: और आने वाले 21 जून को हम सभी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। इसके लिए 15 से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह भी आयोजित किया जा रहा है। जो भी शहर की बहुत सारी रेजिडेंट सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी आयोजित किया जाएगा। और आप अगर अभी तक योग नहीं करते हैं, अगर करते हैं क्या, अगर करते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और करने के बाद देखिए आपको कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर महसूस होगा। और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: दिल दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: जी हाँ, कुछ भी नहीं है हमारे आगे, यानी कि FM Rainbow लखनऊ के आगे. बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलता है. खूबसूरत सा म्यूजिक तो आप सुनते ही हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं. और तो अभी की जो ट्रैफिक अपडेट यही है कि संडे का दिन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा आयोजन भी नहीं है, आराम से आप निकल सकते हैं. लेकिन एक आपको मैं अलर्ट ज़रूर दूंगा कि कल अगर आप कहीं निकल रहे हैं या 9-10 तारीख को भी कहीं निकलना चाह रहे हैं शहर में, तो ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है. बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं आपको शहर में थोड़ा बहुत जाम देखने को मिल सकता है. तो जब भी निकलें थोड़ा सा अलर्ट होकर निकलें, मैप पर देख लें कि जहां आप जाने वाले हैं वहां पर कोई

ट्रैफिक जैम की स्थिति तो नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा रुक जाए, और उसके बाद जब होता ना कि एग्ज़ाम चल रहा होता है उस समय उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम से बच्चे छूटते हैं ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
2: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
2: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।

0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: हेलो FM,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? करो क्या dial number?
4: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: घड़ी में 6:52 हो चुके हैं और ये वक्त होता है कि आपको कोई एक और अपडेट दे दी जाए। तो अगली अपडेट ये है कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय 12 नए सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रहा है और जिसमें प्रोफेशनल्स रील्स और शॉर्ट वीडियो मेकिंग जैसे कोर्स भी हैं। म्यूजिक कंपोजिशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, योगा और पाली और बौद्ध भाषा के भी 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर आपके पास वक्त है और इस समर सीज़न जो चल रहा है, समर कैंप सीज़न का, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय।

तो भाई लगभग 7 बजने वाले हैं, 6:56 का वक्त हो चुका है। बिल्कुल आप भी तैयार रहिए और फोन नंबर्स मिलाने के लिए। समाचारों के बाद प्रोग्राम लेकर आऊंगा हेलो एफएम। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए प्रोग्राम शाम में। वैसे सुन रहे हैं आप सर्वेश जायसवाल को, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसान, गरीब, महिला और युवाओं को न्याय देने वाला है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष में जन भागीदारी से स्वच्छता की तस्वीर बदली है। आज देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और करोड़ों परिवारों, विशेषकर माताओं बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के प्रयासों से पूर्वांचल के महत्वपूर्ण मऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ी

और फोर लेन निर्माण परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है। कानपुर देहात में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रबुद्ध वर्ग संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में आयोजित जनता दरबार में ग्राम पंचायत नोहा के लखौली गाँव में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। देवरिया में आज केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा खनुआ नदी में वृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण और नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा आज विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में राष्ट्रव्यापी फिटनेस पहल संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले दो दिनों में तापमान में वृद्धि बनी रहेगी। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो FM,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर,
3: व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर.
4: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
5: जी हाँ, हेलो FM प्रोग्राम शुरू हो चुका है. 7 भी बज चुके हैं, 7:03 हो चुके हैं और कॉल्स आने का सिलसिला भी लग चुका है और कॉल पे मेरी भी बात भी हुई थी. देखते हैं कौन है लाइन पर. हेलो. ओहो हो, इंतजार ही नहीं हुआ. खैर, उन्होंने गाना अपना बता दिया था तो वो गाना हम प्ले करते हैं. प्रीति का फोन आया था बिजनौर लखनऊ से और गाने के बोल हैं तेरे नाम, टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तेरे नाम. तो गाना सुनते हैं पहले, उसके बाद कॉल लेते हैं और देखते हैं आज किसकी किसकी किस्मत चमकने वाली है.

0: और अगर आपने भी तेरे नाम यानी हमारे नाम किया है ना अपना जीवन धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ प्रोग्राम हेलो एफएम 22 38 845 22 38 852 ये नंबर है हमारे, 29 82 377 ये नंबर भी आप ट्राई कर सकते हैं जिस नंबर पे आपकी कॉल लग जाए, जल्दी से हमसे बात कीजिए। और अभी कोई है जो हमसे बात करना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम है राम प्रसाद, जिला हरदोई से बोल रहा हूँ।
0: जिला हरदोई से आप बात कर रहे हैं और क्या करते हैं आप?
1: मैं किसान हूँ।
0: किसान है, खेती करते हैं?
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात है, आप किसानी का काम करते हैं और जो लोग किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तभी सबको अन्न प्राप्त हो पाता है ना?
1: जी।
0: और एफएम रेनबो सुनते हैं खेत में रेडियो रख के या घर पे ही सुनते हैं?
1: घर पे सुने, खेत सुने, बाजार से भी आए थे, फोन लगा तो लग गया।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: यहाँ तेरी गली में
0: जी,
1: और गाने के बोल है जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना।
0: जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना, लेकिन राम प्रसाद जी अब खत का जमाना तो गया, अब तो ये कहते हैं जाते ही जल्दी से कॉल करना।
1: गाना तो है
0: नहीं, गाना का तो अपना ही मजा है। और वो और जो खत का दौर था वो अलग ही था, जब खत पहुंचता था उसका जवाब आता था, वो एक अलग दौर था और अब एक अलग दौर है ना जी?
1: तो
0: बहुत प्यारा सा आपने गाना सुना है, इस गाने को हमने लगा दिया। किसी को नाम लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। जी
1: मैंने
0: अच्छा, सभी लोग जितने सुन रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: तो भाई आपको कहीं जाना नहीं है, ना आपको खत लिखना है, करना सिर्फ इतना है 0522 2238 45 2238 52 और 2982 3777, ये तीन नंबर से हमारे, आप तीनों ट्राई कर सकते हैं और कोई ना कोई नंबर तो लग ही जाएगा, जैसे अभी किसी का नंबर लग चुका है। देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अपना नाम बताएं सुनने वालों को।
1: जिला सीतापुर फतेहनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या बात है, बताइए आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ हमेशा की तरह, आप बताइए कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए।
0: और बताइए क्या हो रहा है आजकल?
1: आपसे बात हो रही है,
0: हमसे बात हो रही है। चलिए, आपने फोन लगाया, हमसे बात भी हो गई और हमने आपका गाना भी धीरे से लगा दिया। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: आशिक बनाया आपने,
0: आशिक बनाया आपने का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं शमा परवीन, और किसी को सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू।
1: बाबू अंसारी भाई हैं, अब मोहम्मद फैज भाई हैं, अकबर अंसारी भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, वकील अहमद मंसूरी, मोहम्मद आसिफ भाई
0: जी,
1: गुलाब साहबी, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, मिंटू तिवारी अंकल, श्री प्रकाश अंकल
0: जी,
1: और जावेद अख्तर, मोहम्मद जितने सुन रहे हैं
0: सभी को, सभी सुनने वालों को, है ना,
1: और सत्यम कुमार भाई।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शमा परवीन आपका, और ऐसे ही आप फोन करती रहती हैं, अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी हाँ, 7:15 का वक्त हो चुका है। बहुत जल्दी करिए आप, क्योंकि अभी कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आ जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपके फोन कॉल्स आते रहेंगे और हम आपसे बतियाते रहेंगे, नंबर हम बताते रहेंगे 22 38 842 22 38 852 29 82 377, और लखनऊ का कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें 0522। देखते हैं अभी लाइन पर कौन है। हेलो हेलो हेलो,
2: आवाज नहीं मिल रही क्या?
1: बिल्कुल मिल रही है, आपको आवाज आ रही है?
2: जी आ रही है।
1: और बताइए कैसी हैं आप?

0: अपना नाम बताएं पहले तो।
1: हम रीता देवी बोल रहे हैं दला गांव से, ये बनी पार्क पास पड़ता है
0: जी। और क्या करती हैं आप, मतलब आपने कानपुर के पास से कहीं हमें कॉल किया है ना?
1: कानपुर देहात में पड़ता है बनीपारा,
0: झींझा के स्टेशन है, रेलवे स्टेशन उसके पास है ना,
1: झींझा को रूरा के बीच
0: में। हाँ झींझा को रूरा के बीच में। और बताइए फिर
1: गांव घूमने के लिए एक ये जिनई मंदिर है।
0: जी जी जी,
1: मेला लगता है बाणेश्वर को।
0: चलिए पक्का पक्का इस बार आते हैं। और बताइए एफएम रेनबो वहाँ तक साफ सुनाई देता है, रेडियो पे सुनती हैं या ऐप पे सुनती हैं?
1: मोबाइल पे
0: तो बहुत बढ़िया, यानी ऐप पे सुनती हैं। तो आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: तुमसे दिल लगा लिया है प्यार,
0: दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। और किसी को सुनवाना चाहेंगी, कुछ नाम लेना चाहेंगी? डेडिकेशन जी,
1: हम अपने बहनों को गाना सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी,
1: तो हम 9 बहने हैं।
0: ओहो हो, तो सभी से बात हो जाती है पर डे? तो मतलब प्रेम मोहब्बत बना हुआ है, बड़ी अच्छी बात।

0: लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। और किसी को सुनवाना चाहेंगी, कुछ नाम लेना चाहेंगी डेडिकेशन? जी
1: हम अपने बहनों को गाना सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी
1: तो हम 9 बहने हैं।
0: ओहो हो, तो सभी से बात हो जाती है पर डे? तो मतलब प्रेम मोहब्बत बना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। तो जल्दी से सभी के नाम ले लीजिए।
1: सुनीता, अनीता, रूबी
0: जी,
1: सोनी, अर्चना, वंदना, अंकिता
0: जी,
1: मेरा भाई है खेमराज
0: जी,
1: मेरा भाई है
0: जी जी जी,
1: सभी को गाना सुनाते हैं, वो भी सब लोग सुनते हैं रेडियो,
0: सब लोग सुनते हैं रेडियो, और ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात

0: व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर फूटी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
4: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय

0: प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ADP और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव JCB की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है जगह,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM।

0: लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 7:32 का वक्त और एक बार फिर से आपका हेलो एफएम प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और एक मेल भी आ चुका है हमारे पास। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग और कह रहे हैं सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और कह रहे हैं फ़ोन नहीं लगता है इसलिए ईमेल भेज रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामराज जी, आपका मेल आता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अभी हाँ नंबर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 0522 2383 2482 2852 और 2982 377 ये हमारे नंबर है। जल्दी से मिलाएं। और जब हम जब प्रादेशिक समाचार चल रहे थे ना, उसी समय किसी ने हमको ज्वाइन कर लिया है, उनसे जल्दी से बात करते हैं। हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
3: सर मैं ग्रामवा पोस्ट परचंडी कैसरगंज बहराइच से सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ।
2: सत्यम जी कैसे हैं?
3: सर मैं बहुत अच्छा हूँ।
2: और अच्छे हो गए, कॉल लग गई ना।
3: यस सर, बड़ी देर से कॉल लगा रहे थे।
2: कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
3: सर गाना तो बताऊंगा लेकिन फोन काटिएगा मत, क्योंकि मैं नाम भी लेना चाहूंगा सर।
2: फोन क्यों काट लूंगा, आपका प्रोग्राम है, आपकी आवाज गूंजेगी। जल्दी से नाम लीजिए, गाने का भी नाम लीजिए
3: जी।

0: दीवाने हूँ मैं।
1: बहुत बढ़िया गाते हैं साहब।
0: सर नाम? थैंक यू सर।
1: जल्दी से लीजिए
0: सर। आपको
1: थैंक यू
0: और सभी सुनने वालों को, और सीतापुर से हैं सिस्टर समा परवीन अंसारी, साहिबा अंसारी लखीमपुर से, और रायबरेली से रिंकी पिंकी, बाराबंकी से बाबू अंसारी फैज अंसारी, ये दोनों बाराबंकी से हैं, और उन्नाव से हैं श्री प्रकाश दादा जो कॉल करते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं।
1: जी जी जी जी जी। तो चलिए, तो उससे नाराज नहीं जिंदगी, ये सुनिए गाना मासूम फिल्म से। शुक्रिया आपका।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते।

0: 7:37 का वक्त और अभी भी आपके पास वक्त है फोन मिलाने का 0522 2485 2485 2552 2982 3770। ये नंबर आप मिलाइए और जल्दी से हमसे जुड़ जाइए। देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम तो सब जान रहे हैं, आप अपना नाम बताएं सुनने वालों को। लखीमपुर खीरी से बोल रही हैं। और क्या कर रही थी फोन लगाने से पहले? खाना बना रही थी?
1: खाना बना रहे थे सर।
0: बन गया?
1: नहीं सर।
0: अच्छा, अभी नहीं बना?
1: नहीं सर, बना रहे हैं।
0: क्या बात है, मतलब खाना बनाते बनाते आप फोन लगाती हो, फोन लग जाता है?
1: जी सर, लगता है। आज कितने हो गए?
0: अच्छा,
1: 10-12 दिन हो गए।
0: ओहो,
1: नहीं लगे।
0: चलिए और बताइए, आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: गाना कौन सा सुनना चाहेंगे
0: जी?
1: मेरी जान चली अनजानी दे घर।
0: मेरी जान चली दुश्मन के घर, फ्रॉम द मूवी सनम बेवफा। और किसको सुनाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे।
0: ओके।
1: आसिफ भाई है, मोहम्मद फैज भाई है, वकील अहमद मंसूरी भाई है, बाबू अंसारी भाई है, दत्ता भाई है, सत्यम कुमार भाई है, परवीन अंसारी अप्पी है
0: जी,
1: लता सिद्दीकी अप्पी है, महक अंसारी है, साजिया अंसारी है, रिंकी पिंकी है, निशा अंसारी है
0: जी। और कोई
1: सत्यम कुमार भाई अगर जो सुन रहे हो तो गाना प्लीज किसी दिन अपना जो पूरी आवाज में गाना सुनाए, उनकी आवाज होती
0: है। हाँ, आज मैंने सुना पहली बार।
1: सत्यम कुमार भाई और फैज भाई की
0: जी जी। देखिए आपका गाना मैंने लगा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा। ऐसे ही आप कॉल करती रहिएगा
1: जी। उठाते कहाँ हैं, कॉल हम तो करते
0: हैं। चलिए
1: 28 तारीख को बात की थी, 28 मई को।
0: नहीं, हम तो उठाते हैं, बीच में कट जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: नहीं,
0: आपका।
1: उठती नहीं है, कॉल ही नहीं उठती है।
0: देखिए आज उठ गई, आज ये बात मत कीजिए
1: जी, आज तो।

0: फोन कॉल्स का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने एफएम रेनबो लखनऊ से, और हेलो एफएम में पूरी कोशिश करते हैं, पूरी शिद्दत, पूरी लगन, पूरी कर्मठता के साथ फोन मिलाते हैं, और जिनका फोन लग जाता है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जिनका नहीं लगता है वो फिर कहते हैं मेरा फोन काट दिया जाता है। ऐसा नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। अपना नाम बताएं जल्दी से।

0: शादी।
1: वाह, मुस्कुराहट रुक नहीं रही है, खुशी झलक रही है, क्या बात है। तो बहुत दिनों बाद कॉल लगी है, तो आज बहुत दिनों बाद कौन सा गाना सुनना चाहेंगी, सुनवाना चाहेंगी? ऐसे तेरी याद आती है फ्रॉम द मूवी खलनायक, माधुरी दीक्षित है ना, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है ना, किसको
0: अरे
1: क्या कहा जाए, वो एक दौर बहुत प्यारा था जब मोहम्मद अजीज साहब गाना गाते थे, और जब वो गाते थे तो कहीं ना कहीं उस दौर में मोहम्मद रफी साहब की याद दिलाते थे। तो आज ये गाना कौन किसको सुनवाना चाहेंगी बताइए?
0: पहले तो आपको
1: थैंक यू,
0: गुलाब सिद्दीकी की साहिब अंसारी, साजी अंसारी, और मेरे दो भाई हैं मोहम्मद आतिफ अंसारी और अकबर अंसारी।
1: क्या बात है, और भी कोई है?
0: सभी को,
1: सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया निशा आपका। खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और फोन लगाते रहिए।
0: थैंक यू।
1: ओके।

0: आपको भी किसी की याद आ रही है और किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो जल्दी से कॉल लगा लीजिए। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप 100.7 एफएम रेनबो पर। सर्वेश जायसवाल है आपकी खिदमत में और करना सिर्फ आपको इतना है 22 38 845 22 38 852 29 82 377 ये नंबर्स आपको डायल करने हैं और सीधे हमसे जुड़ जाना है। 0522 लखनऊ का कोड लगा सकते हैं आप और जल्दी से कोशिश कीजिए हमसे बात कीजिए। अभी देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, अपना नाम बताएं।
1: रिंकू।
0: रिंकू जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर।
0: क्या हो रहा है और कहां से फोन किया आपने हमें?
1: नारायणपुर
0: जी, बाराबंकी से। देवा?
1: नहीं

0: मिला।
1: ओहो हो, क्या बात है। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: यही गाना हमने बताया था, मैं प्यार तुम्हें से करता
1: हूं। अरे तो आपने हमको बताया था, अभी आपको सभी लोग सुन रहे हैं, उनको भी बताइए।
0: पहली बार आपसे बात हुई है, पहली बार कॉल ही लगी।
1: अच्छा, पहली बार कॉल ही लगी है। और आप गाना सुनना चाहते हैं, मैं प्यार तुम्हें से करता हूँ, गवाही दो, है ना?
0: सभी दोस्तों से यही कहना है।
1: जी जी जी, क्या कहना है, हम नहीं सुन, क्या कहना चाहते
0: हैं? जितने लोग जानते हैं, कभी गाने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं।
1: हाँ, ये बात सही है। क्या बात कही आपने कि हम गाने के माध्यम से कहता हूँ कि भाई हम सभी से प्यार करते हैं, और क्या गवाही दें, है ना? जब ये बात हमने कह दी कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो उसमें गवाही की जरूरत कहाँ रह जाती है। एक बात बोलूँ, बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप लिंकू भाई। और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे, जल्दी से बता दें। जी, अतरौली, ये जो संडीला के पास पड़ता है।
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है।
0: और हैं
1: जी,
0: और बाकी समस्त
1: सभी सुनने वालों को, है ना?
0: अभी जो भी हमको जानते हो, जो ना जानते हो, सबके लिए।
1: अरे अब तो आपको सब जान गए, आप रेडियो पर आ गए, आप स्टार बन गए रिंकू भाई। चलिए, गाना हमने आपका लगा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: देखो कब मुलाकात हो।
1: बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बहुत जल्द होगी।
0: ठीक

0: और भैया घड़ी में ठीक 7:50 का वक्त हो चुका है। 10 मिनट का वक्त और है आपके पास कॉल लगाने के लिए, हमसे बतियाने के लिए और अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए। अभी लाइन पर कौन है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: हाँ, जख्म तो जख्म है,
0: हाँ
1: कुछ देर में भर जाएगा
0: जी।
1: जख्म तो जख्म है, कुछ देर में भर जाएगा। और लफ्ज नस्तर है, रगे जा में उतर जाएगा
0: जी।
1: रंग कच्चा है तेरे शहर वफा का जाना, गम की एक लहर चलेगी तो उतर जाएगा।
0: क्या बात
1: है, गम की एक लहर चलेगी तो उतर जाएगा।
0: और जो शिद्दत से फोन लगाएगा उसका फोन लग जाएगा,
1: लग जाएगा।
0: जावेद अख्तर भाई, आजमगढ़ से आपने फोन किया है, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जल्दी से बता दे।
1: हाँ, वो एक गाना है कि रब ने बनाया है तुझे मेरे लिए,
0: रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, ये वाला हीर रांझा फिल्म का।
1: जी जी, हीर रांझा फिल्म का।
0: क्या बात है, हमने देखिए लगा भी दिया आपके कहने पे।
1: जी जी जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत ही अच्छा लग रहा
0: जी,
1: है।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: काफी दिनों के बाद मेरी आपसे बात भी
0: जी,
1: हो रही
0: जी,
1: है।
0: जी जी, जल्दी से नाम ले लें जावेद अख्तर भाई।
1: जी, मोहम्मद फैज साहब हैं रामपुर कटरा से, रिंकी पिंकी जी हैं।
0: जी जी जी,
1: समा परवीन अंसारी जी हैं, साहिबा अंसारी जी हैं, गुलफ्ता पिंकी जी हैं।
0: जी,
1: और आपको डेडिकेट ये गाना रहेगा, बाकी जितने भी एफएम रेनबो के लिसनर हैं, श्रोता हैं,
0: सभी सभी सुनने वालों के लिए।

और हमारे पास मेल भी आ चुके हैं, अहमद नवाब का, सिमरन सौरांजलि, अशोक कुमार और मोहम्मद शादाब खान का भी मेल आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपकी कॉल लगेगी, हो सकता भी लग जाए, एक कॉल मैं और लूँगा।

0: 7:54 का वक्त और देखते हैं हमारे पास लाइन पर कौन आ चुकी हैं। हेलो।
1: हेलो जी।
0: जी अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: जी मेरा नाम गुड़िया साक्य है, मैं निघासन से हूँ।
0: निघासन लखीमपुर से आपने हमें कॉल किया है। जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: जी मुझे टक्कर मूवी का जो सॉन्ग है आंखों में बसे हो तुम।
0: आंखों में बसे हो तुम, क्या बात है, बहुत पुराना गाना आपने निकाला लेकिन जबरदस्त गाना निकाला है। और बताइए अच्छा अच्छा अच्छा और निघासन में रहती हैं और क्या करती हैं आप?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: ओके वेरी गुड।
1: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है, हाउसवाइफ। और ये जो हाउसहोल्ड वर्क्स है ना इतना आसान नहीं होता, जो लोग करते हैं ना उन्हीं वही जानते हैं। खैर और कुछ कहना चाहेंगी जल्दी से बोल दीजिए, किसी का नाम लेना चाहेंगी?
1: यही कहना चाहूंगी कि आपका एफएम रेनबो मैं 2000 से सुन रही हूँ।
0: ओहो हो, तो आप जब हमारे
1: एफएम रेनबो स्टार्ट हुआ था
0: जी
1: मैंने अपने एफएम पर इसकी प्लेट लगती थी तो मैंने अपने एफएम उसमें लगवाई थी रेडियो के अंदर।
0: अरे वाह क्या बात है, चलिए अच्छा। और कोई डेडिकेशन देना चाहेंगी? दे दीजिए।
1: मैं डेडिकेट तो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, पता नहीं वो इस टाइम गाड़ी में सुन भी रहे हैं या नहीं एफएम, तो सुनाना चाहती हूँ।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जब चाहो तुम्हें देखूं आईना
0: बना लूंगा। तो इसी गाने के साथ मुझे अनुमति दीजिए और किसी दिन किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा हेलो एफएम में आपका गाना प्ले करने की। लिमिटेशंस होती हैं, कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा गाने प्ले करूं और आपसे बात करूं। मुझे भी बात करना बहुत अच्छा लगता है। अपना पूरा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध जन एवं वरिष्ठ जन संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना सहित कई रक्षा संबंधी इकाइयों को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून को कर रहा है। ये परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1180 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अयोध्या परिक्षेत्र के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पूरे रेंज में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या परिक्षेत्र के 5 जिलों में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की ऐसी महान विभूति थीं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस, दूरदर्शिता, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण तथा सुशासन से राष्ट्र निर्माण की अमिट गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और स्थापन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। गाजीपुर के सैदपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में

0: लोगों की मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में चल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लू भी चल सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मुंतजर हैं आप और हमें भी आपका इंतजार है। मुंतजर हैं आप और हमें भी आपका इंतजार है। इतनी ही दूर हैं हम जितना सहरा से आबशार है। तराने ढूंढ लाए हैं जिनसे जिंदगी में कुछ तरन्नुम उतर आए। घड़ी में कुछ सुइयों का इशारा है और कुछ हमारे संग आबशार है।

क्या अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं सब? अच्छा, इतने हिसाब से दुनिया चलाते हैं सब, फिर इतनी मुश्किलात क्यों आतिश होती हैं हर किसी पर? भला ये कौन सी किताब से दुनिया चलाते हैं सब?

ख्यालों में उभरती हर तस्वीर पर बुरा मान जाते हैं, ये कैसे साथ देंगे जो नजीर पर बुरा मान जाते हैं। इन्हीं पर तोड़ डाली हैं सभी ख्वाबों की खिर्चियां हमने खामोश, इन्हीं पर तोड़ डाली हैं सभी ख्वाबों की खिर्चियां हमने खामोश। जब कुछ नहीं मिलता तो साथ के लोग हमारी तकदीर पर बुरा मान जाते हैं।

जलते आफताब पर नाराज रहने वालों की बात कौन सुनेगा। सबके भले की बात पर ऐतराज रखने वालों की बात कौन सुनेगा। दिलो जिगर के लहू से लिखी सतरों की वक्त करने वाले अब कहां। अब के रात चांद पर ही चराग रखने वालों की बात कौन सुनेगा।

मुझे खबर थी कि वो अपनी लियाकत के सबूत दे देगा। बात बदलेगी उससे पहले वो अपनी शराफत के सबूत दे देगा। जिक्र उसका हो और हम खामोशी धर लें, यही चाहता है वो और अपनी इस चाहत के सबूत दे देगा।

अब क्या कहें कि राहें तलाशने में जुट गए हैं हम, किसको कहें कि कहां हैं ये तलाशने में जुट गए हैं हम। गर मिले तो तफसील से सुनने का वक्त लेकर मिलना हमें। जादू है, सहर है और ये तिलस्म की परछाइयां तलाशने में जुट गए हैं हम। आबशार की महफिल यहीं तक, हमारे साथ इसे सजाने के लिए शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

0: डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दा

0: पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस ने के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी

0: अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक के बाद एक हम प्ले करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक लवर्स के सबसे अधिक बार गुनगुनाए गए गाने, कानों में धुन पड़ते ही पहचान लिए जाने वाले गाने, गाने ऐसे जिनके बोल हों या डांस सुनने वालों की यात्रा गेट्स इनटू अ मैजिकल ट्रांस, गाने जो एफएम रेनबो पर बजेंगे और कॉलर ट्यून पर सजेंगे, गर्मी के मौसम को करेंगे जरा ज्यादा ही कूल और बोरिंग शामों की स्वेल्टरिंग हीट को आप जाएंगे भूल, क्योंकि हम लेकर आ गए वो गाने जिनको सिर्फ सुनेंगे नहीं गुनगुनाएंगे डांस का महा

मुकाबला सजाएंगे और शेयर करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि अब शुरू हो गया है पॉपुलर सॉन्ग्स का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम पॉप टाइम। बिलबोर्ड हो चुके हैं दोस्त और चार्ट हुए हैं बस्ट, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 100.7 FM रेनबो पर आ गया है गाना बिल्कुल जबरदस्त।

जनाब दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि अब आने वाली है वो धुन जिसमें आपको रहमान साहब की धुन में मोहित चौहान की आवाज का तिलस्मी असर सुनने को मिलेगा, और सुनने को मिलेंगे कबीर। हमन तो इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या, हमारा यार है हमें, हमन दुनिया से यारी क्या। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्शियंस कीपर की कही पंक्तियों वाला गाना कबीर साहब का इश्क मस्ताना।

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: संडे की रात है, कल मंडे की बात है, पर आज की शाम सिर्फ और सिर्फ रफ्तार का साथ है। वीकेंड का एंड बोरिंग हो, यह सबसे बड़ा क्राइम। वॉल्यूम फुल कर लो क्योंकि आ गया है पॉप टाइम। संडे की इस आखिरी पारी में कोई स्लो गाना बजबे नहीं करेगा क्योंकि हम सिर्फ वो ट्रैक लेकर आए हैं जो फ्लोर या तो तोड़ेगा या फिर आपको डांस कराए बगैर तो नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इस रात की स्पीड को टॉप गियर में डाल देते हैं ना।

कल सुबह अलार्म बजेगा, लेकिन आज रात तो सिर्फ पॉप टाइम का बेस बजेगा। मंडे के टेंशन को कर दो साइड और इस हाई स्पीड ट्रैक के साथ लो एक सुपर फास्ट वाली राइड। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो बीट ड्रॉप होगी वो आपके सारे स्टेप्स को हाई एंड बनाने पर आपको कर देगी मजबूर।

जब तक आसमान में तारे हैं, ये लाउड स्पीकर सारे हमारे हैं। संडे नाइट की इस पार्टी में कोई वीआईपी पास नहीं चाहिए, बस अपने कानों को इस धांसू बीट पर फोकस्ड रखिए और एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं, बस सीधा अगला ट्रैक आपके सिस्टम पर। डांस कीजिए।

अगर आप भी सोफे पर अधलेटे होकर के गाना एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगला गाना वहां से आपको उठाने का परमानेंट जुगाड़ है। स्ट्राइक का इंट्रो ही इतना लाउड है कि संडे की आलस तुरंत रफू चक्कर हो जानी है। तैयार रहिए क्योंकि वॉल्यूम अब पूरे पूरे चरम पर पहुंच जाएगा।

0: कुछ धुनें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो सीधा दिल में उतर जाती हैं और एड्रेनलिन ढेर सारा पंप करने लगती हैं। अगला गाना ऐसा ही है, कुछ स्मूथ लाउड और एकदम अनस्टॉपेबल। इसे सुनने के लिए नहीं, फील करने के लिए तैयार हैं आप?
1: खूब खूब आभार अपना गुजरात में हालो।

राजकमल यादव जी ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से पूछ रहे हैं, क्या हाल है? तो हमारे हाल बहुत बढ़िया हैं, और आप कैसे हैं ये नहीं लिखा है आपने। और इन्होंने कहा है कि हम आते हैं तो गर्मी थोड़ा कम हो जाती है। ऐसा ना कहिए, आम कैसे पकेंगे अगर गर्मी कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, दिल के जज्बात को अल्फाज में पिरोया नहीं करते, तुम जैसे सच्चे दोस्त

दोस्तों को कभी खोया नहीं करते। माना कि कभी कभी तुम बहुत तंग करते हो हमें, पर तुम्हारे बिना हम हंसते भी नहीं हैं तो खुलकर रोया नहीं करते। थोड़ा जबान भाई लटपटाई, बहुत लटपटा रही है जबान। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे पहले वाला कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया, यानी आबशार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहा हूँ। हमारा कार्यक्रम है ही ऐसा पॉप टाइम कि आप पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं। जबरदस्त पॉप टाइम में आपकी पेशकश, भैया जी ये लिखे हैं हमको, भैया मोनू सेठ, तो आपका बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। कमल पांडे जी, सुनील सर जी को नमस्कार भेजें, कल वाला मेल आज भेज दिए क्या? मैं कमल शंकर पांडे, ग्राम मोहलिया कलां चौराहा पोस्ट नसीरपुर, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहा हूं। मामा मामी यहां ग्राम रोसहन बिस्वा आया हुआ हूं, और अपने मामा संजय कुमार मिश्रा, सुभाष कुमार मिश्रा, अपने भाई अमन कुमार मिश्रा, मामी आदि सभी लोगों के साथ बैठ कर कार्यक्रम पॉप टाइम का आनंद ले रहा हूं। कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, गीत बहुत अच्छे बज रहे हैं। आज मैं कई दिनों के बाद कार्यक्रम में मेल कर रहा हूं और आशा करता हूं कि कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल कर लिया जाएगा। और कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये लिखा है इन्होंने, हमने पूरा मेल शामिल कर लिया। गुड इवनिंग नितिन जी, ये लिखकर भेजा है हमें जावेद अख्तर जी ने, गुड इवनिंग आपको भी। गुलफशा लिखती हैं, हेलो गुड इवनिंग नितिन भाई, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, पहला गाना इतना झक्कास बजाया, मज़ा आ गया। मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ। रोशनी रावत, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, निशा अंसारी, ममता गौतम, महक अंसारी, हम सब सुन रहे हैं आपको, तो आप सबका बहुत बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग्स इन्हें अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लिख के भेजें हमको। हेलो एफएम रेनबो लखनऊ, एफएम रेनबो लखनऊ वाला भेज दिए क्या? ये वाले प्रोग्राम का नाम पॉप टाइम है। अरविंद कुमार दुबे, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छटहा, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, चुनरी चुनरी गाने के साथ पॉप टाइम कार्यक्रम की शुरुआत शानदार है। सुझाव ये है कि फिल्म से संबंधित गानों की संख्या कम करके पॉप सॉन्ग्स को तरजीह दी जाए। आपका सुझाव हमने स्वीकार कर लिया, पर पॉप का मतलब तो पॉपुलर होता है ना, तो जो गाने पॉपुलर हैं उन गानों को प्ले करते हैं हम। अरविंद दुबे, दीपा, गोविंद, प्रतिष्ठा, प्रतिमा, तन्वी तिवारी, श्याम कुमारी, शायद आप ये शब्द पॉप से वाकिफ नहीं थे। हाय नितिन भाई, इंजॉय कर रही हूँ, बजाते रहो। एमन नवाब संडीला से हमें लिख रही हैं, पॉप टाइम इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है। इसके अलावा भी ढेर सारी मेल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आती जा रही हैं, तो पॉपुलर गानों का ये वाला प्रोग्राम जारी रहेगा और आपकी बातें हमारे दिल तक पहुंचे, इसके लिए ये वाला गाना जरूर सुनिए।

आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। हम सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर सुनते हैं। समस्त श्रोताओं की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। यह हमें लिख के भेजा है इंद्रपाल मिश्रा जी ने, ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से। आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम पोस्ट खन्नौधी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से बहुत प्यारी सी मेल आपने भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वकील अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतुरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, फूलों की खुशी हो या सितारों की अदाएं, हम सब आप पे कुर्बान हैं, आप तशरीफ तो लाए। बहुत ही बढ़िया लिखे हैं आप। गुड इवनिंग नितिन जी, आप शार प्रोग्राम में शेरो शायरी भरा अंदाज दिल में नश्तर बन के उतर गया। सभी गजलें रूह को सुकून दे गईं। पॉप टाइम कार्यक्रम में एक नई छाप छोड़ी है। पहले से आपके अंदाजे पेशकश में एक नया खुमार सुनने को मिल रहा है। गानों का चयन कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाता है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार के साथ जावेद अख्तर साहब ने प्यारी सी मेल हमें भेजी है। प्रोग्राम का फ्लेवर अच्छा लग रहा है और ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। कार्यक्रम में कुछ ये वाले सॉन्ग्स भी शामिल करें, फरमाइश वाला प्रोग्राम ब्रिजेश बाबू होता है हेलो एफएम 7 बजे से। लेट कर दिए आप। गुड इवनिंग नितिन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रा, हाउ आर यू? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस फिल्म से ये वाला गाना सुनवा दो, जल्दी जल्दी आया करो। और कितना जल्दी आए हम। ज्ञान प्रकाश आर्य, महमूरगंज वाराणसी, आपका प्रोग्राम बहुत ही झक्कास चल रहा है, ऐसे प्रोग्राम आगे भी सुनाते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे दिल को छू लेने वाला है, ये आप संदेश भेजे हैं ना, दिल को छू लिए आप। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सर जी को गुड इवनिंग, शुभरात्रि, सादर प्रणाम। आपकी आवाज़, आपका अंदाज बहुत सुपरहिट रहता है और उससे ज़्यादा तो आपकी बोली सुपरहिट रहती है। आजाद सिमरी से ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजेजपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से, सब लोगों का मेल एक साथ ही भेज दिए हैं विनीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, लेकिन इतनी प्यारी सी मेल लिखने के लिए। शुभ रतिया भेजे हैं निखिल सर को, हम पहुंचा देंगे। हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, आपके रेडियो की आवाज़ आती है, नाचते नाचते गर्दा उड़ जाती है, सारे गम भूल के झूम उठते हैं, महफिल में समा बन जाता है, आपका अंदाज सबसे जुदा है, आपकी बातों में जादू बसा है, रात हो या दिन आपके शो के साथ हर पल का मजा दोगुना हो जाता है, लव यू सर जी। मुनेश कुमार राज, गाँव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से, लव यू ब्रदर। जीशान लिखते हैं, हाय नितिन भाई।

आम जीशान खान संडिला से प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे आपके बजाय गाने बहुत अच्छे लगते हैं, दिल झूम उठता है, तो और झूमिए मेरे साथ।

आपके दिमाग में वक्त चाहे जो भी चल रहा हो, हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई और ही वक्त चल रहा होता है, इसीलिए हम वक्त बता देते हैं आपको। 9:46:57 हो चुके हैं। अगले 3-4 मिनट के लिए ना सब भूल जाइए, और ट्रैक की हुक लाइन और कैची बीट्स आपके हर ख्याल को जब करें ओवरटेक तो उन्हें करने दीजिए ऐसा। बस आंखें मूंद लीजिए और सुपर फास्ट रिदम के साथ में बस सिंक हो जाइए और गाने में एकदम।

रणधीर गुप्ता जी लिखते हैं, रेडियो मित्र जी सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। पॉप टाइम धड़कन लखनऊ की गाने पसंद आ रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता हमें लिख रहे हैं ये प्यारी सी मेल ओखला संगम विहार दिल्ली से। बाबू अंसारी जी ने लिखा है, गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम हन हन हुआ लग रहा है, मूड बिल्कुल मस्ती मस्ती का हो रहा है, तो बस डांस कीजिए। देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी में किसी को डांस करने का मौका चाहिए तो उन्हें बुला लीजिए साथ में। अफजल इमलिया सुल्तानपुर फरखपुर से हमें लिखते हैं, सॉन्ग बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं, एक गाने की फरमाइश है, तो फरमाइश वाला प्रोग्राम तो 7 बजे से है, उसमें भेजिए ना प्यारी सी अपनी मेल। रामराज जी ने अपना प्यारा सा मेल वही वाला भेज दिया है जो रोज भेजते हैं। रामराज जी मेल चेंज कर लीजिए, कुछ नया लिख के भेजिए, दिन में क्या सीखा, क्या उम्मीद है दिन से या शाम से, वो भी लिख के भेज सकते हैं। और आप लिख के अपना कोई जीवन का ऐसा फलसफा भी हमें भेज सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। वही पुरानी बातें कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कितना पढ़े हम, दिल जल जाता है लोगों का ये सुन करके कि हमारा प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, मजाक कर रहे हैं। ये वाली शरारत आपको पसंद आएगी।

लक्ष्मेंद्र मिश्र जी ग्राम वपुर सकरन सीतापुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आशा करते हैं कि हम अच्छे होंगे। हम बहुत अच्छे हैं और हम भी उम्मीदवार हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। प्रोग्राम के सभी गाने आप बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं। अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए और इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम लेके आए हैं, तो सुना दे रहे हैं आपको। और आपको हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला प्रोग्राम पसंद आया होगा। कहीं जाइएगा मत, ठहरिएगा हमारे साथ। एक गाना और उसके बाद समाचार और उस पार रजनीगंधा। आज कुछ विशेष है तो इंतजार करेंगे हम आपका। कहीं जाएंगे तो नहीं, क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: नमस्कार, 10 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। दोनों ही पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, कौंसुलर मामले, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध जैसे मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति, विशाल बाजार, तेजी से विकसित हो रहा डिजिटल एवं औद्योगिक आधार तथा निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण राज्य को नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की। सुल्तानपुर में जनपद के सभी 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज 256वां आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। मेले का संचालन 58 चिकित्सकों और 284 पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जनपद बलरामपुर में भी आज आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जिले के सभी 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मेलों में कुल 1743 मरीजों का पंजीकरण कर उपचार किया गया। उन्नाव में फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत जिला खेल कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग दिवस के अवसर पर भव्य साइकिल रैली एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जनपद के लगभग 100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को जिला खेल कार्यालय द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब यारी।
5: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शिरीष के फूलों की मादक महक की एक किस्त के लिए कौन न कुर्बान कर दे दोस्तों की ईर्ष्या को, कौन न छोड़कर दुनिया जहान के सब प्रपंच मधुमालती की खुशबू में खो जाए। भला किसके हिस्से में ऐसा इतवार आया है जो अपनी जिंदगी की सारी छुट्टियों को एक दिन में कुछ यूं गुलाब की खुशबू की तरह घोल दे कि सारा दिन बस एक खूबसूरती का बायस बन के यादों का हिस्सा बन जाए, और जब तक रात उतरे तब मन के किसी भी कोने में ख्याल न रहे कि छुट्टी के रोज कुछ कसर रह गई, और अगर रह जाए कोई कसर तो उसके लिए ही तो है म्यूजिकल जिंदगी की ये सबसे म्यूजिकल किस्त यानी रजनीगंधा। और कहा, बस यहां ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

उनके स्क्रीन पर आते ही एक जादू सा स्क्रीन को चमका देता था। वो मुस्कुराती तो महसूस होता मानो चांदनी खुद ब खुद मुजस्सिम तबस्सुम बन गई हो। वो नृत्य करती तो देखने वालों का मन उनके नृत्य के साथ थिरकने को मजबूर हो जाता। अभिनय में वो जब जिस भाव को चाहती उसका शांत आह्वान कुछ यूं करती कि वो रस बनकर दर्शकों की आत्मा से फूट पड़ता। रुपहले पर्दे पर वो जब रति के भावों को साध प्रेम का प्रदर्शन करती तो दर्शकों को श्रृंगार रस की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती दिखाई देती। वो शोक में डूब कर विलाप करती तो देखने वालों की आंखों की कोरें कारुण्य के अतिरेक से नम हो जाती। वो चंचलता से स्क्रीन पर खेलती कूदती और अपने बचपन का प्लेग्राउंड समझ करके फिल्म में न जाने कितनी शरारतें करती तो नामालूम कितने हृदयों में वात्सल्य का रस जाग उठता था। उनकी पहचान तो उनका लंबा सिनेमाई करियर है, मगर इस बरस उन्हें आपने एक कव्वाली में देखा। एक बार ये कव्वाली हमारे साथ गुनगुनाइए और अगर पहचान लिया है आज किनकी जिंदगी का तस्किरा होगा रजनीगंधा में तो हमें तुरंत बताइएगा।

यकीन जानिए आपने इनका नाम सुना हो या नहीं, आपने इनकी सिनेमाई शख्सियत पर जान छिड़की हो या नहीं, इनका किस्सा, इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपकी दिलचस्पी का बायस जरूर बनेंगे। और इनकी जिंदगी की कहानी से अगर आप जुड़े तो फिर आप इनकी फिल्में तलाश कर जरूर देखेंगे भी। खैर, वादों का क्या है, अक्सर तोड़ दिए जाते हैं, तो हम वादा नहीं कर रहे कोई भी, बस आपके साथ जुड़ेंगे तो उनके किस्सों के जरिए उनकी जिंदगी के उस हिस्से में दाखिल होने की एक कोशिश भर करेंगे जहां शायद आज तक आपकी निगाह नहीं गई होगी। यह रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो पर।

आज जिनकी बातें, उनका स्क्रीन पर नाम था श्यामा। लेकिन श्यामा तो बाद में आई, पहले आई थी बेबी खुर्शीद।

1936 अविभाजित हिंदुस्तान के लाहौर में एक घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। नाम रखा गया खुर्शीद अख्तर। बिटिया भी बड़ी हो रही थी कि पूरा खानदान लाहौर से बंबई शिफ्ट हो गया। तालीम शुरू हुई 4 बरस की उम्र में। 5वीं क्लास में पहुंचने तक खुर्शीद 9 बरस की हो चुकी थी। वो साल 1945 था। हिंदुस्तान की आजादी से 2 बरस पहले की बात थी। एक दिन सबका प्लान बना कि फिल्म की शूटिंग देखने जाएंगे। खुर्शीद ने कहा, मैं भी चलूंगी। उन्हें कहां पता था कि आज जिंदगी भर की चमक का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है।

खुर्शीद यानी सूरज होता है, और सच्चे मानी में खुर्शीद ही तो नूरजहां है। लेकिन उस रोज सारे बच्चों का सामना गायिका अदाकारा मलिकाए तरन्नुम नूरजहां से हुआ। वो शौकत हुसैन की फिल्म जीनत की शूटिंग पर उनसे मिले। ये सारी पलटन अभी नूरजहां की शख्सियत के शहर से बाहर निकली भी न थी कि एक और चमत्कार हो गया। हिदायतकार यानी डायरेक्टर शौकत हुसैन ने इन बच्चों से पूछा, लड़कियों तुम फिल्म में काम करोगी? सबकी सब एक साथ चीख ही तो पड़ी, हां। वो कव्वाली का सीन था, बात हो गई कि सब काम करेंगी। कव्वाली थी आहें न भरी शिकवे न किए, और सब लड़कियों ने एक साथ फिल्म में काम करना शुरू कर दिया।

बेबी खुर्शीद के नाम से अपनी जिंदगी की पहली कव्वाली में काम कर रही खुर्शीद ने शौकत भाईजान को, हाँ खुर्शीद डायरेक्टर साहब को इसी नाम से पुकारती थी, तो खुर्शीद ने शौकत भाईजान को मलिकाए तरन्नुम नूरजहां से ये कहते हुए सुना, मैडम अब आपका एक क्लोजअप शॉट लगाएंगे। खुर्शीद ने मौका पाते ही डायरेक्टर से कह दिया, शौकत भाईजान आप मेरा भी क्लोजअप शॉट ही लीजिएगा। इस बात पर डायरेक्टर बोले, अरे चुहिया तेरा क्या क्लोजअप शॉट। उन्हें कहां पता था कि नन्ही खुर्शीद ने हजारों क्लोजअप शॉट्स के ख्वाब देख लिए थे। ख्वाब देखते रहिए, कुछ पूरे भी हो जाते हैं।

जीनत में काम करते वक्त तो खुर्शीद स्कूल जाती रही, लेकिन फिर और फिल्में मिली तो स्कूली तालीम का सिलसिला बंद हो गया। वो लगातार काम करने में ही जुट गई। घर के लोग पूरी तरह उन्हीं पर मुनहसर यानी डिपेंडेंट हो गए। बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले बहुत तेजी से पहले घर की दहलीज और फिर उनके जहन को भी छोड़ गया। करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे रोल्स किए, फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई सेकंड लीड हीरोइन के रोल मिलने लगे। एक फिल्म वो डायरेक्टर विजय भट्ट के साथ कर रही थी, जहां उन्होंने इनका नाम बेबी खुर्शीद से बदलकर श्यामा रख दिया और पर्दे पर इंट्रोड्यूस हुई श्यामा।

श्यामा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, मानो किस्मत ने भी एक करवट ले ली। कई बार जो काम हम अपनी शख्सियत के साथ भरसक कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाते हैं, वो सारे काम भी अपनी शख्सियत में आमूल चूल बदलाव के साथ बहुत आसान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही श्यामा के साथ भी हुआ। उन्होंने नाम बदला और शशधर मुखर्जी के यहां से काम के लिए बुलावा आ गया। लेकिन शशधर मुखर्जी की एक शर्त थी जिससे श्यामा सरत चौंक गई थी।

शशधर मुखर्जी ने श्यामा से कहा कि उन्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा। श्यामा को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 बरस बीत चुके थे। श्यामा ने पूछा, टेस्ट क्यों, मैं तो पहले से ही काम कर रही हूं। शशधर मुखर्जी बोले, नहीं, टेस्ट तो देना होगा, क्योंकि आप रोल में फिट हैं या नहीं ये देखना है हमें। श्यामा ने टेस्ट की शर्त

0: मान ली। फिर टेस्ट हुआ, श्यामा सिर्फ पास ही नहीं हुई, उन्हें मिला फिल्म्स में 3 बरस तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट। यहां से श्यामा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया था। वो 15 बरस की थीं और कॉन्ट्रैक्ट उनके वालिद और भाई साइन किया करते थे। ये बात कुछ ही बरस में श्यामा के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह भी बनने वाली थी। श्यामा ने स्कूली तालीम तो छोड़ दी थी, लेकिन सिनेमा की तालीम बखूबी हासिल की थी। वो जब भी फिल्म्स में काम करती तो अपना होमवर्क करना कभी नहीं भूलती थी। अगर उन्हें लगता कि डायलॉग्स कठिन होंगे या सीन बड़े एक्टर्स जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार के साथ में होगा, तो पहले से डायलॉग्स मंगवा कर उन्हें टेप करके उन पर रिहर्सल के बाद ही सेट पर आती और पूरी शिद्दत के साथ सीन्स करती। किरदार में कुछ यूं जान डाल देती कि सीन खत्म होने के बाद काफी देर तक बस तालियां ही बजती रहती। नमस्कार, 11 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अभी से ठोस तैयारी करनी होगी। आज उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक आकर्षक, व्यावहारिक और समयानुकूल नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। शाहजहांपुर में बाल विकास परियोजना भावलखेड़ा के अंतर्गत तहवरगंज आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन आज प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम दाम पर हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
2: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
3: धड़कता है जो हर दिल में
4: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।

रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो पर 11:02:56। वो पर्दे पर जिस भी किरदार में आती उसको अपनी खूबसूरती, अपने हर भाव को जीवन दे देने वाले अभिनय और अपनी लासानी स्क्रीन प्रेजेंस से यादगार बना देती। श्वेत श्याम फिल्मों से लेकर रंगीन सिनेमा की दुनिया तक उन्होंने जब भी काम किया अपने किरदारों को पूरी लगन से कुछ इस तरह निभाया कि उनमें प्राण फूंक दिए। आज उन्हीं श्यामा की जिंदगी का तस्करा रजनीगंधा में।

वो साल 1951 था। श्यामा अब तक हिंदुस्तानी सिनेमा में खासी मशहूर हो चुकी थीं।

हिंदुस्तानी सिनेमा को चाहने वाले उन पर जान छिड़कने लगे थे। तभी उनकी जिंदगी में आई फिल्म सजा। इस फिल्म के हिदायतकार यानी डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर यानी कैमरामैन एक ही व्यक्ति थे, गाइड नागिन जोशीला प्रेम पुजारी और मिस्टर नटवर लाल जैसी फिल्मों को अपने लेंस में कैद करने वाले फली मिस्त्री। फली मिस्त्री अपने फेवरेट हीरो देव आनंद के साथ निम्मी और श्यामा को अपनी फिल्म सजा के लिए कास्ट कर चुके थे। सजा फिल्म में फली जब कैमरा लगाते तो श्यामा उस हर शॉट में बेहद खूबसूरत नजर आती, और श्यामा भी ये बात जान गई थी। लेकिन तभी फिल्म के आउटडोर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो श्यामा और फली की जिंदगी में बदलाव की नई बहारें लेकर आ गया था।

फिल्म सजा का आउटडोर सेट था। एक रोज शूट के वक्त श्यामा के हाथ में कांटा चुभ गया। श्यामा दर्द को दबाकर शॉट देती रही, लेकिन बेहद सक्षम सिनेमाटोग्राफर फली की आंखों से यह छिपा नहीं रहा। उन्होंने आकर श्यामा से पूछा, क्या हुआ? श्यामा ने कहा, कुछ नहीं। फली बोले, कुछ तो? श्यामा ने कहा, कुछ नहीं, बस जरा सा कांटा चुभ गया था। फली ने कहा, हाथ दिखा।

श्यामा ने हाथ दिखाया तो फली ने देखा उस हाथ से खून रिस रहा था। उन्होंने तुरंत मरहम मंगाया और श्यामा के हाथ में लगाया। चोट पर लगा ये मरहम फली मिस्त्री को श्यामा की नजरों में बहुत ऊपर ले गया, इतना कि कुछ वक्त बाद उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए सच में फली के हाथों में अपना हाथ देने का फैसला कर लिया।

कहते हैं इश्क और मुश्क, यानी मोहब्बत और कस्तूरी की महक छिपाए नहीं छिपते। श्यामा और फली का इश्क भी छिप नहीं सका। फली अक्सर फिल्म की डेट्स के लिए श्यामा को कॉल करते। जब दोनों में इश्क हुआ तो ये कॉल्स लंबी चलने लगी, लेकिन मोहब्बत का ये रंग श्यामा के वालिद और भाई को नागवार गुजरा। हमने कहा था ना आपसे कि श्यामा चूंकि अंडर एज रही थी, एक लंबे समय तक काम कर रही थी, इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट उनके वालिद और भाई साइन किया करते थे। ये बात कुछ ही बरस में श्यामा के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह बनने वाली थी। और यहां ये परेशानी की वजह बढ़ने लगी। मोहब्बत का रंग तो श्यामा के वालिद और भाई को नागवार गुजरा, ये बात बहुत रवायती सी लगती है ना, लेकिन बकौल श्यामा ये बात बिल्कुल भी रवायती ट्रेडिशनल नहीं थी। इसमें एक अलग ही जाविया, एक अलग ही एंगल था। क्या था वो एंगल, बात करेंगे, लेकिन पहले ये प्यारा सा गीत।

मां के साथ श्यामा घर छोड़कर अपनी बड़ी बहन के घर गई, लेकिन बहन ने बड़ी आसानी से उन्हें अपने घर में पनाह देने से साफ मना कर दिया। मां के साथ इस कदर बेसहारा होने के बाद श्यामा फिल्म मेकर एम सादिक के यहां गई। वहां उनके साथ बेहद शफकत भरा सुलूक किया गया और अपना नया घर खरीदने के पहले तक वो उन्हीं के साथ रही। लेकिन इस बीच श्यामा के साथ उनके बहनोई ने एक फ्रॉड भी किया था। रविशंकर नाम के साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था और हुंडी पर गारंटर के रूप में श्यामा के दस्तखत थे। रविशंकर साहब ने कर्ज के पैसे डुबो दिए तो गारंटर श्यामा के पीछे भागने लगे। इधर पिता और भाई के साथ रिश्ते टूटने के बाद श्यामा प्रोड्यूसर्स के पास पुरानी फिल्मों की फीस के लिए भागती तो वो मना कर देते। साथ ही नई फिल्म्स में भी काम इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि पुराने ड्यूज प्रोड्यूसर्स ने चुकाए नहीं थे। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने अपने मन से किसी से मोहब्बत कर ली थी। ये मोहब्बत की सजा थी।

श्यामा को पैसों की सख्त जरूरत थी। फाइनेंसर ने उन पर एक सिविल और एक क्रिमिनल सूट दायर कर दिया था। एक रोज वो अपने एक प्रोड्यूसर के सामने जारो कतार रो पड़ी। प्रोड्यूसर साहब का पत्थर का दिल कुछ वक्त के लिए मोम हो गया। उन्होंने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता हूं। कल दफ्तर आ जाना, पैसे ले जाना। कुल 19 बरस की श्यामा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। वो भी निपट अकेली।

प्रोड्यूसर के वादे पर भरोसा ऐसा था मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। कई महीनों में पहली बार श्यामा उस रोज बेहद खुश होकर घर से निकली और प्रोड्यूसर के दफ्तर पहुंची। सूरज की चमक के साथ खुश होकर उठी श्यामा के लिए वो दिन बद से बदतर होता चला गया। इधर सर पर लेनदार सवार थे और उधर वादा करने वाले ने न बताया न आया। श्यामा कुछ इस कदर निराश हो गई थी उस रोज कि उन्होंने वहीं प्रोड्यूसर के दरवाजे पर खुद को चांटे मारे। निराशा इंसान को कैसा ही तो बना देती है। फली के साथ विवाह के सपने ने उनसे सब कुछ ही तो छीन लिया था और जिन फली से इश्क के लिए उन्हें ये सजा मिल रही थी वो फली भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि श्यामा में खुददारी इतनी थी कि वो उनसे मदद ही नहीं मांग रही थी। वो कैसे कह देती कि मैंने हार मान ली है, जिसने अपने पूरे घर को 9 बरस की उम्र से संभाल रखा था। वो अपने नए घर में जाने से पहले ही कैसे झुक सकती थी।

श्यामा का असली नाम हमने बताया था ना, खुर्शीद था। खुर्शीद के साथ में अख्तर भी जुड़ा हुआ था। खुर्शीद यानी सन, अख्तर यानी स्टार। सूरज को बादल बहुत देर तक छिपा नहीं सकते। काली अंधियारी रात आते आते सूरज को खा जरूर जाती है, लेकिन सूरज फिर से सवेरे उगता है। श्यामा ने भी काम दोबारा शुरू किया, सारे कर्जे चुकाए। उस वक्त फली से विवाह की बात अखबारों में, मैगजीन्स में बहुत उछाली गई। तड़प कर एक रोज श्यामा ने एक मैगजीन में खुद से लिख दिया कि मैं तंग आ गई हूं। अपनी जिंदगी में 19 बरस की ही उम्र तक उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, और यह 1954 की बात है जब उनके भीतर धधकता ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्होंने लिखा, आप मेरी एक्टिंग पर, मेरे काम पर जमकर तस्किरा कीजिए, दिल खोल कर मेरी फिल्मों से जुड़िए, मेरे क्राफ्ट और टैलेंट को लेकर जितना जी करे उतनी बातें कीजिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है मेरी जाती जिंदगी पर सवाल उठाने का। मैं शादी करूं या ना करूं, इस सवाल का आपसे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस सवाल पर अपनी स्याही, अपना वक्त बर्बाद न करें। श्यामा और भली का विवाह हुआ, और भली जब तक बाहयात रहे तब तक वो दोनों साथ रहे। लेकिन 19 बरस की उम्र में 1954 में एक लड़की ये बातें कर रही थी। अक्सर ये कहानियां छिपाकर किसी कोने में दबा दी जाती हैं। कहीं हम सिनेमा स्टार्स की बागियाना तबीयत से इंस्पायर ना हो जाएं। श्यामा यानी खुर्शीद अख्तर साहिबा ने अपने 82वीं सालगिरह से 5 महीने बाद, यानी 14 नवंबर 2017 को इस दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। आज उनकी 91वीं सालगिरह पर FM की पूरी टीम की ओर से

राजे अखीदत। उनकी जिंदगी से आप प्रेरित हों, यही प्रार्थना है। शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट।

नमस्कार, 12 बज चुके हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 की जिला प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने दीप जलाकर समीक्षा बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण अभियान की प्रगति, संगठनात्मक गतिविधियों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5 बजकर

12 मिनट पर और सूर्यास्त 6:59 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी सभा यहाँ समाप्त होती है। प्रातःकाल 5:50 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।